0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे ध्रुपद गायन। राग था भैरव और कलाकार थे विपुल छाबड़ा। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे राम कुमार शर्मा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। इसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए पहले सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: कार्यक्रम सुबह 7:30 सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि

0: इसी के साथ हमारा आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
2: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।

0: Shri Pratap Rao Jadhav, the Minister of State for Ayush.
1: Vishal Jan Samuhu is Sambodhan ko sunta hua.
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर.एन. रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर

0: West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
1: Rajpal Shri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों,

लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds.

द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व्स द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व्स दैट इज वाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

0: होगी, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
2: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
3: हम सब
2: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर एंड ही इज फ्लैंक्ड बाय ordinary people from all walks of life here at the Red Road, and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
2: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
2: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
2: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
0: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
2: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
1: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
3: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त

0: को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नज़र आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
1: जी,
0: yes,
1: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है, और ताड़ के पेड़ की तरह हम

0: सीधे खड़े हों, तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी,
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
2: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशनड इन हिज स्पीच दैट इन द 1920s परमहंस योगानंद सेट अप द योगा सेंटर इन कोलकाता and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्ध चक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: एंड वी कैन ऑल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister

0: is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं. और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए. और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं. एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है. यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं. और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है.
1: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं. और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है. और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी.
0: यस एब्सोल्युटली. एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं. और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन. ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी. और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है. हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है,

0: तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: नाउ आई थिंक द एंथुसियास्ट परफॉर्मिंग वक्रासन।
0: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज़ है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज़ वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आँखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है
0: जी।
2: तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द
0: गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
0: जी।
2: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
0: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
0: जी।
2: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
0: जी। गुरु मुनेश सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
1: ज़रूर ज़रूर। एक्चुअली जब तक

0: हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्सियसनेस से ही, जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी।
0: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं, जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
2: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं, उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक, कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी,
2: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
1: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
0: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है
1: जी।
0: हमारी चित्त की वृत्तियाँ अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियाँ ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियाँ ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी

0: जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और ख़ास करके मेडिटेशन और ख़ास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है। वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
1: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इन्हेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं,
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है, और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
2: जैसा कि

0: आपने कहा कि शीतलता देने वाला
1: जी
0: प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा,
1: जी
0: उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही,
1: जी जठराग्नि को पूरी तरह से
0: व्यवस्थित
1: नियंत्रित कर
0: करता
1: देता है।
0: है।
1: जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग-अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे से जो सी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है,
1: जी
0: ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है, वो पेट और पीठ
1: जी
0: दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो
1: जी
0: इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो
1: जी
0: हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं।
0: हाँ
1: और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी।
0: हाँ
1: जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: और बाहर
1: निकालते
0: से
1: हैं।
0: कनेक्शन कट भी करना
1: कट,
0: होता है, ताकि
1: जी
0: हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो
1: जी
0: हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम
0: स्वयं
1: जुड़ते
0: से
1: हैं,
0: जुड़।
1: अपने भीतर हम जाते हैं। जी
2: एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, व्हिच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
0: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड।
1: जी
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
1: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा है पता नहीं चल रहा है आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमिडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है, आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीज़ें मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था, और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा, और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है,

0: वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योग से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
2: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
2: और धीरे इसकी धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुँचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
0: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाए बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़े।
0: योगा 365, that is what the Honorable Prime Minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
3: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुनें, 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी

0: पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है। आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास। इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरे पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है। इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशनड, एंड एज यू आल्सो मेंशनड नीलम जी, दैट द टुडे वी सॉ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to

0: Stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं. इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया. योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज़्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा. और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में. कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ. ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया. 8 बजने को हैं. अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे.

0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रही तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयर लिनस्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष

0: कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था।

0: हमारी संवाददाता से।
1: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
2: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनः परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic

0: rainfall till the 26th of this month. As part of a series, People's Padma on Akashwani, we bring you a conversation with Professor Juzair Vasi, a pioneer in the field of semiconductors and solar photovoltaics. He has been honored with the prestigious Padma Shri.
1: India is emerging as one of the biggest major solar deployers, and I can see that we are going to also emerge as a major manufacturer of solar components.
0: To listen to the interview, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 10:30 a.m. You can also listen to this interview on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. As part of our series, Prakriti Ki Baat, Akashwani Ke Saath, we bring you a discussion on the efforts of Jhumarmur Panchayat in Nagaon district of Assam, which has been recently awarded the National Panchayat Award in the Clean and Green Panchayat category. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this discussion on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. India A will take on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final, scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final, with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi set to be in the spotlight once again. In FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada, and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undav scored twice. Earlier, the Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States. Yesterday, in another match, Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Sunil. NEET UG re-examination is the top story on dailies today. All hands on deck for NEET retest, writes Hindustan Times. 1.38 lakh CCTV, 51,000 jammers for leak-proof NEET today, headlines The Asian Age. The war between Iran and Israel, too, continues to dominate front pages of dailies. Iran closes Hormuz amid Israeli attacks on Lebanon, reads the Hindu headline. On the 12th International Day of Yoga 2026, the Pioneer writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. Two studies led by AIIMS have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in Tri-Series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तहान मुनक़िद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ अब नए हुर्मुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की क़यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
4: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
3: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
4: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
3: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क़यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर एहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में, लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, लेह, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनक़िद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में आवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। बैन अलाक़वामी सतह पर 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन सकाफती ताल्लुकात के लिए भारतीय कौंसिल की मजबूत कोशिशों के जरिए दुनिया भर में तकरीबन 2500 मुकामात पर योग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक़िद हो रही हैं। नींद योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
3: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सादर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक्किद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां वो मेहमान खसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी के 36वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क जाएंगे, जहां वो सहरिया कबायली बिरादरी, चीता ट्रैकर्स और पार्क की फील्ड टीम के अरकान से मुलाकात करेंगी। योग का 12वां सालाना बैन अलाक्वामी दिन मनाने के लिए कौमी राजधानी खित्ते में बहुत से मरकजी वजरा और तंजीमें योग सेशंस में शिरकत कर रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज शांति पथ में योग के दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तमा से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग को आलमी सतह पर ले जाकर जबरदस्त खिदमात अंजाम दी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज योग के 12वें सालाना बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योग तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में भारत में नॉर्वे के सफीर मे एलन स्टेनर भी शामिल हुए। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग के आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार योग सेशन खेलों के वजीर के साथ शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी तंजीम ने भी नई दिल्ली में लाल किले पर योग के आलमी दिन की तकरीब मनाई। उत्तर प्रदेश में आज योग के आलमी दिन के मौके पर खसूसी योग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असम्बली के स्पीकर, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन और रियासत के सभी वजरा ने मुख्तलिफ जिलों में मुनक्किद योग तकरीबात में शिरकत की। सऊदी अरब के रियाद शहर में 500 से ज्यादा शुरका ने कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। आज योग के आलमी दिन से पहले कल मगरबी ममालिक में योग से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़े ग्रुपों में योग की वर्जिश की। कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो कानून साज असम्बली में सरकारी नुमाइंदों, सिफारती तंजीमों, योग की मशक करने वालों और तंदरुस्ती से मुतालिक इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने योग के एक पुरजोश मशक में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय बहरिया के प्लेटफॉर्म्स में देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म अंजाम देंगे। बहरिया के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के जरिए डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के जरिए तैयार किए गए ये तीनों बहरी जहाज लड़ने की कार्रवाइयों की सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और बहरी आबदोज शिकन जंगी सलाहियत को भी मुस्तहकम करेंगे। INS दुनागिरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका मकसद ब्रह्मोस मिसाइल्स और दरमियानी दूरी के फिजाई दिफाई निजाम से लैस किया गया है। INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है, जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज है, जिसे टॉर्पेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी अहलियत और दाखिले का टेस्ट नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान आज कराया जाएगा। नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनक्किद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनक्किद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निज़ाम, जैमर्स, CCTV, तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ, शफाफ और खुश उसलूबी से इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
6: نیٹ کے امتحان کو صاف و شفاف اور خوش اسلوبی سے کرانے کے لیے مشاہدین، کوآرڈینیٹرز، پولیس فورسز اور منتظمین سمیت 200,000 سے زیادہ عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ صاف شفاف اور منصفانہ امتحان کو یقینی بنانے کے لیے ایک کثیر سطحی سیکیورٹی فریم ورک بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی، نگرانی کیمرے، آدھار پر مبنی بایومیٹرک تصدیق، سیل بند پروٹوکول کے تحت مخصوص مقامات

0: सम्मेलनों के संस्मरण क्रम में श्री मनोज अबोध से श्री ऋषि कुमार शर्मा की भेंटवार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता दें हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध गजलकार, कवि और लेखक श्री मनोज अबोध जी। मनोज अबोध जी, हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि जी।
1: श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं, उनकी रचनाएं होती हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, परंतु कुछ कवि, कुछ रचनाकार इतने गंभीर और इतने अच्छी रचनाओं का पाठ करते हैं, इतनी अच्छी रचनाओं को लिखते हैं, उनमें मनोज अबोध जी का नाम शीर्ष पर आता है। आपने साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया है, अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आपको पुरस्कार मिले हैं। वर्ष 1987 से दीर्घ काल तक आप फीचर लेखन का काम कर रहे हैं, आपने संपादन का काम किया है, आपने गीत लिखा है, छंद लिखा है, दोहा लिखा है, गीत के साथ साथ आपने लघु कथाएं लिखी हैं और सबसे ज्यादा जो आपने लिखी हैं वो गजलें लिखी हैं।
2: हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वैसे
1: तो आप जब कविताओं को लिख रहे थे, गजल को लिख रहे थे या अपनी रचनाओं को लिख रहे थे, उस समय क्या आपने सोचा था कि आप इतने बड़े कवि या इतने बड़े लेखक बन जाएंगे?
2: ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि कोई सोच के तो कवि नहीं बनता। मेरा अपना मानना ये है, ये स्वतः स्फूर्त होती है, आपका जो वातावरण आपको बचपन से जैसा मिलता है वैसा ही है। मेरे पिता चूंकि अंग्रेजी के अध्यापक थे और उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो उस सिलसिले की वजह से घर में किताबें बहुत होती थी, पत्रिकाएं उस समय बहुत आती थी, और कोई साधन तो उस समय था नहीं। अब से अगर 50 साल पहले की बात करें, 1975 के आसपास की, तो उस समय यही पत्रिकाएं होती थी। बाल भारती है प्रकाशन विभाग से, जो अभी भी आती है, वो मेरी बड़ी प्रिय पत्रिका रही। अभी भी मेरे पास 1967 का एक अंक उसका सहेज कर रखा हुआ है, जब सावित्री देवी परमार उसकी जो है संपादक होती थी।
1: ये बड़ी बात है।
2: हाँ, तो उस समय क्या था कि प्रकाशन विभाग चूंकि सरकारी प्रकाशन था, तो बाल भारती बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालयों में विभाग के द्वारा भेजी जाती थी, तो वो सुलभ थी। फिर उसके बाद चूंकि पिताजी बाहर रहते थे, तो हम लोग ट्रेन से जाते थे रेलवे स्टेशन पे, एच व्हीलर एक बुक स्टॉल होती थी, वो मेरा एक क्रेज होता था। बस आप सोचिए कि उस पर वहां से पराग लेना या चंपक लेना, नंदन लेना, ये जो है। और अगले अंक की किसी बार ऐसा होता कि अंक आया नहीं है, तो आप सोचिए कि ऐसी मायूसी हो जाती थी कि पता नहीं क्या हो गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। मैं ये जानना चाहता था, आपने सबसे पहली कविता या गजल या दोहा कब लिखा और उसको मंच पर कब पढ़ा?
2: मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि मैं उस समय करीब कक्षा 7 में पढ़ता था, और वो गांव का विद्यालय था, मैं पिताजी के साथ ही अपने, तो वहाँ कुछ नहीं था, गांव था बिल्कुल हाईवे के किनारे, लेकिन हफ्ते में एक बार वहाँ पेंट लगती थी, जो साप्ताहिक बाजार होता है, और उसमें घूमना, वो सोचिए कि ऐसा आजकल जैसे मॉल में घूमते हैं ना लोग, तो हमारा उस बाजार में
1: बिल्कुल
2: मिट्टी के बीच में घूमना, पूरे हफ्ते इंतजार करते थे वहां पर, जमीन में भट्टी बना के वो लोग पकौड़ी बनाते थे, और मुश्किल से 10 पैसे या 25 पैसे की पकौड़ी बहुत सारी आती थी, तो वही समझिए कि आप ऐसी ट्रीट होती थी, 5-स्टार ट्रीट उस समय की, वो मेरे लिए निर्धारित थी। शनिवार को लगता था, शनिवार को मैं बाजार में जाना और वहां से पकौड़ी लेना, तो उसी तरह मैंने स्वाभाविक तौर से वो पकौड़ी ली और खाई। उसके बाद देखा वो तेल सना, एक कुछ डायरी का पेपर था।
1: अच्छा।
2: किसी की, चूंकि वो रद्दी में बेच दिया होगा, और उस पर 2 पंक्तियां लिखी हुई थी, तो स्वाभाविक तौर से एक उत्सुकता हुई और मैंने वो पढ़ी। उस पर एक शेर लिखा हुआ था, मैं जानता नहीं था कि वो शेर है।
1: हाँ।
2: लेकिन वो 2 पंक्तियां थी, ये तो बाद में पता चला कि ये शेर उसे कहते हैं। उस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम तैश में आकर मेरा खत फाड़ भी डालो, तुम्हारे पांव चूमेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े।
1: वाह वाह।
2: तो आप सोचिए कि ये जो 2 पंक्तियां थी, जो बाद में मैं समझा कि वो एक खूबसूरत शेर था, वो मेरे जीवन का मतलब पहली कविताएं थी जो मैंने पढ़ी और मुझे अच्छी लगी। और फिर उसके बाद के जितनी चिट्ठियां मैं लिखता था, भले वो माँ को भी लिखता हूँ, बहन को लिखता, किसी को भी लिखता था, तो ये शेर जरूर उसमें नीचे लिख देता था।
1: अच्छा।
2: मुझे मालूम नहीं किसका था। उसके बाद से मेरी स्वाभाविक तौर से थोड़ी कि मैं भी लिख सकता हूँ, कुछ कुछ मुझे लिखना चाहिए, तो मैं तब लिखता था कुछ बीच में। और ये करीब उसके 4-5 साल बाद, आप मानिए कि ये उस समय हो गया था, 78 का समय आ गया था, 77-78, तब मैंने एक कविता लिखी थी और वो सबसे पहले छपी थी।
1: अच्छा।
2: बधाइयों का एक पाक्षिक पत्र होता था, तो 4 पंक्तियां लिखी थी मैंने उस समय, तो वो उसमें छपी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि पांचजन्य मैंने देखा, तो पांचजन्य में एक परिचर्चा जो है प्रेम विवाह पर कुछ चर्चा थी, तो उसमें देखा कि आप भेजिए विचार अपने इतने शब्दों में भेजिए, तो वो मैंने भेजा, तो तब से ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ।
1: पहली बार आपने मंच से कविता कब पढ़ी?
2: मंच से कविता मैंने पढ़ी है 1984 में।

0: उनकी बिटिया से, फिर बाद में पता चला कि वो एक बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं। वहां मैं 1980 में जो बिजनौर का एक अखबार था उसमें संपादकीय विभाग में मैंने काम करना शुरू किया था, उत्तर भारत टाइम्स नाम था उसका। तो वहां पर कुछ एक विवाद था कुछ प्रॉपर्टी का दुष्यंत जी की, तो उस सिलसिले में आलोक भी आए थे और तब कमलेश्वर जी से मुलाकात भी हुई थी।
1: तो वो जो पहला कवि सम्मेलन था
0: जी,
1: उसकी कुछ स्मृतियां हैं आपके पास?
0: नहीं, उसकी बहुत ज्यादा स्मृतियां नहीं है,
1: हाँ
0: क्योंकि उस समय जैसे आप देखते हैं ना किसी कोई फंक्शन है उसमें किसी घर के बच्चे को कर दिया कि ये भी कविता पढ़ेगा
1: ये याद है कि कौन सी कविता थी?
0: ना ये भी याद नहीं है
1: अच्छा अच्छा
0: कि
1: अच्छा
0: कौन सी कविता थी, क्योंकि वो उस समय क्या था, उस समय जो पंक्तियां आपने लिख दी ऐसा लगता था कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता,
1: हाँ
0: यही सबसे अच्छी है। और फिर मैंने जो कविताएं लिखनी शुरू करी, आप सोचिए कि उनको बताया गया प्रकाशन के लिए भेजिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बिनी, मतलब उससे नीचे ख्याल ही नहीं था
1: जी जी
0: वहां सारी का, उसको भेजना। और जब वहां से वो संपादक के खेत सहित लौट के आती थी बाकायदा, तो वो जो पर्ची होती थी उसको भी संभाल के हम रखते थे।
1: आपकी रचनाएं जिन्होंने वापस भेजी हैं, अब आपकी रचनाएं छप रही हैं और साथ साथ में आप लोगों की रचनाएं छाप रहे हैं संपादन में, बताऊं कि आप बहुत अच्छे मुक्तक लिखते हैं।
0: जी
1: एक मुक्तक आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए तो हमें लगेगा कि मनोज अबोध जी कवि सम्मेलन पर जब जाते होंगे तब उस समय उनका कितना प्रभाव रहता होगा।
0: ऋषि जी, मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ, उसी समय का सुनाता
1: हाँ
0: हूँ
1: हाँ बिल्कुल
0: जो आपसे 40-42 साल पहले का
1: जी
0: एक
1: जी
0: मुक्तक
1: जी
0: मैं
1: जी
0: सुनाता हूँ। बड़ा प्रसिद्ध भी रहा ये, क्यों?

0: तुमसे
1: मिलने जैसे, ये बहुत बार आकाशवाणी पर भी बजाया है और जो आकाशवाणी के आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख कार्यक्रम हुए हैं कवि सम्मेलन, उसमें भी मैंने पढ़ा है। तो ये बहुत पुराना है, अब तो नहीं जरूरत पड़ती पढ़ने की, लेकिन आपने कहा तो मुझे उस समय की याद आई, उस समय के कवि सम्मेलनों की।
0: जिस समय ये आप मुक्तक पढ़ते होंगे या इसके अलावा कोई और गीत या गजल पढ़ते होंगे, तो दो तरह से वाह वाह मिलती है। एक तो जो आपके साथी कवि हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं, और एक सामने जो दर्शक बैठे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, वो आपकी प्रशंसा करते हैं। तो कोई ऐसा संस्मरण आप मुझे बताएं कि जो आपके मन को छू गया हो, आज तक भी वो आपसे नहीं निकल पा रहा हो ना।
1: ऋषि जी, दरअसल ऐसे संस्मरण तो बहुत हैं, क्योंकि उस समय ना तो टेलीविजन था और फोन का तो किसी को विचार भी नहीं आया था कि कोई ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सुनते थे बस वो लैंडलाइन फोन, कहीं कहीं कुछ खास जगहों पर होता था। कवि सम्मेलन ही ऐसी चीज थी मनोरंजन की और लोगों से जुड़ने की। और अमूमन जो कॉलेजों के कार्यक्रम होते हैं उसमें तो मुझे बुलाया ही जाता था, क्योंकि युवा कवियों में नाम होता था। वहां मैंने देखा तो बहुत आनंद आता था कि जब वहाँ जो है बैठाते थे वो लड़कियां एक तरफ होती थी, लड़के एक तरफ होते थे।
0: बिल्कुल सही बात,
1: इस तरह से जो है बड़ी दूरियां होती थी उनके बीच में,
0: जैसे कि अंखियों के झरोखों फिल्म में दिखाया है कि वो जो ना दोहे, इधर से लड़कियां पढ़ती है, उधर से लड़की, उधर से लड़के वाह वाह करते हैं, उधर से लड़कियां वाह वाह करती है ना, वैसा ही माहौल रहा होगा ना।
1: तो तब मैं, आप सोचिए कि बड़ा प्राउड होता, बहुत अच्छा लगता था कि उस समय और कोई तरीका नहीं था। मैंने देखा कि लड़के भी और लड़कियां बहुत ज्यादा है, कॉपी और पेन लेकर बैठती थी और जब वो पढ़ते थे तो वो लगातार नोट करती रहती थी। हाँ, नोट करती थी।
0: कितना अद्भुत रहा होगा है ना।
1: वो जो है बाबा के साथ जो है कि आपकी पंक्तियां कोई इस तरह से पसंद करके उनको कॉपी पे उतार रहा है, और उतार रहा है तो बाद में पढ़ेगा, उनको दोहराएगा, ये मानते हुए वो बड़ा खूब लगता था। और उसके बाद अगर जब टी ब्रेक होता था तो वो कई लड़कियां आती थी कि सर ये जो है ये पंक्ति अधूरी रह गई थी उस समय लिखने से, इसमें क्या ये लिखना है। और ऑटोग्राफ भी लेते थे, आप सोचे तो उस समय बड़ा वीआईपी सा, बड़ा अपने को ऐसा लगता था कि बड़े सेलिब्रिटी से है। लेकिन ये है कि वो अब जो है, आप सोचिए, आप माहौल एकदम से पलट गया है कि आप सोशल मीडिया और उसी पर सब रह गया है।
0: क्या कोई ऐसे श्रोता या ऐसे व्यक्ति या ऐसे कवि की कोई टिप्पणी आपको याद है जो आपकी कविताओं पर या आपके गीतों पर, आपके गजलों पर, आपके मुक्तकों पर मिली होगी?
1: नहीं, टिप्पणी की क्या बात है। आप सोचिए कि मुझे तो मेरी गजलों ने, मेरी कविताओं ने इतना बड़ा पुरस्कार दिया कि जिसके सामने कोई पुरस्कार नहीं टिक सकता है। जो मेरी जीवन

0: संगनी है वो केवल मेरी कविताओं पर
1: अच्छा,
0: ही
1: ये तो बहुत बड़ी बात है ना।
0: वो केवल वो
1: हाँ
0: जो है हैदराबाद में रहती थी, और वहाँ
1: अच्छा
0: जो स्वतंत्र वार्ता अखबार है निकलता है, हिंदी का बड़ा अखबार है, वार्ता तेलुगु का उसका निकलता है और हिंदी का उनका स्वतंत्र वार्ता है, उसमें वो उप संपादक थी, रूबी मोहन थी। तो चूंकि मैं मंथन फीचर्स और वो निकालता था, तो अखबार निकालता था, वो जाते थी कॉपी वहाँ, और उस समय सब भेजते थे छपने
1: यानी
0: के
1: यानी
0: लिए।
1: आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी प्रेम की कविताओं को सुनकर ही,
0: हाँ, पढ़
1: है ना।
0: के सुन के
1: हाँ
0: जो है
1: हाँ
0: ही वो मतलब इतनी जो है बंध
1: हाँ
0: गई मेरे साथ
1: हाँ हाँ
0: कि वो हमेशा के लिए पूरी ताउम्र के लिए बन गए वो लोग। अब
1: अच्छा
0: इससे बड़ा पुरस्कार आप
1: नहीं, ये
0: सोचिए क्या
1: बहुत
0: मिल सकता है।
1: सही बात कर रहे हैं
0: हाँ
1: आप, ये तो है
0: हाँ
1: ना।
0: ये लोग तो सोचते हैं कि साहब हमें ये सम्मान नहीं मिला, हमें अकादमी का नहीं मिला, उसका नहीं मिला, हमें
1: हाँ।
0: तो पूरा जीवन ही बदल गया उससे जो है।
1: नहीं, फिर भी जो जीवन तो बदला उस पल
0: जी
1: जिस पल वो आपके साथ जुड़ गई,
0: जी
1: लेकिन उसके बाद या उससे पहले ऐसी लोगों का कथन आपको ध्यान आ रहा हो कि भाई, या कोई घटना ध्यान आ रही हो कि श्रोताओं को या कवियों को देखकर आपको लगता हो कि यार वास्तव
0: देखिए
1: में एक अच्छा गीत है, अच्छा
0: ऋषि
1: कविता
0: जी,
1: हुई।
0: मैं दरअसल मूल रूप से अपने को प्रेम का कवि मानता हूँ।
1: अच्छा।
0: अब तो चूंकि समय के साथ साथ हर चीज लिखनी होती है, लेकिन उस समय प्रेम हम लोग लिखते थे,
1: जी
0: उम्र भी थी और उसी तरह के भाव भी थे। तो मैं देखता था कि कविता का कितना बड़ा प्रभाव होता है, गीत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। मेरी कई जो है लड़कियां इतनी फैन थी कि उनसे जो है आप सोचिए कि अब तो ये लगता है पीछा छुटाना ही बोलेंगे उसे, वो बड़ा मुश्किल हो गया था। और चिट्ठियां बेलोस होके वो लोग चिट्ठियां लिख देती थी, पत्र लिखती थी। मैंने अभी भी बहुत सारे पत्र ऐसे सहेज के लिखे हुए हैं,
1: किसी किसी पत्र का जिक्र
0: बहुत सारे पत्र हैं ऐसे। और उनको पत्र को अगर आप अब बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो प्रेम पत्र ही है। हाँ, लेकिन
1: ना।
0: वो चूंकि उस समय की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी मेरी
1: बिल्कुल सही
0: कविताओं के
1: बात।
0: ऊपर,
1: हाँ
0: गीतों के ऊपर, तो गजल तो उस समय कम लिखते थे, दोहे मैंने लिखने शुरू कर दिए थे, तो प्रेम के दोहे भी लिखते थे। एक मेरा मुक्तक जो है उसकी आलोचना जो साथ के बैठे वाले कवि हैं वो तो आलोचना करते थे उसकी,
1: वाह।
0: लेकिन यह है कि वो जो श्रोताओं में जो युवा श्रोता होते थे, लड़कियां होती थी, लड़के होते, उनको बहुत पसंद आता था, तो मैं सुना देता था
1: हाँ
0: उसको
1: बिल्कुल।
0: था। लेकिन
1: हाँ
0: यह है कि वो जो मेरे पीछे जो मंच पर बैठे हुए लोग होते थे वो जरूर जो है आलोचना करते थे, यार कब तक पढ़ते रहोगे।
1: हाँ नहीं,
0: हाँ
1: श्रोताओं की फरमाइश पर तो कहना ही पड़ता
0: तो
1: है ना।
0: वो मैं सुना ही देता था उनको। कई बार फरमाइश भी होती थी, अगर वही श्रोता एक दो ऐसा भी होता था उस समय,
1: जी
0: क्योंकि पास पास के उसमें 20-30 किलोमीटर के कस्बा दूसरे वहां के कॉलेज में है, वहां डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम है,
1: जी
0: पता चल गया, अखबारों में आती थी कि वहां एक कार्यक्रम होगा। तो यहां तक सोचिए कि बस से बैठ के, और कोई साधन नहीं था, बस ट्रेन का ही साधन था, श्रोता वहां तक पहुंच जाते थे। ऐसा जो उन लोगों को परिचित चेहरों को आपने देखा तो आपको ऐसा अपने को बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, कि आपको ऐसा लगता था कि भाई इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ी चीज नहीं। वही आपको बढ़ने की प्रेरणा देता था कि भाई ये
1: जी
0: लिखिए,
1: जी
0: ये मैं
1: सुनाइए।
0: 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। आप उस समय के माहौल को, उस समय के वातावरण को ध्यान में रखें,
1: जी जी जी
0: जब एक कुछ बात नहीं होती दुनिया के झमेले में,
1: वाह।

0: मिलना तो कभी हमसे चुपके से अकेले में, मिलना तो ये इन चार पंक्तियों से आप सोचिए कि बहुत सारे दोस्त भी बने और बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी रही कि
1: अच्छा, जो डॉक्टर कुमार बेचैन है उनका एक मुक्तक है कि जिंदगी का अर्थ मरना हो गया है और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे,
0: हाँ
1: और जिंदगी के बन गई है एक कुशन और चुभने के लिए हैं पिन
0: पिन
1: बहुत
0: बहुत
1: सारे।
0: सारे,
1: उनकी मुझे लगता है संग्रह का नाम ही पिन बहुत सारे था,
0: हाँ पिन
1: है ना,
0: बहुत सारे
1: इतनी
0: नाम
1: अच्छी है।
0: सर,
1: लेकिन
0: हाँ
1: आपकी एक रचना है कीलों के ऊपर, है
0: हाँ ये
1: ना,
0: गजल
1: एक
0: है।
1: रचना बड़ी अच्छी आपकी कीलों की है। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं से आप वो रचना को आप सुनाएं।
0: मैं चार पांच शेर उसको सुना देता
1: जी जी
0: हूं।
1: जी

दई। और एक शेर आपके और श्रोताओं के लिए खास, कि जब चढ़े जिंदगी की सूली पर,

0: ले
1: वाह सुंदर वाह सुंदर।
0: जंग खाई वे कथई की। एक शेर इस पे गजल का हुआ, वो भी आपको समर्पित कर रहा हूं। एक

0: बहुत सुंदर आपने ये गजल पढ़ी है और जीवन के यथार्थ को ये व्यक्त कर रही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी।
0: और अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप कवि सम्मेलन दिल्ली में पढ़ते हैं, आपने बिजनौर में भी पढ़े हैं, आपने और राज्यों में भी पढ़े हैं, अभी आप भोपाल भी गए थे, वहां भी आपने रचनाएं पढ़ी, तो आपका क्या अनुभव है श्रोताओं को लेकर या अपने संस्मरण को लेकर, कोई ऐसा संस्मरण जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें?
1: देखिए ऋषि जी, सच बात तो यह है कि जो कवि सम्मेलन है, जिनको कवि सम्मेलन के तौर पर जो प्रोफेशनल कवि सम्मेलन है, उनसे तो मैंने अपने को दूर कर लिया है, करीब पिछले 15 साल हो गए हैं। हाँ, जो छोटे जहाँ अपनी अपने लोगों की गैदरिंग होती है, जो छोटे कार्यक्रम होते हैं थोड़े से, जहाँ पर प्रोफेशन का या पैसे का धन का कोई,
0: यानी आप कहना चाहते हैं जहाँ व्यवसायिक कवि नहीं होते,
1: व्यवसायिक हाँ व्यवसायीकरण जो वो नहीं होता, उनमें मैं जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ और वहाँ सुनाता भी हूँ। जहाँ तक कवि सम्मेलन के बारे में मेरी राय है कि पहले कवि सम्मेलन जो होते थे तो उनके प्रति जो श्रोताओं की भावना होती थी वो अब के कवि सम्मेलनों में नहीं है, और उसके पीछे व्यवसायीकरण ही एक कारण मेन मान सकते हैं, या फिर आप सोचिए कि मनोरंजन के बहुत सारे दूसरे साधन भी आजकल हो गए हैं, समय की बहुत कमी श्रोताओं के पास भी है। पहले आप देखिए कि मैंने वो कवि सम्मेलन जो है उनमें शिरकत की है कि जहाँ शाम से जगह घेरने के लिए कि हम आगे बैठे, उस हिसाब से पहले कुर्सियां वीआईपी कुर्सियां होती थी, उसके बाद जहां रस्सी बंदी होती थी,
0: आम आदमी के लिए,
1: आम आदमियों के लिए, उसमें पहले बैठने के लिए लोग शाम से बैठते थे। कवि सम्मेलन रात को 10 बजे शुरू होता था, शाम से 7 बजे से लोग आके
0: बैठ जाते, ये रुचि थी उनकी, है ना,
1: तो रुचि होती थी और रात रात चलता था। आप सोचिए, और जो बड़े दिग्गज कवि थे एक दो, तो उनको रोके रखते थे, नीरज जी हुए, किशन सरोज जी हुए, तो उनको रोके हुए रहते थे कि भाई लास्ट में, तो उनको सुनने के वजह से भी पूरी भीड़ जो है रात को जमी रहती थी। आप सोचिए 4-4 बजे भी सुबह के जो है कार्यक्रम खत्म हुए हैं, और तभी भी जो है जब ये कहते थे कि कार्यक्रम खत्म हो गया, अब जो है कवि सम्मेलन खत्म हो रहा है, तब लोग उठते थे, खुद उठ उठ के जा रहे

0: नहीं, आजकल स्थिति ये हो गई है, आजकल तो थोड़ा बहुत सुना सुनाया और वो जो जो है लोग जाने लग जाते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है।
1: मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई शेर पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं मंच से, और सामने श्रोताओं से भरा हुआ पंडाल है या हॉल है, जब आपको कोई श्रोता ये कहता है कि इस शेर को दोबारा पढ़ें, तब कैसा लगता है?
0: तब बहुत अच्छा लगता है। तब ये लगता है कि वो लिखना जो है वो सार्थक हुआ, क्योंकि वो बात जो है आप कहना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है ऋषि जी कि कभी कोई भी हो रचनाकार, कोई भी, वो अपने विचार अपनी सोच के हिसाब से कोई चीज लिखता है और वो कन्वे पूरी तरह कई बार श्रोताओं को पाठकों को नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप पाठक से या श्रोता से सीधा जुड़ रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो उसके मन तक उतरती चली जा रही है, कविता की, गीत की, गजल की, यही सार्थकता है। और ये जो है यही आपको सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है उस कार्यक्रम का। वो अलग बात है प्रोफेशन के, और उसके साथ कोई पारिश्रमिक आपको दिया जाता है नहीं दिया जाता, वो एक सब चीजें अलग है।
1: हम जब कविताएं पढ़ रहे होते हैं और स्टेज पे जाने से पहले आयोजक हमको एक जगह पे बिठाते हैं जहां हम सारे कवि बैठ के बातचीत करते हैं, वहां की कोई ऐसी रोचक घटना जो आपको लगे कि हमारे श्रोताओं को जाननी चाहिए, या कोई ऐसी घटना जो मंच पर आपने पढ़ते पढ़ते कुछ अजीब सी स्थितियां हो जाती हैं तो वो लगता है कि भाई ये जरूर बताना चाहिए हमको श्रोताओं को, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कोई संस्मरण।
0: ऋषि जी ये बात आपने सही कही कि वो समय होता था कि जब कवि बाहर से बुलाए जाते थे, तो अगर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम वहां पर है तो हम आयोजकों में या इंतजामिया कमेटी में उसमें होते थे। वो अलग बात है कि कविता भी पढ़ते थे, लेकिन जो वरिष्ठ कवि है हमारे, जो हमारे आदरणीय, उनकी देखभाल करना, लेकिन उस समय के कवियों की बहुत सीमित आवश्यकताएं होती थी।
1: हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल।
0: और यहाँ तक होता था, होटल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं होते थे, तो ये होता था जो कमेटी के लोग हैं कि वो दो कवि आपके घर में रुकेंगे, ये दो, एक दो ये आपके घर में रुकेंगे, तो हम लोगों के बीच में ये वो रहती थी कि नीरज जी आ रहे हैं तो उनको भाई वो उनके इंतजाम हम देखेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, उर्मिलेश जी हैं तो वो हमारे साथ रहेंगे। और आप सोचिए कि उसके बाद फिर वो बहुत सादगी के साथ भोजन भी उन्होंने किया, बहुत थोड़ा सा अपना,
1: यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 4 या 5 दशक में कवि सम्मेलनों के आयोजन में बहुत बड़ा फर्क आया,
0: बहुत फर्क, मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया है
1: ना।
0: अब जो है उनको कन्वेंस भी उसी सुविधाजनक तरीके से, और आप सोचिए कि उनको रहने का व्यवस्था भी वैसी, तब ऐसा होता था हम लोग फिर उनको बैठा के, अगर स्कूटर है, बाइक तो बहुत मुश्किल से होती थी, स्कूटर है तो बहुत बड़ी बात है, वरना रिक्शा में बैठा के भी हम लोग लाते,
1: यानी आजकल दिखावा बढ़ गया है,
0: दिखावा बहुत बढ़ गया।
1: अच्छा मनोज जी, मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा कवि है जो आपको प्रभावित करता है? आप तो दुनिया को प्रभावित करते हैं।
0: नहीं, देखिये ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं कि जो प्रभावित करते हैं, जो कुंवर जी की बात आप कर रहे थे, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद थे, उनके साथ मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत मंच शेयर किए हैं कुंवर जी के साथ भी। उर्मिलेश जी आज नहीं है, राजगोपाल सिंह जी वो भी नहीं है, लेकिन ये सब मेरे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, दादा ब्रजेंद्र अवस्थी जी बधाइयों के।
1: मनोज जी, आपने अपने बहुमूल्य संस्मरणों और अनुभव से न केवल कवि सम्मेलनों की जीवन तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है, बल्कि साहित्यिक मंचों की गरिमा, परंपरा, संवेदनशीलता को भी रेखांकित किया है। आपके अनुभव निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं, साहित्य प्रेमियों और युवा रचनाकारों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। आपकी उपस्थिति हमको बहुत प्रिय लगी है, तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: कवि सम्मेलनों के संस्मरण क्रम में अभी आप श्री मनोज अबोध से श्री ऋषि कुमार शर्मा की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ, प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज।
3: कहते हैं साहित्य वह योग है जिसे व्यक्ति संवेदनशील, गुणी, परोपकारी, प्रकर्मी और विकार रहित बन सकता है। 14 जून को साहित्यिक पत्रिका ट्रू मीडिया के तत्वधान में वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवित्री डॉक्टर भूपेंद्र कौर सचदेवा के सम्मान में एक भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्य, संस्कृति और सम्मान की इस गरिमामयी संध्या में दिल्ली NCR के अनेक प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार और समाज सेवी एक मंच पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुष्मलता महाजन ने की। विशेष अतिथि के रूप में पंकज सक्सेना जी एवं श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन लक्ष्मी अग्रवाल जी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित साहित्यकारों ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी है, जो समय समय पर समाज को नई दिशा प्रदान करती है। काव्य गोष्ठी में उपस्थित कवियों एवं कवित्रियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, प्राकृतिक, राष्ट्रीय भक्ति, सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन विषयों पर प्रभावशाली काव्य पाठ प्रस्तुत किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर सुष्मलता महाजन ने कहा कि ऐसे आयोजन साहित्यिक चेतना को जीवित रखने के साथ साथ नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। श्री ओम प्रकाश प्रजापति ने सभी अतिथियों, कवियों, साहित्य प्रेमी तथा सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मंच भविष्य में भी साहित्य, संस्कृति और समाज हित के ऐसे

0: आयोजनों के माध्यम से रचना अभिव्यक्तियों को मंच प्रदान करता रहेगा। 14 जून को अलख राष्ट्रीय संस्कृत एवं शिक्षा ट्रस्ट गाजियाबाद के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में काव्योत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के जाने माने कवि, गीतकार, गजलकार और साहित्यकारों के साथ साथ उभरते कवियों कवित्रियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सर्वश्री लक्ष्मी राज सिंह, गजलकार राज कौशिक, कवि मनोज कुमार मनोज, डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय, रनिता सिंह, तिब्बा त्रिपाठी, कर्नल प्रदीप खरे, मंच का कुशल संचालन डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने किया। संस्था की संस्थापिका श्रीमती पूजा चौहान एवं सह संस्थापिका डॉक्टर गार्गी सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम भागीरथी पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के निदेशक श्री अमिताभ सुकुल एवं प्रबंधक श्री आनंदी शुक्ल का इस आयोजन को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। संस्था की संस्थापिका श्रीमती पूजा चौहान ने बताया कि प्रथम वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य काव्य उत्सव का आयोजन किया गया है। सर्व श्री उषा श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, सरिता गर्ग सरी, रक्षा सिन्हा, हिमांशु शुक्ला, संगीता वर्मा, यश शर्मा, आशु सिंह, स्वाति पूजा, प्रेरणा मल्होत्रा, जगदीश चंद्र वर्मा, सरोज दुबे, अपर्णा गर्ग शिव, शालिनी शर्मा, नीति मिश्रा, पूनम सिंह, नीरज त्यागी, रोहित कुमार, दीपक दीप, पूजा चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलख ट्रस्ट द्वारा दो बच्चों को शिवानी चौधरी और पूजा को शिक्षा के लिए अंगीकृत करते हुए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गान के उपरांत कार्यक्रम की समाप्ति हुई। 15 जून 2026 को सादरा स्थित शशि पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के सभागार में वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामचरण सिंह साथी गीतों और गजलों की एक भव्य संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संगीत और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसमें उपस्थित श्रोताओं ने रचनाओं का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि श्री प्रीतम सिंह प्रीतम ने की, जबकि कार्यक्रम का सानिध्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने प्रदान किया। मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ला उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि रामचरण सिंह साथी की रचनाएं जीवन के विविध रंगों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों को अत्यंत सहजता और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा श्री रामचरण सिंह के गीतों और गजलों की संगीतमय प्रस्तुति। सुप्रसिद्ध गायक श्री दीपेंद्र दीपक ने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज में साथी जी की रचनाओं को स्वर देकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री वीर सेन जैन सरल, श्री प्रदीप शर्मा, श्री चंद्रपाल भारद्वाज, कुसुम वियोग, राजेंद्र प्रसाद रंजन तथा श्री प्रकाश प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने रामचरण सिंह साथी के साहित्यिक अवदान की सराहना करते हुए उनकी रचनात्मक यात्रा को प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम का कुशल एवं प्रभावशाली संचालन कवि श्री पी के आजाद ने किया। उन्होंने अपने सदे हुए संचालन से पूरे आयोजन को रोचक और गरिमामयी बना दिया। अंत में उपस्थित साहित्यकारों, कवियों, संगीत प्रेमियों और श्रोताओं ने इस आयोजन को साहित्य और संगीत का एक यादगार उत्सव बताते हुए आयोजकों की सराहना की। कार्यक्रम रचनात्मक सांस्कृतिक चेतना के वातावरण में संपन्न हुआ।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रही थी। प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर पूजा भारद्वाज। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: साहित्य की अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: नमस्कार। वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को डालकर, वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर चलते रहे वक्त के साथ, आंखों में आंखें डालकर। नमस्कार दोस्तों, हमारे अतिथि कार्यक्रम में काजल का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है हमारे इस कार्यक्रम में, उनके लिए ये जरूर कहूंगी कि कला केवल रंगों और कपड़ों का संयोजन नहीं होती, बल्कि वो संवेदनाओं, कल्पनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। आज हम ऐसे ही एक सृजनशील व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डिजाइनों के माध्यम से परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सुंदर सेतु निर्मित किया है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं जाने माने टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर चंद्रशेखर भेड़ा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है
3: बहुत
4: और अनुभव बड़ा रोमांचकारी हो रहा है।
3: सबसे पहले तो

0: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस कार्य को लेकर, जिस काम में आप इतना लगन के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर, तो इस क्षेत्र में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: बचपन में मेरे पिताजी भक्ति संगीत गायक थे। संगमनेर नाम की जगह से आया हूँ, वो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में है
0: जी।
1: संयोगवश अब वो अहमदनगर नहीं रहा, अभी उसको अहिल्यानगर कहा जाता है
0: जी।
1: तो मेरे लिए तो एक पहचान खोने जैसा है। लेकिन वहाँ पर जो मेरे पिताजी थे वो भक्ति संगीत गायक थे, उनका अपना ट्रूप था और वो जगह जगह जा करके संगीत के परफॉर्मेंस करते थे, और उस माहौल में मेरी सारी परवरिश हुई। तो वहाँ पर एक क्रिएटिविटी का जो एक अनुभव है वो बचपन से रहा। मेरी जो मदर थी माँ, वो कपड़े सिलती थी
0: जी।
1: और उनके उनके साथ हम उनको मदद करते थे। उस वक्त जो सिलाई मशीन थी
0: जी जी।
1: वो हाथ से चलने वाली थी
0: जी जी।
1: तो वो दोनों हाथ से अपना कपड़ा सिलती थी, हम उनकी मशीन एक हाथ से चलाते थे। और धीरे धीरे फिर हम और भी ज्यादा समझ लो बड़ी लेवल पे गए, तब वो पेटीकोट बनाती थी, उस पेटीकोट की कलिया सिलने का काम भी हम करते थे।
0: बचपन से ही।
1: हाँ, बचपन से। तो इन्हें इससे क्या हो गया कि एक जो क्राफ्टमैन की जो एक छोटी बड़ी जो परवरिश होती है वो वहाँ होती रही
0: जी।
1: और बाकी हमारे परिवार के लोग भी संगीत में ज्यादा रुचि रखते थे, तो हम हारमोनियम और तबला इसके साथ बड़े पले हैं। उसके साथ साथ मेरी मेरी रुचि चित्रकला के क्षेत्र में ज्यादा रही
0: जी।
1: तो परिवार ने खूब प्रेरित किया अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। लेकिन भाग लेना ज्यादा जरूरी था, चाहे आपको उसका पुरस्कार मिले ना मिले, संयोगवश पुरस्कार भी मिलते गए तो उससे प्रेरणा मिलती गई। और 12वीं के बाद ऐसा मौका आया कि मुझे एक साल का समय ज्यादा मिल गया कि मैं मेरे एग्जाम दे नहीं पाया, तो उस वक्त हमने सोचा कि तुम्हारी कला की इंटरेस्ट है तो आप एक कला के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले लेते हो। मैं वहाँ से पहली बार मेरे संगमनेर से नासिक गया और वहाँ एक साल का फाउंडेशन कोर्स किया। वहाँ मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, वहाँ मैं फर्स्ट आ गया। तो वहाँ से अब कहा तो बोला चलो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट चले जाते। नासिक में ये एक आर्ट कॉलेज रहा है।
0: अच्छा, वहाँ पे आप गए?
1: वहाँ पे मैंने फाउंडेशन कोर्स किया। सारे आर्ट कॉलेज में क्या होता है, ये एक फाउंडेशन कोर्स करना होता है, वो सारे सारे स्पेशलाइजेशन के लिए कॉमन होता है। तो एक साल में आपको बेसिक ड्रॉइंग, कलर्स और मटेरियल इनके बारे में अनुभव कराया जाता है। तो वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होने के कारण हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा आप जेजे स्कूल ऑफ आर्ट चले जाइए।
0: अच्छा।
1: तो जब वहाँ गया तो मुझे, क्योंकि पहले मैं नासिक में पहला नंबर आया था तो मुझे फटाक से एडमिशन मिल गया। आज तक आजकल मैं देखता हूँ लोगों को एडमिशन के कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो हमें तो बड़े आसानी से एडमिशन मिल गया। तो वहाँ मैंने मेरी टेक्सटाइल डिजाइन की, वहाँ खत्म करने के बाद फिर इसमें मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पिताजी का देहांत हो गया।
0: अच्छा।
1: तो उस वक्त एकदम समस्या आ गई, क्या करें। तो मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम NID के लिए तैयारी करो, और उन्होंने फॉर्म भरवाया और मैं NID के एग्जाम दिया। NID का एग्जाम मिल गया और NID का एग्जाम देने के बाद वहां देखा तो वहां भी मेरा एडमिशन आराम से हो गया। और सारे भारतवर्ष से सिर्फ 4 लोगों को एडमिशन
0: मिला, नेशनल
1: इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन।
0: बहुत बड़ी बात।
1: तो ये टेक्सटाइल डिजाइन का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सिर्फ 4 लोगों को एडमिशन, दिल्ली की 3 लड़कियां थी और मैं महाराष्ट्र से था। उस वक्त क्या था कि अगर अच्छे आपको कैंडिडेट्स मिलते तभी एडमिशन होते थे, नहीं तो कई बार बैचेस खाली भी जाते थे। तो वहां पर एडमिशन मिलना सच्ची में अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जब मेरा एडमिशन हो गया तो मैं पीछे हट गया। मैंने परिवार को बोला नहीं मैं काम करना चाहूंगा, कुछ पैसे कमाना चाहूंगा, पिताजी गुजर गए। तो मेरे बड़े भाई ने मेरे पीछे खड़ा रह के बोला कि आप गलती नहीं करोगे, तुमको यहाँ मौका मिला, यू आर द लकीस्ट पर्सन एंड यू डिजर्व इट, दैट इज व्हाई यू गॉट इट। तो आप यहाँ जाइए, पढ़िए, कुछ चिंता ना करिए घर की। वो एक बड़ी अच्छी दिशा मेरे भाई ने मुझे दी, मेरे मदर ने भी बड़ा सपोर्ट किया और वहाँ मैंने पढ़ाई करी। तो इस तरह से डिजाइन क्षेत्र में मैं आ गया और वहाँ से और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मुझे करना सिखाया और NID ने मुझे क्या नहीं करना सिखाया।
0: तफसील से बताइए हमारे श्रोताओं।
1: जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था कि हम हमारा 9 बजे से लेकर के दोपहर में 3-3:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, और उसके बाद मैं कसारा में रहता था, कसारा वो वहां से ढाई घंटे दूर। शुरू में हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला तो मैं ढाई घंटे अप एंड डाउन करता था, तो 2 महीने के बाद मुझे एडमिशन मिल गया वापस हॉस्टल में। तो वहां पर पढ़ाई करने के बाद हम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से जाकर के जहांगीर आर्ट गैलरी में बैठते थे, और वहां पर गणमान्य लोगों की प्रदर्शनियां, उनकी कलाएं देखते थे। तो वहां पर ना उन सारी प्रतिभाओं को देख करके बहुत प्रेरणा मिलती थी, हमें कुछ करना चाहिए। तो यू शुड बी डूअर। वहां से जब एनआईडी में आ गया तो एनआईडी में रिलेवेंस सिखाया गया कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका औचित्य क्या है।
0: बिल्कुल,
1: और जब औचित्य हो जाएगा तो उससे फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो चीज बनाई उसका उपयोग कहाँ होगा।
0: बहुत खूब।
1: तो वहां पर सुंदरता और कलात्मकता का अनुभव रहा, यहाँ पर औचित्य का अनुभव रहा। तो उससे क्या हो गया कि आपको लोगों की जरूरतों को पहचानने की आदत डाली गई, वो क्षमता आ गई कि आपको समझना है कि कहाँ तुम्हारे काम की जरूरत है, कहाँ पर आप किसी की जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी ला सकते हैं। दैट इज डिजाइन, कि आपको उपयोगिता का भी ध्यान रखना है, सुंदरता का भी ध्यान रखना है। तो ये जो बैलेंस है, तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की पढ़ाई और एनआईडी की पढ़ाई से का जो मिश्रण हुआ, वो मुझे लगता है मेरे लिए एक आशीर्वाद के जैसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये रहा।
0: बिल्कुल, यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस तरह से आपने अपनी जर्नी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, तो आप बचपन से ही इस लाइन से जुड़े, कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि मुझे ये करना है, वो पैशन की बात आ जाती है। और कहते हैं ना कि जब पैशन हो तो पैशन आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि सिलाई मशीन से आपने शुरू किया, मम्मी के साथ हेल्प करते थे, उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे आपने इतने आयाम एनआईडी आपने ज्वाइन किया और हर जगह आपको बहुत सफलता मिली। तो क्या कहेंगे, पैशन तो बहुत जरूरी चीज होती है। क्या
1: बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, पैशन होना जरूरी है, और खास करके बचपन में ना आपका परिवार का साथ
0: बहुत
1: आपके साथ
0: है।
1: वो बहुत बहुत मायने
0: रखता
1: है। कई बार क्या होता है, परिवार में बड़े लोग होते हैं, नहीं आपको इंजीनियरिंग करना है या आपको बैंक में जाना है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने बच्चे की रुचि जाने बगैर अगर उसको किसी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक अनबन सा रह जाता है, और कई बार बच्चे असहाय महसूस करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मजेदार बात आपको कहता हूँ कि घर में ये माहौल रहा, और मेरे पड़ोस में एक साइन बोर्ड पेंटर की फैमिली रहती थी। मेरा बचपन का स्कूल के बाद का टाइम उस साइन बोर्ड पेंटर के यहाँ बैठे रहता था।
0: बात?
1: और उस अनुभव में मैं उनको उनके बोर्ड के ऊपर लिखाई करते हुए देखता था।
0: क्या बात?
1: तो किसी को काम करते हुए देखना जो एक अनुभव होता है ना,
0: उससे भी आदमी बहुत कुछ सीखता है।
1: उससे बहुत कुछ सीखता है। और मजेदार चीज आप देखोगे, हमारे भारतवर्ष में जहां भी इस तरीके के साइन बोर्ड पेंटिंग करने के लोग होते हैं, ज्यादा करके इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है। वो क्या कहते हैं, विजुअल लिटरेसी उनकी अच्छी होती है,
0: लेकिन सही बात,
1: लेकिन पढ़ने वाली नहीं होती
0: है।
1: तो मुझे क्या था, मैं पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा था, तो मैं जाकर के उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करता था। तो उनको भी मेरा वहां पर बैठना बड़ा अच्छा लगता था, कि मैं पता नहीं ये तुम्हारी मात्रा गलत नहीं, इसको ठीक। कई बार मैं तो इंतजार करता है, पहले करते फिर बाद में बताओ।
0: क्या बात, बहुत खूब।
1: तो वहां पर ये सारी, और साथ में साइन बोर्ड पेंटिंग के साथ साथ वो सुनार भी थे।
0: अच्छा।
1: तो वहां पर सोने की और चांदी के जेवरात बनते थे, उसकी तार मोटी मोटी सलिया को तार कैसे बनाना है, वो जो सारी क्राफ्टमैन की जो सारी एक्टिविटीज होती है ना, उसको बहुत ही बारीकी से देखा है, और उनकी मदद भी करते थे। दूसरी तरह से तार भी इसे तार पीछे से खींचते थे गरम गरम। तो ये सो सारी चीजें थी ना, उस वक्त नहीं पता था, लेकिन आज मालूम होता है कि वो सारी चीजें इस नींव को डालने में बहुत ही उपयोगी रही,
0: बहुत असर डाला है उन्होंने।
1: बहुत असर डाला। और हमने देखा ना, हमारे घर में जैसे एक चाचा ढोलक बजाते थे, दूसरे चाचा बांसुरी बजाते थे, तो हम भी कभी बुलबुल तरंग बजा रहे, कभी हारमोनियम बजा रहे। हमने कभी हमारे पिताजी के सामने कभी परफॉर्म नहीं किया, उनको हम सोचते हैं उनको नहीं मालूम पड़ना चाहिए, वो इतने अच्छे कलाकार हैं, हम क्या करें। एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी के जो साथीदार थे हारमोनियम वाले नहीं आए, और उनका परफॉर्मेंस था शाम को, अहमदनगर जाना था, उनको बोला चंद्रशेखर चलो बैठो मेरे साथ, तुम हारमोनियम बजाओगे। मुझे मेरे तो पसीने छूट गए। तो मैं मुझे और नहीं आती, बोले ये सब कहना नहीं, तुमको जैसी भी आएगी तुमको बजाना है। और तकरीबन 1.5-2 घंटे का जो प्रोग्राम था, उसमें मुझे रात में हजारों लोगों के सामने हारमोनियम बजाने का मौका मिला।
0: क्या बात, ललक होनी चाहिए किसी भी।
1: तो ये एक अविस्मरणीय चीज हो गई। ऐसे 2 बार मुझे मौका मिला उनके साथ हारमोनियम बजाने का, तब मुझे लगा हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ इनके साथ। तो उसके बाद डिजाइन के साथ साथ संगीत भी मैं कुछ कुछ
0: तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आप डिजाइनिंग करते हैं उनकी सबसे खास पहचान क्या है?
1: ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको,
0: क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये भी पढ़ा स्पाइडर का

0: स्पाइडर डिजाइनिंग में चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं
1: मेरा स्टूडियो
0: खास जो आपकी डिजाइनिंग
1: मेरा स्टूडियो का नाम है स्पाइडर डिजाइन और काफी लोग पूछते हैं मुझे कि स्पाइडर डिजाइन क्या क्यों नाम रखा। जब शुरू जब एनआईडी से पढ़ के दिल्ली आया मैं तो मैं सोचता कि अपना स्टूडियो जब बनेगा इसका क्या नाम रखा जाए, तो फिर मैंने सबसे पहले अपना जो खासियत है टेक्सटाइल डिजाइन की इसका विश्लेषण किया और फिर मैंने और उस वक्त हमारे जो कुछ खास नामी डिजाइन स्टूडियो जो थे वर्ल्ड में फ्रॉग डिजाइन या एलिफेंट डिजाइन ऐसे नाम थे, तो हमने सोचा है तब मुझे लगा कि स्पाइडर जो एक जो प्राणी होता है वो उसकी विशेषताएं अलग होती है। स्पाइडर तो एक तो उसकी खासियत होती है किसी भी दिशा में वो ओरिएंटेशन बदले आगे पीछे हो सकता है, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा चीज स्पाइडर अपने जाल ऐसे बिछाता है कि उसके अंदर वो अपने प्रे को या अपने खाने की चीज को फंसाता है, सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक दैट इज अ स्ट्रेटेजी। सो व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट व्हेन यू प्रपोज अ प्रोजेक्ट यू हैव टू वर्क आउट अ स्ट्रेटेजी, सो दैट ट्रेट इज ऑल्सो इज देयर इन स्पाइडर, वो उसमें है। उसके बाद स्पाइडर बड़े सुंदर जाले बनता है,
0: बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत,
1: वो अपने आप में लोगों को उसको तो तिरस्कार होता है लेकिन आप अगर उसको बारीकी से देखोगे तो वो एक बहुत ही अजीब और बहुत ही अलग प्रकार की कला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल है,
1: और वो बुनाई के लिए बहुत ही ज्यादा पैरेलल है। तो इस तरीके की जो स्पाइडर और उपयोगी भी है क्योंकि वो अपने भोजन के लिए उसका उपयोग करता है, सो यूटिलिटी एस्थेटिक्स स्ट्रेटेजी ऑल दीज आर पार्ट ऑफ स्पाइडर डिजाइन। इसलिए फिर मैंने सोचा कि स्पाइडर डिजाइन का नाम रखा जाए। कुछ लोगों ने बोले स्पाइडर डिजाइन क्या नाम रखा मकड़ी के जाले का, तो मैंने देखो ओनिडा ने अपना जो स्ट्रेटेजी किया था ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी, तो ये भी एक सोचने का तरीका, तब से ये मेरा स्टूडियो स्पाइडर डिजाइन रहा। अब आपने ये पूछा मुझे कि मेरे डिजाइन की खासियत क्या है, अक्सर आप अगर देखोगे खास करके फैशन डिजाइन में कई सारे डिजाइनर उनकी एक शैली से पहचाने जाते हैं। अगर आप कहेंगे रोहित बाल तो आप उसका ड्रेस आप पहचान लेंगे तुरंत, रोहित बाल, या अगर आप कहेंगे जे जे वाला तो पहचान लेंगे, या आपको डेविड एंड अब्राहम उनका ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन मैंने थोड़ी सोच अलग रखी, मैंने ये सोचा कि मैं अगर डिजाइनर हूं और मैं नए नए जरूरतों को अगर मैं बना रहा हूं तो मेरे पसंदीदा चीजें मैं नहीं बनाऊंगा, उनकी जरूरत क्या है उस जरूरत को क्रिएटिव तरीके से पूरा करूंगा। इसका मतलब मेरी जो पहचान हर प्रोजेक्ट में जो आउटकम आता है वो बदलता रहता है।
0: क्या बात,
1: सो फ्लेक्सिबिलिटी इन माय प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: अभी जो बात कर रहे थे हम फ्लेक्सिबिलिटी,
1: तो मैं कभी भी मेरा जो आउटकम होता है प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कि सरप्राइज एलिमेंट हो, और वो सरप्राइज एलिमेंट जब आता है तो इस्तेमाल करने वालों के भी आनंद है, मुझे भी एक समाधान मिलता है, मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कुछ नया किया। तो कुछ नया करने की जो एक जुनून है,
0: जुनून
1: वो पैशन के बाद ये सारा आ गया। तो मैं कभी भी प्रिडिक्टेबल काम करने के आदि नहीं रहता।
0: फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी आर्ट वर्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रोताओं, घड़ी हमसे कह रही है कि कार्यक्रम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चंद्रशेखर भेड़ा जी से उनके अनुभवों की जानकारी और लेनी है, उनसे बातचीत का ही सिलसिला अभी जारी रहेगा हमारी अगली कड़ी में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में एक बार फिर से जो हमारी बातें छूट गई हैं रह गई हैं उन सभी बातों को लेकर एक बार फिर से चंद्रशेखर भेड़ा जी से बातचीत होगी हमारे अतिथि कार्यक्रम में। तब तक के लिए काजल को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। आपने सुना हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट डिजाइनर चंद्रशेखर भेड़ा से काजल सूदी की बातचीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: Sarà vinto il canonico.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का

0: जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले है INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
0: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become largest community celebration day because of yoga.
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
2: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. Since the inception of the International

0: और आपके पास कोई स्टोरी है योग को लेकर तो वो भी हमसे साझा कीजिएगा। क्यों शोभा?
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत से मैसेजेस हमें श्रोताओं के आते हैं और योग क्या ये लोग तो इतने जागरूक हैं, कभी कभी तो हमें जिस दिन का जो भी कोई बात होती है विशेष तो बताते हैं और आज का दिन जो है वो तो खास है योगा के लिए। तो ज़रूर हमारे श्रोताओं से हम उम्मीद लगाते हैं कि हमें ज़रूर संदेश भेजेंगे और हमें बताएंगे कि उन्होंने योग दिवस को कैसे मनाया।
0: बिल्कुल, तो पहला संदेश लेते हैं, लिखते हैं आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, हमारी फरमाइश को किसी गीत में शामिल कीजिए। तो बिल्कुल हम आपका जो नाम है वो हमने शामिल किया है कार्यक्रम में। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से हमें संदेश भेजते हैं। अगला संदेश शोभा किसका है?
1: बिल्कुल, अगला संदेश हमें आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से है, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जुनैब मजूमदार।
0: तो जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसके साथ आप हमें अपने संदेश भी योग को लेकर भेजिए कि आज आपने कैसे योग दिवस मनाया। और हमारे पास एक संदेश आया है, लिख रहे हैं योग डे और फादर डे। बिल्कुल, तो आज योग दिवस तो है ही है, आज फादर्स डे भी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने पूरे आकाशवाणी परिवार को भेजी है। और इसके साथ ये संदेश है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया का, तो आपको भी योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगला संदेश शोभा किसका है?
1: अगला संदेश जो हमें मिला है ये आया है हमें कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से है, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ये लिखते हैं कि आज योग सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कृपया आप हम लोगों को कोई भी गीत पसंद का सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात की है कि योग सभी के लिए ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए तो योग बिल्कुल औषधि के बराबर है।
0: बिल्कुल, और कहते भी हैं कि योग कोई अभ्यास भर नहीं, ये जीवन की मधुर पुकार है, थके हुए मन को विश्राम दे, ये भीतर का सच्चा संसार है, सांसों में जब शांति उतरती है, मन में जब विश्वास जगता है, तब योग सिर्फ मुद्दा नहीं, जीवन जीने का अंदाज बनता है। तो बिल्कुल, जीवन जीने का एक अनोखा अंदाज है योग। योग से आप अपने मन की शांति तो लेते ही हैं, कहते हैं तन मन की शांति और स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर, इसका जो ये आप कर सकते हैं योग के द्वारा। और हमारे पास अगला संदेश शोभा किसका है?
1: ये संदेश आया है हमें भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है, हमारे साथ जुड़े रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और ये लिखते हैं योग अपनाओ जीवन पाओ। जी हाँ,
0: बिल्कुल, योग अपनाओ जीवन पाओ, क्योंकि योग से ही मन में विश्वास का सूरज खिलता है, जीवन का हर अंधियारा धीरे धीरे फिर ढलता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि योगा से होगा। और हमारा अगला संदेश हमें लिखते हैं कि सच पूछे तो अभी कोई योग नहीं किया, सुबह की रूटीन मॉर्निंग वॉक जरूर हुई, अलबत्ता ये एक घंटे के नहीं डेढ़ घंटे की थी। योग तो अब संध्या के समय होगा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, पर करेंगे ज़रूर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको करना ज़रूर है। और ये ऐसा हमें लिखते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और साथ में कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हमें सुन रहे हैं।
1: और अगला जो संदेश शो में आया है ये है ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, ये है प्रवीण हागे ने, योगिता कुमारी प्रियाली पार्थ और साथ में इनका हागेने परिवार की तरफ से ये मैसेज आया है। इन्होंने बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश की है। जी हाँ बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश पर गौर करेंगे। अगला जो संदेश है उसे ले लेते हैं हम। ये आया है संबलपुर कांकेर से, हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव का संदेश। और ये संदेश हमें आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा का। ये लिख रहे हैं कि हमारे मैसेज शामिल नहीं करते, तो दोस्त ऐसी बात नहीं, आपका मैसेज शामिल हुआ है। और आज हम बात कर रहे हैं योग की, तो हम चाहेंगे कि योग से संबंधित आपकी भी कोई राय है कि आप योग करते हैं या नहीं करते हैं, या आप उसको ज़रूरी समझते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ देखो, ये इन्होंने मैसेज में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा संदेश।
0: ये लिखते हैं कि योग करने से शरीर में ताजगी आती है जो बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। और ये ऐसा लिखना है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा अपने लिसनर से कि थकान तनाव उलझन सब दूर हो जाए, जो योग को अपना ले वो खुद से भरपूर हो जाए। तो योग को अपनाना है। और इस बार जो योग की थीम है वो एजिंग के ऊपर है कि आप एजिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब आप योग करते हो तो तन के तो आपका तन स्वस्थ रहता ही है, लेकिन इसके साथ आपके मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आपका जो मन है वो आच्छादित रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो आपकी जो चेहरे की रौनक है वो बरकरार रहती है। और शोभा कहीं ना कहीं आज के हमारे युवा अगर देखो तो बहुत सारे आज केमिकल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं
1: अपनी
0: जी और अपने चेहरे को चमकाने के लिए, लेकिन जब तक अंदर से मन प्रसन्न नहीं होगा तो चेहरा आपका उतना नहीं चमकेगा। तो ऐसे में योग एक ऐसी चीज है जो इससे आपका तन तो फुर्तीला रहेगा, साथ में मन भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चुनौती है जो कि आज जिसमें पूरी दुनिया उससे जूझ रही है।
1: और सिद्धार्थ जैसे कि तुमने कहा कि एज रिलेटेड योगा, मतलब इसके पर फोकस किया जा रहा है कि मतलब आप उम्र नहीं बढ़ेगी, इस तरह से आप ध्यान दे सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे कि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डियों में स्टिफनेस से आ जाती है, तो योगा करने से वो स्टिफनेस दूर होती है और वाकई में फिर सारी तरह से रक्त प्रवाह जो है ना संचार बहुत अच्छी तरह से करता है और वाकई जान में जान आती है।
0: जान में जान आती है, कितनी अच्छी बात कही शोभा तुमने। और हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं कि आदाब नमस्कार, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। लिखते हैं कि प्यारी सिस्टर आरजे, प्यारे भाई चांदना, आप आरजे सिद्धार्थ सर जी और शोभा जी, योग करने से ही हम स्वस्थ भी रहते हैं और योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है, योग से ही संयोग रहता है, ऐसा कहना है।

0: जैन मंदिर वाली गली कुरावती से राशिद, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी का।
1: और बहुत से मैसेजेस और भी हैं, पर उससे पहले सुनते हैं संदेश, और संदेश के ठीक बाद एक प्यारा सा गीत भी होगा, क्योंकि नहीं तो ये कार्यक्रम अधूरा सा लगेगा अगर गीत नहीं होंगे तो।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आपकी पसंद में, मैं हूँ आपके साथ शोभा, और मेरे साथ हैं,
0: जी हाँ, मैं शोभा के साथ हूँ, आरजे सिद्धार्थ। और हमारा अगला संदेश कहता है कि इन्होंने सिद्धार्थ और शोभा का अभिनंदन किया है, योग दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को। और ये लिखते हैं कि आज सुबह 6 बजे ही नज़दीक पार्क में दोस्तों के साथ योगा किया। मेरे लिए हर रोज़ ये दिवस है, क्योंकि योगा और सैर करना मेरी दिनचर्या में शामिल है। आपकी दुआओं से शरीर एकदम स्वस्थ है, और ऊपर से आकाशवाणी ताज़ा रखती है, हमेशा आनंदित रहता हूँ। तो ये तो सतीश अनेजा जी, आपने चंडीगढ़ से जो हमें इतनी सुंदर सी बात और अपना शोभा, इन्होंने अपना रूटीन शेयर किया है, तो बहुत अच्छी बात है, और
1: अच्छी
0: मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है आपके।
1: बिल्कुल, इस तरह से तो वाकई में अगर आप कहेंगे रहेंगे तो बस जिंदगी और अच्छी खूबसूरत होगी, क्योंकि हमारा तन स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ, और फिर आसपास सब कुछ अच्छा लगेगा
0: जी। और अगला संदेश हमें किशोर नगर अमरावती के हिरमान शेंडे और सिद्धार्थ गुडाने जी का है। ये लिखते हैं कि मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। भाई इसका तो देखो, ये
1: तो हैप्पी फादर्स डे विश कर रहे हैं,
0: बहुत अच्छा संदेश है। और इस संदेश को तो मैं आज अपने पापा को भी भेजने वाला हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी बात इन्होंने लिखी है कि आज फादर्स डे एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, और आज अपने अपने पिता को शुक्रिया कहने का दिन है उन तमाम चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए करी। क्योंकि जब आपको पता है, एक पिता एक ऐसा व्यक्तित्व तो होता है, माँ से तो हम हमेशा अपने मन की बात कर लेते हैं, अपनी हर एक छोटी सी बड़ी बात, लेकिन पिता के साथ जाने में थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं। तो पिता वो हैं जो बिना थके बिना रुके हर दिन काम करते रहते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे से रह सकें। तो जितने भी पिता हमें सुन रहे हैं, आज हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आज आपका दिन है। तो शोभा, आज जितनी मम्मी है ना उनसे ये बोलना पड़ेगा कि आज जो पिताजी है ना, आज उनका दिन है।
1: बिल्कुल, क्योंकि पिताजी ना कम बात करते हैं पर ठोस बात करते हैं। बाहर की जो घर की दुनिया होती है उसकी जैसे कहें समझ हमें माँ सिखाती है, तो जो बाहर की दुनिया में हमें कैसे रहना कैसे जीना है वो ज़्यादा बेहतर पिता ही सिखा पाते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि माँ का कम है, पर पिता की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो कम शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं। और चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। अगला जो संदेश हमें आया है ये है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। ये लिख रहे हैं, इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है और आप हमारा मेल शामिल करें ना करें, हम सुने बिना नहीं रह सकते। तो बहुत अच्छी बात है, सुने बिना नहीं रह सकते, पर मेल भी तो शामिल हुआ है ना दोस्त आपका।
0: बिल्कुल, और हमारे अगले जो श्रोता है इन्होंने कोई संदेश तो नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ शोभा और सिद्धार्थ को नमस्कार इन्होंने भेजा है, भारत भूषण जी ने। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और जो पिता की बात हम कह रहे थे, आपसे ये कहना चाहेंगे कि माँ अगर घर की रोशनी है तो पिता उसका आधार है। माँ अगर घर की रोशनी है तो पिता उसका आधार है, उनके दम से ही सपनों को मिलता सच्चा आकार है।
1: बिल्कुल, और इसी प्यारी सी बात पर एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए कि उसे धर
0: जी। बिल्कुल।

जी हाँ, आज तो खास दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ ही आज फादर्स डे भी है, और हम ये कहना चाहेंगे कि खुद धूप में जलकर हमें छांव दे गए, पिता अपने हिस्से के सपने भी हम परवार गए। एक पिता एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, ऐसा व्यक्तित्व होता है कि पिता वो छांव है जो धूप खुद सहकर भी बच्चों को सुकून देता है। पिता वो हिम्मत है जो हर मुश्किल में चुपचाप साथ खड़ा रहता है। पिता घर की नींव है जिन पर पूरे परिवार की खुशियाँ वो टिकी होती हैं। तो जितने भी आज पिता हमें सुन रहे हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, और उन बच्चों से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने पिता का हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे। क्योंकि कहते भी हैं ना कि अगर हम शोभा देखें तो जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे पिता हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन एक दिन जब वही पिता बूढ़े हो जाते हैं तो शायद हमें उनको अपना हाथ देने की ज़रूरत होती है, कि उनका सहारा बनने की ज़रूरत होती है। शायद उनके कंधे अब उतने मजबूत नहीं रहे, उनको साथ लेने की ज़रूरत होती है। तो आज प्रॉमिस करिए हम

0: सारे सारे लिसनर्स को प्रॉमिस करना होगा कि आज का दिन वो अपने पिता को याद करेंगे, आज का दिन वो अपने पिता के साथ मनाएंगे। और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, अगला संदेश किसका है?
1: ये संदेश जो आया है हमें आया है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का। और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शानदार प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुक्रिया दोस्त, अच्छा लगता है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है। और अगला जो संदेश वो हमें आया गांव घिटोरनी नई दिल्ली से, साबिर हुसैन मिरासी का, और इनके साथ हैं मोहब्बत बेगम। और ये संदेश ले लेते हैं, ये संदेश आया है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। और इन्होंने भी बहुत ही प्यारे एक जो गीत है ना उसकी फरमाइश की है।
0: बिल्कुल, तो पिता की बहुत बातें चल रही हैं और पिता को सब लोग याद कर रहे हैं। और हमारे अगला जो संदेश है लिखते हैं कि आदाब और नमस्कार जी, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। रौनक तो प्रोग्राम में जब आपका ये संदेश आया तो रौनक आई है। और आप हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं, हम जानते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये लिखते हैं कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, बेबी आसमा परवीन, जीटी रोड तालुका करजन से, अखलाक अहमद फूलवाले, आशु अहमद फूलवाले और उनके सभी परिवार के सदस्य समय साथ में बैठकर कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और हमारे एक अगले जो सिद्धार्थ गुडाने जी हैं, इन्होंने एक संदेश लिखा है कि पापा एक दिन क्या आपके नाम कर दूं, कह दो तो एक बार अपनी जान आपके नाम कर दूं, अपने ही तो इन सांसों को जिंदगी दी है, आपने ही तो इन सांसों को जिंदगी दी है, आपके होने से ही मेरी पहचान बनी है, फादर्स डे की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत
1: बहुत, बहुत, बहुत शुभकामनाएं।
0: और आपको बता दें कि आपके लिए ना बहुत अच्छा सा सॉन्ग क्यू किया है शुभा ने, जो खास हम डेडिकेट कर रहे हैं फादर्स डे के लिए।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: जी हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा ये आइकॉनिक सॉन्ग, जो कि हर बेटे की जबान पर था एक वक्त पर, और आज सबको ये गाना बहुत भा रहा होगा। और कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियों में जो खुद को भूल जाते हैं, वही पिता बच्चों के सपनों को सच कर जाते हैं। कितना ही त्याग, कितनी ही बातें एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है। और बिल्कुल कई बार या ये भी कहते हैं कि उनकी खामोशी से भी दुआओं का असर होता है। पिता का प्यार हर रिश्ते से बढ़कर होता है। तो फादर्स डे पर जितने भी फादर हमको सुन रहे हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, जितने लोग, सबको हम में आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सिद्धार्थ और शोभा दे रहे हैं। और शोभा, तुमने बहुत अच्छी बात, अभी जब हम ये सॉन्ग प्ले कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार कुछ लोगों के पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ऐसा आभास होता है कि हमेशा उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, वो हमेशा हमारे साथ
1: है। बिल्कुल, वो जो उनका जो आशीर्वाद है, जो स्ट्रेंथ देता है, वो कहीं और से नहीं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अपने जो पिता है उनकी जो फ़र्ज़ है, उनकी जिम्मेदारियाँ खुद पर लेनी है, और स्ट्रांग हमें मतलब बनाती है वो चीज़ें, क्योंकि पिता मतलब हमेशा स्ट्रांग ही हमें पर्सनैलिटी दिखाई देते हैं। तो वो स्ट्रांग ही जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो चीज़ हमें उन्हीं से मिलती है बच्चों को, क्योंकि कहते ना संस्कार मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, पर स्ट्रेंथ है कि भाई आगे बढ़ना है।
0: स्ट्रेंथ है, वो पिता टफ होते हैं,
1: टफ होते हैं, पर मतलब कहें कि अरे तुम कर सकते हो, आ जाओ आ जाओ, इस तरह के पेरेंट्स।
0: कई बार बाहर से दिखने वाला इंसान ना शोभा, जो थोड़ा टफ दिखता है, जो थोड़ा लगता है कि हाँ,
1: पर सबसे ज्यादा भी पापा खुश होते हैं
0: अंदर से, वो कुछ भी बहुत ही कोमल होते हैं, और अपने बच्चों को लेकर तो खास तौर से,
1: और बहुत खुश रहते हैं कि जब भी कोई थोड़ी सी अचीवमेंट हो ना, जितने पापा खुश होते हैं ना, सबको बताते हैं, इतना मम्मी भी नहीं बता पाती है।
0: बिल्कुल, तो ये तो बात थी फादर्स डे की। और इस बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि हो सिद्धार्थ जी, शोभा शर्मा जी, योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है, शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ती है, और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, नींद अच्छी आती है। ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत सारे आपने योग के फायदे बता दिए। ये कहना है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और तुलसी मस्कीन का। हमारा अगला संदेश किसका है शोभा?
1: जी हाँ, ये संदेश भी तुलसी मस्कीन का, तो अगले संदेश की ओर रुख कर लेते हैं कि और किस किस के संदेश आए हैं। तो ये जो अगला संदेश है, ये आया है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से।
0: बिल्कुल, तो अब अगला संदेश।
1: बिल्कुल, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगा के बारे में अच्छा संदेश दिया।
0: क्या लिखा है शोभा?
1: योग केवल शरीर को मोड़ने या आसन करने का नाम नहीं है, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने की एक अद्भुत कला है। बहुत बढ़िया बात लिखी है, और इन्होंने लिखा है योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्त, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैसेज हमें भेजा है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने।
0: बिल्कुल, तो आपका संदेश हमने शामिल कर लिया। और इस बीच हमारे जो अगले श्रोता हैं, लिखते हैं कि करो योग, रहो निरोग, और रोजाना योग करते रहो, सदा युवा बने रहो, योग अपनाओ, स्वस्थ हो जाओ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है, और ये ऐसा हमें लिखा है, ये लिखते हैं कि शोभा जी और सिद्धार्थ जी, सादर प्रणाम आपको और इंद्रप्रस्थ परिवार को योग दिवस और पिता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संदेश है सुदर्शन मुक्ति, अनीता मुक्ति, सिमरन मुक्ति, आप लिखते हैं शांतिनगर सोनीपत से। और हमारा अगला संदेश,
1: अगला संदेश भी हम बढ़ाते हैं आगे अपने मेल को, देखते हैं किन का आया हुआ है। तो ये संदेश जो हमें आया है, ये है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा और जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का।
0: जी, और आपसे श्रोताओं हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप के जब आपका नाम हम शामिल करते हैं, तब तक आप बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा हम पढ़ चुके हैं, कौन सा नहीं। तो आप अपना संदेश एक बार ही भेजें और हम उसे अवश्य शामिल करेंगे कार्यक्रम में। हमारा अगला संदेश है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और इसके अलावा बीकानेर राजस्थान से रानी और बिट्टू झाओ का। ये लिखते हैं, आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, कृपया हमारे कोई भी गीत सुनवाएं। बिल्कुल, गीत हम आपकी पसंद के ही सुनवा रहे हैं। और एक और संदेश ले लेते हैं,
1: ये आया है हमें गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का, और इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में हमें शामिल करें। तो बिल्कुल, बहुत ही पसंद का गीत आपको सुनवाएंगे, बहुत ही प्यारा गीत। तो सुनते हैं ये गीत।

0: जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा।
1: और इस समय हम आपके संदेश शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं इस समय, और ये लिखते हैं कि कुछ साथी ज़्यादा होशियार बनते हैं और बार बार भेजते हैं तो उनके नाम। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमें बार बार नहीं भी भेज रहे हैं संदेश, एक बार में हमारी नज़र उन पर है। राजू अग्रवाल, चरण दास, रेखा, गाँव चौधरी, वास, जिला हिस लिखते हैं हिसार धरी से। तो आपका संदेश हमने बिल्कुल शामिल किया, और देखिए अगला संदेश किसका है शोभा।
0: जी हाँ, ये संदेश आया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी का, पिंगावाला चौक, गोरैया, जलंधर से। ये लिखते हैं योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहें, मस्त रहें, जिंदगी का आनंद लेकर रहें, जिंदगी जिंदाबाद। वाकई में जिंदगी जिंदाबाद तब होगी जब आप योग करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल, योग से जिंदगी जिंदाबाद बाद ही होती है। और हमारा अगला संदेश, ये तो हमने शामिल कर लिया है। जी हाँ, ये रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी सरूनी ईशु और पेंटर ने ये संदेश हमको भेजा है। इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है।
0: और जो अगला संदेश है वो हमें है किशन वंजाने, नीलम, स्वाति और किशोर का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। ये लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे की सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को भी फादर्स डे और जो योग दिवस है, दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में दिन सेलिब्रेट करने के लिए ही है, क्योंकि
1: बिल्कुल, क्योंकि तन को मिले लय, मन को मिले ठाँव, योग के संग हर दिन लगे जैसे कोई गाँव। और योग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये कहना है दवरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद और अनोखे लाल वर्मा शायद लिखना चाह रहे हैं। और आपका संदेश हमने शामिल कर लिया। और
0: बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि योग एक दिन की बात नहीं है, रोज करना चाहिए। या आज का जो दिन है वो आपको जागरूक करने के लिए है कि योग करें, परंतु हम कहेंगे कि योग रोज करेंगे तो निरोगी ही रहेंगे।
1: और जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो योग दिवस के का में उनका संबोधन था, उन्होंने 365 डेज योग का उन्होंने जिक्र किया था कि योग सिर्फ एक दिन की चीज नहीं। जैसा कि शोभा ने भी कहा कि योग तब कारगर होगा जब इसे आप दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। योग का कोई समय नहीं, जब आपको समय मिले, जहां आपको जगह मिले, वहां पर आप योग करिए।
0: बिल्कुल। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया है खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, और इनके साथ है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक सिक्का। ये लिखते हैं

0: थक गए हैं सर दीदी जी, अब आप हमें शामिल नहीं करते हैं, लगता है हमें अब शामिल नहीं करोगे, बस हमें अपना बस अपनों को शामिल करोगे। तो आप भी तो दोस्त अब हमारे ही हैं, कोई भी अपना ऐसा तो नहीं है, सारे श्रोता आप और हम यूँ कहें कि एक साथ होते हैं तभी तो कार्यक्रम अच्छा बनता है, और सभी के हम कोशिश करते हैं कि संदेश लें। तो अगला संदेश ले लेते हैं
1: जी, बिल्कुल।

0: दोबारा से हमें याद किया और आपका संदेश नहीं मिलता तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। ये लिखते हैं कि आज निर्माता अभिनेता जुगल किशोर जी का स्मृति दिन है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला संदेश किसका है?
1: जी हाँ, ये संदेश हम पहले से ले चुके हैं और उनकी यही शिकायत है कि हमने संदेश नहीं लिया, तो दोस्त ऐसी बात नहीं है, चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, और उनके साथ है समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता जी। और ये संदेश हमें आया
0: जी, ये आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का ये संदेश हमारे पास आया है। और ये कहते हैं कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम को हम यूं ही चलाते रहेंगे। और सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल

0: जी हाँ, आप कैसे भी हों, ऐसे हों या वैसे हों, आप सही हो सकते हैं अगर आप योग करते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन, यही योग का सच्चा उपहार है। योग वो साधना है जो उम्र नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा बढ़ाती है। और इस बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं।
1: जी हाँ, ये संदेश आया है जलालाबाद वेस्ट से, है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। ये लिखते हैं, योग दिवस और फादर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्त, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और ये संदेश है कमल कांत गुप्ता जी का। कहते हैं, योग करे रहे निरोग जीवन। जीवन में योग की का बहुत महत्व है, बिल्कुल महत्व बहुत ज़्यादा है। और

0: जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे लिए श्रोता लिखते हैं कि आप हमें अनदेखा क्यों कर रहे हो, कैसे अनदेखा कर सकते हैं, हमें भी प्रोग्राम में शामिल कर लेना। बिल्कुल, जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर डी कैस्ट्रो, विल्स डी कैस्ट्रो ने हम संदेश हमें भेजा है।
1: जी हाँ, और संदेशों का सिलसिला तो बहुत जारी रहेगा, परंतु समय नहीं है तो हम आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। तो बिल्कुल इजाज़त दीजिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा सा गीत हम छोड़े जा रहे हैं आपके लिए। तो मुझे और सिद्धार्थ को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 11 बजने को है। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
2: ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के

0: जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep-water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. Defence Minister Rajnath Singh has said that the tri-commissioning of INS Dunagiri, INS Agra and INS Sanshodhak is going to be a defining moment in India's maritime capability development. In a social media post, the minister said that these state-of-the-art platforms are a testament to the country's robust defence manufacturing ecosystem and its unwavering resolve towards Atmanirbhar Bharat. The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the common yoga protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June the 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become the largest community celebration day because of yoga.
3: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
2: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the National Capital Region to celebrate the 12th annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar participated in a yoga session at Nehru Park in New Delhi. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that 22 lakh students are appearing for the NEET UG re-examination. Talking to media in New Delhi, he urged students to take the exam without fear and wish them the very best. The Education Minister also assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the examination. In cricket, India A were 147 for 2 wickets in 13 overs against host Sri Lanka A in the summit clash of the Tri-Nation A Series 2026 at the Rangiri Dambulla International Stadium when reports last came in. Earlier, Sri Lanka A won the toss and elected to bowl first. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं विलास पाटिल और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत।

सुहेल राइस खान और मंजीरा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। आइए इस कार्यक्रम में आगे सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में, सुहेल राइस खान की आवाज़ में एक और गीत।

इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विपुल छाबड़ा से ध्रुपद गायन, राग है तोड़ी, संगत कलाकार हैं पखावज राम कुमार शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विपुल छाबड़ा से ध्रुपद गायन। राग था तोड़ी, पखावज पर संगत कर रहे थे राम कुमार शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, ठीक उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। तो सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agray in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today, India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace.
3: 2014 tak desh ka kul defense production 40,000 crore rupiye ke aas paas tha, aaj yeh badhkar lagbhag 1,80,000 crore rupiye tak pahunch gaya hai। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
2: Defense Minister Rajnath Singh also said that the tri-commissioning of the 3 indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. This theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day.

0: सकती है। और जब मन स्वस्थ रहता है तो सब कुछ स्वस्थ रहता है, दिल दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है, और काम जब करता है तो हर काम अच्छा लगता है और जीवन उतना ही खुशहाल लगता है। क्यों कमलेश जी?
1: और मैं तो यही कहती हूँ कि जब हम योग की बात करते हैं तो कहते हैं योग मतलब जमा। जमा क्या? जमा ये है कि हमें अपने अंदर अच्छी आदतें भी तो लानी है ना। केवल हमने मान लीजिए आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली, आधा घंटा हमने बोल दिया कि प्राणायाम कर लिया, व्यायाम कर लिया, और उसके बाद जब हम परिवार के सदस्यों से मिलते हैं तो हर परिवार का सदस्य हमसे दूरी ही बना के रखता है। अरे इनसे बात करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, अरे इनसे इस बात में राय लेंगे तो ये हमें ढंग से राय नहीं देंगे। तो हमें कैसा बनाना है अपना जीवन? हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है कि कोई भी हमसे बात करने के लिए उतावला रहे, कि हाँ इनसे अगर हम अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। और जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है तो हर कोई खिंचा चला जाए।
0: बिल्कुल, और इसी पर ना हम आज कहते हैं ना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, और इस भव्य आयोजन का जो मुख्य समारोह था वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ऐतिहासिक रोड पर आयोजित किया गया। तो इस पर जहां बहुत कुछ हुआ, तो चले सुनते हैं इस पर एक बाइट।
1: बिल्कुल, और जो बाइट है वो किसकी है तो वो हम बताते हैं कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाइट हम आप बहनों को सुनवा रहे हैं।
0: ML जाट DG एवं सेक्रेटरी डेयर ICAR पूसा नई दिल्ली से।
2: विश्व योगा दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज विश्व योगा दिन का जो सेलिब्रेशन किया गया, पूरे देश में सभी लोगों ने योग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को इस दिन पे संबोधन किया, और यहाँ पे आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस प्रांगण में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट इकट्ठे होके आज यहाँ पे योगा किया। हम लोग तो खेती के बारे में काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, और मुझे लगता है कि योगा की बात करते हैं और खेती किसानी भी एक बहुत बड़ा योगा है। आज का योगा सिर्फ एक दिन का योगा नहीं, इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया योगा 365, तो योगा हर दिन करना है। और हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, कृषि में तो रोज़ योग वैसे भी करना है। आज के इस योग दिवस पे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: और जब हम बात करते हैं योग की तो हमारी बहनें भी सुन रही हैं ये कार्यक्रम, और उन्हीं का अपना कार्यक्रम है, वो क्यों नहीं सुनेंगी। और जब हम बात करते हैं हमारी बहनें पता है क्या कहती हैं, कहती है भाई सारा दिन तो हमारा योग होता है, इधर जाओ उधर भागो, इधर रसोई का काम करो, उधर खेत खलिहान का काम करो, फिर बच्चों को संभालो, उसके बाद में ढोर डांगरा का करो, हमारा तो जी योग हो गया।
0: लेकिन ऐसा नहीं है कमलेश जी, बिल्कुल ऐसा नहीं
1: है,
0: क्योंकि काम तो अलग चीज है और योग अलग चीज है। योग करने से कहता, और आप पता है इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इस पर कुछ थीम भी थी।
1: अच्छा, वैसे तो रेनू पता है जो हमारी बुजुर्ग बहनें ना वो कहती है अरे तुम क्या रेडियो पे बैठ के योग योग कर रही है, बढ़ती उम्र में कौन योग करेगा, हम तो अपने पोता पोती और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन्हें बालकों को पालने वही ठीक है
0: ना बाबा ना। अच्छा? इसीलिए तो इस बार यही थीम रखी गई कि जो बढ़ती उम्र के प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है, बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक रूप को स्वस्थ और सक्रिय बनाने के लिए इसका थीम रखी गई स्वस्थ आयु के लिए योग।
1: बिल्कुल, आयु आपकी जो भी हो, अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो आप उस पूरी आयु को भले प्रकार से जी पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारी जो बहनें हैं वो जब योग करती हैं तो एक मानसिक रूप से भी वो सबल रहती हैं, क्योंकि केवल योग का मतलब ये होता है कि हम अपने लिए कुछ समय निकाल कर बैठे हैं, नहीं तो ये होता है हमने पूरे परिवार के लिए ये काम करना है वो काम करना, और हम अपना जो काम है वो भूल जाते हैं। अपना क्या काम है? अपने आप को स्वस्थ रखना। कभी सोचा है जब हम बीमार होते हैं तो हम कितने एकदम डल महसूस करते हैं? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद एक छोटी सी बिंदी लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, काजल डाले, तो अपने आप को ना एनर्जेटिक महसूस होता है। कभी महसूस किया? करके देखना, क्योंकि मैंने किसी के कहने पर करके देखा है।
0: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि योग कितनी भागदौड़ वाली जिंदगी हमने बना ली, हर वक्त हम भागते रहते हैं, लेकिन मन जो है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। और संतुष्ट करने के लिए ना मन को कहते हैं ना कि उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है योग करना, और हम महिलाओं के लिए तो बेहद जरूरी, क्योंकि वो घर बाहर बच्चे हर किसी को संभालती है, तो उसे सबसे ज्यादा अपने मन को संभालना भी जरूरी है।
1: और अगर आपका मन संभला रहेगा तो आपके घर का कोना कोना भी महकता रहेगा।

0: गृह से संबंधित सभी ताने बानों के साथ ग्रामीण महिलाओं और हमारी प्यारी सखियों से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में मैं हूँ रेणु तंवर और मेरे साथ
1: कमलेश मुद्गल। और स्वीकार कीजिए हम दोनों का
0: प्यार भरा राम राम। तो भाई आज तो बहुत ही स्पेशल डे है, आज बहुत खास दिन है, आज है 21 जून। और 21 जून खास क्या है या आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों, पहले तो ये बताइए। कम
1: देखिए चमक तो हमेशा रहती है पर आज आपने महसूस की है क्योंकि आज का दिन है बड़ा खास, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही सभी लोग लग गए हैं योगा करने के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो आज आपने अपनी आदत बनाई है उसको पूरी उम्र अपनी आदत में शामिल रखिएगा जिससे कि आप स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल, और स्वस्थ रहने का कई तरीके थे, लेकिन कहते हैं ना योग एक ऐसी चीज है जो आपको मन और तन से स्वस्थ

0: और कुछ नहीं है कमलेश, बैठ के ना अलोम विलोम कर लो, आप किचन में भी करो थोड़ा बहुत, सांसों को कहते हैं ना थोड़ा लंबा लें और छोड़ें, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद
1: और
0: होगा।
1: अगर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ,
0: बैठ जाओ,
1: एक गिलास पानी अपने सामने रखो और उस पानी को भी केवल घूंट घूंट करके पियो। सोचो कि पानी गर्म है, क्योंकि ठंडा पानी तो हम एक बार में एक घूंट में पी जाते हैं,
0: और साथ
1: लेकिन
0: में एक बात तो और कमलेश, एक बात की अगर
1: बताओ
0: हमारी
1: बताओ।
0: महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं तो इस वक्त भी आप आराम से अलोम विलोम कर सकती हैं, तो हमारा प्रोग्राम भी सुने और अलोम विलोम भी करें।
1: बिल्कुल, अगर नहीं आता हो तो हम आपको बता दें कि सांसों का आना और जाना,
0: हाँ,
1: धीमी सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब आराम से अपने सांसों पर ध्यान रखना है, मतलब अपने आप से मिलिए, आपसे
0: कोई
1: सुंदर कोई भी
0: नहीं
1: नहीं है, हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह
0: कह
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।

आज की दौड़ती भागती जिंदगी की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि जब हम अपने रुपए पैसे का हिसाब रखते हैं या रुपए पैसे की बात करते हैं, कहते हैं हम तो बड़े सुखी हैं। भैया रुपए पैसे तो हर कोई सुखी होगा, और जब हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम बड़ा उसे

0: सोच समझ कर खर्च भी करेंगे, लेकिन एक बात तो है कि जैसे पहले हमारी दादी नानी करती थी कि भैया थोड़े पैसे यहाँ संभाल के रख दिया, थोड़ा यहाँ संभाल के रख दिया, और फिर एक बटुआ ले जाते थे, फिर उसमें भी बैग में देखते थे कि यहाँ पर इतने पैसे रखे हैं, और दिमाग में रखना भी पड़ता था भैया 100 रुपए के नोट कहाँ है, 50 के कहाँ।
1: वो कहते ना हर हमारी माए जो है बटुआ लेके घूमा करती थी, लेकिन अब हम सब क्या लेकर घूमते हैं?
0: अरे मोबाइल लेकर घूमते हैं, मोबाइल बटुआ हो गया आजकल तो।
1: बिल्कुल, आधा बैंक तो हमारा मोबाइल हो चुका है कि मोबाइल के जरिए हम अपने पैसे का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ना बचत करना किस तरीके से, हम हमारे फोन के माध्यम से भी हम बचत बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जैसे डिजिटल भुगतान की अगर बात कही जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम, हमें खतरा नहीं होता कि भाई ये पैसा मेरा इधर उधर ना चला गया और बटुआ खो तो नहीं जाएगा, तो ये है कि लेकिन फोन ना खो जाए इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और कितने सारे ऐप हैं इनके माध्यम से हम जो भी भुगतान करने होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन रेनू एक बात तो है, अब मैं भी ना कई बार डरती हूँ और भुगतान नहीं कर पाती हूँ, और कुछ मेरी तरह से और भी बहने हैं उनको भी डर लगता है कि भाई हम पैसा जो है कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि एक दो के साथ अगर ऐसी बात हो जाती है तो फिर उनको लगता है भाई हमारा पैसा तो गया, और जिसके पास पैसा जाता है वो फिर वापस तो देगा नहीं।
1: बिल्कुल, इसके साथ साथ कहते हैं ना आर्थिक साक्षरता का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या वो सही जगह आप भेज पा रही है नहीं भेज पा रही है। तो इसके लेन देन के लिए एक सीमित होती है, UPI मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आप भुगतान तो करती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सही जगह करें, क्योंकि कई बार होता है OTP आता है और हम बहुत जल्दी जल्दी में ना दे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अपना OTP, बैंक पासवर्ड और UPI पिन किसी के साथ साझा ना करें।
0: बिल्कुल, और ये बार बार हम लोग भी कहते हैं और जितने भी मीडिया वाले लोग हैं सब बताते हैं भी ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और सबसे बड़ी बात तो हमारी जो महिलाएं आर्थिक रूप से संबल हो गई हैं, और सबसे एक और अच्छी बात की जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, उन बहनों को भी मैंने देखा कि फटाफट जो है उनके पैसे हैं उनके उसमें आ जाते हैं, और फिर उनको पता चल जाता है कि भाई हमारी जो है कितनी सेल हुई है, हमारे पास कितना पैसा आ चुका है, और जो सामान हमने खरीदना है वो कौन सी दुकान से खरीदना है, और वहां पर भी हमने कैसे उनको UPI के माध्यम से या पे के माध्यम से गूगल के माध्यम से हमने उनको पैसा कैसे ट्रांसफर करना है। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ बैठे हैं गाँव में, अगर किसी को जरूरत पड़ गई है तो शहर से जो है गाँव में पैसा
1: ले सकते हैं।
0: तो पहले कितनी टेंशन हो जाती थी, कभी इससे बोलना पड़ता था, कभी उसको बोलना पड़ता, फिर कहते भैया आप दे देना, हम आके आपको दे देंगे, या हम आपके आपको पैसा जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो सुविधा है, यानी जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं तो उस तरक्की का फायदा भी हमें मिल रहा
1: बहुत है। और जिन महिलाओं को इसका ज्ञान नहीं है, हम बता दें कि आप अपना बैंक खाता सक्रिय कर रख सकते हैं, मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक करवा सकते हैं, और एक विश्वसनीय UPI ऐप का उपयोग करना सीखें, और नियमित रूप से अपने बैंक के खाते की जानकारी और लेन देन की जांच करते रहें, तो ऐसे कई डिजिटल भुगतान का उपयोग आप शुरू कर सकती हैं। और सबसे ज्यादा आर्थिक साक्षरता जरूर ध्यान रखें कि पैसे कमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि पैसे का सही तरीके से कैसे आपको प्रबंधन करना है, कैसे आपको लेन देन करना है उसका भी ध्यान रखें, किस तरह से निवेश करना वो ध्यान रखें। और हमारी महिलाएं इतनी समझदार हैं कि आर्थिक रूप से वो किसी भी तरीके से कैसे रहें, लेकिन उन्हें जोड़ना अच्छे से आता है, और पूरे परिवार और समाज को वो एक सकारात्मक प्रभाव भी देती है।
0: और जब सकारात्मक प्रभाव रहता है, लेकिन देखो रुपया तो रुपया है, या वो आप डिजिटल माध्यम से भेजें उससे उपयोग करें, या आप अपने हाथ में रखकर उससे उपयोग करें, सबसे बड़ा तो रुपया है।
1: बिल्कुल, तो चले इस पर हम सुनते एक प्यारा सा गीत।

सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी,

0: कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम श्रेष्ठ करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार।
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं हूं लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय की कहे की कहे, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।

0: लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लाऊंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ये कल मुही को छोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात, ले ले बढ़ा दो हाथ,
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारे सारी उम्र के कमाई गई डॉलर है। हाय भैया।
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।
3: बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया। बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया। सबसे भला रुपया है रुपया है रुपया, भैया सबसे भला रुपया।
4: और रेनू, जो 21 जून का दिन है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है, और यही दिन होता है जो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को हम जोड़ सकते हैं प्रकृति के साथ, हम जोड़ सकते हैं अपनों के साथ, क्योंकि जब अपने अपनों के साथ जुड़ते हैं तो उससे तो बात ही कुछ अलग हो जाती है।
5: बिल्कुल। और योग कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम है, बल्कि मन को शांत और सकारात्मक बनाने का काम भी करता है। और वाकई गर्व की बात है कि भारत ये अनमोल विरासत आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन संदेश दे रहा है, और इसी पर हम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए योग गुलशन कुमार योगाचार्य से बातचीत कर रही हैं नवोदिता मिश्रा, तो चलिए सुनते हैं।
6: नमस्कार। आज विश्व योग दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं योग हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, और योग से जो फायदे हैं वो हर आयु वर्ग के लिए हैं, हर लिंग के लिए हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए ये आवश्यक है कि वो योग से जुड़े, योग से जो फायदे हैं उसको अपना सके। महिलाओं की अगर खास तौर पर बात करें तो ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए किस तरह के योग, जो योग साइंस है, जो एक पूरा विज्ञान है योग का, वो प्रिस्क्राइब करता है। इस विषय पर और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन जी, हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका गुलशन जी।
7: थैंक यू।
6: सबसे पहला सवाल तो यही है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में जब हम योग के योगदान की बात करते हैं तो ऐसा क्या है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए, क्या योग ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन है?
7: योग सभी वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, युवा हो, बालक हो या बालिका हो,

वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, युवा हो, बालक हो या बालिका हो, हर आयु वर्ग के लिए योग करना बहुत जरूरी है। योग वास्तव में एक ऊर्जा है, योग एक शक्ति है, और महिलाओं के लिए योग उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं

0: के लिए पुरुषों से ज्यादा अच्छा माना गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को उत्तम श्रेणी की तरफ ले जाने के लिए योग की तरफ ध्यान दें।
1: हाँ, मेरा पूछने का मकसद भी कहीं ना कहीं यही था कि जब हम ऐसी महिलाओं की बात करते हैं जो कई फ्रंट्स पर, कई मोर्चे पर वो अपना समय दे रही हैं, ऑफिस हो, घर हो, परिवार की अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं, और वैसे भी कहा गया है जो योग चित्त वृत्ति निरोध जिसे कहा गया है, योग
0: जी
1: उसमें बहुत मदद करता है, तो जो चित्त की चंचलता है वो शायद हमारे समय का सबसे बड़ा संकट है। उस हिसाब से भी हमें लगता है कि योग जहां पर आप हैं वहां रहते हुए भी आप, तो महिलाओं के विषय में ये ज्यादा अनुकूल होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं ही परिवार की जो प्रथम शिक्षिका मानी गई हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करती हैं और अपने परिवार की अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं। तो जहाँ महिलाओं के शरीर में कई बार कुछ बदलाव आते हैं, कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, तो इन सब पीड़ाओं से मुक्त करने का जो माध्यम है वो योग है।
1: अगर योगासन की बात करें खास तौर पर, तो जो अलग अलग आयु वर्ग है, जैसे एक कोई किशोर युवती है, कोई मध्य वय की कोई महिला है, और फिर जो रजोनिवृत्ति के बाद जो महिलाएं, तो अगर हम अलग अलग वय की बात करें खास तौर पर, अगर रजोनिवृत्ति के बाद की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि उस समय किस तरह की योगिक क्रियाएं, किस तरह के योगासन उन्हें खास तौर पर मदद कर सकते हैं?
0: मीनोपॉज की बात आप कह रहे हैं, तो मीनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में काफ़ी चेंजेस आते हैं और महिलाएं ज़्यादातर देखी गई हैं कि वो एक तनाव की स्थिति में उन्हें गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि मासिक धर्म एक उम्र के बाद बंद होता ही जीवन शैली अपनाने के साथ संतुलन योग की कुछ क्रियाओं का चुनाव अपने लिए कर लेना चाहिए। और यदि वो नियमित रूप से ताड़ासन करती हैं, कटी चक्र आसन करती हैं, कोण आसन करती हैं और कुछ मुद्राएं भी की जा सकती हैं, योग मुद्रा कर सकती हैं, बटरफ्लाई कर सकती हैं और इसी तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम, इतना बस प्रतिदिन कर लें इस वर्ग की महिलाएं, तो वो एक संतुलित जीवन यापन कर सकती हैं। जो उनके सामने कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, अगर इस वर्ग की महिलाएं जो मैंने विधियां और नाम गिनाए हैं वो अगर महिलाएं करती हैं तो काफी सुधार उनको अपने जीवन में मिलता है। साथ साथ योग करने से महिलाओं के अंदर जो एक चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन होती है, तो इरिटेशन आहार कोई करता है और आहार के लिए भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था एक बार कि योग किसको सिद्ध होगा, तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट योग के बारे में, अधिक ना खाई अधिक ना सोई अर्जुन योग सिद्ध सो होई, ना तो अधिक खाने वाले को ना अधिक सोने वाले को योग सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने संयम की बात कही है। तो शरीर को उन्होंने फिर चार भागों में, हठ योग प्रदीपिका के अंदर मीता हार की बात आती है कि दो भाग भोजन के शरीर में डालने चाहिए, एक भाग जल और एक भाग खाली छोड़ना चाहिए सांस को आने
1: आने
0: जाने के
1: जाने
0: लिए।
1: के लिए।
0: यदि कोई व्यक्ति अपने कंठ तक ठूस ठूस के खाना भर लेगा, फिर उसको या तो वोमिटिंग हो जाएगी या कोई और परेशानी आ सकती है।
1: जी।
0: तो इस तरह से आहार के बारे में बताया गया है।
1: और मेरा अंतिम प्रश्न योग दिवस की इस वर्ष की थीम से है, जो एजिंग से रिलेटेड है। एजिंग हालांकि सभी को एक तरह से ही परेशान करती है, कहिए कुछ सोचने के कुछ ऐसे मुद्दे देती है, तो एजिंग को लेकर अगर महिलाओं और एजिंग की बात करें, तो इस साल की जो थीम है योग, उसमें कैसे मददगार हो सकता है, और या इस साल की ये थीम रखने के पीछे विचार क्या है इसका?
0: योगा फॉर एजिंग यानी जो वृद्धावस्था है, स्वस्थ वृद्धावस्था कैसे हमारी योग के माध्यम से हमें मिल सकती है, कि वृद्धावस्था में शरीर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जो एज है वो एकमात्र संख्या है। अगर हम योग के माध्यम से प्राणायाम और अन्य योगिक विधियों को अपना करके शरीर को आप लचीला बनाए रखते हैं, तो शरीर में एक नई प्राण शक्ति का योग के माध्यम से संचार होने लगता है और शरीर में एक फिर से एक नई ताजगी, नई

0: उमंग नई तरंग योग के अभ्यास करने से पैदा हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे फोकस किया है कि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, तो इसी थीम को शायद इसी बात के लिए देश के सामने रखा है कि योग में आप वृद्धावस्था में ढलान की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस ढलती हुई शरीर की अवस्था को योग की ऊर्जा से भर करके एक नई शक्ति का विकास फिर से आप कर सकते हैं।
1: योगी गुलशन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण

0: जानकारियां साझा की, बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमारी बहनें सुन रही थी ये बातचीत महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए योगाचार्य गुलशन कुमार से निवेदिता मिश्रा की ये बातचीत।

0: कि आप इसकी वेबसाइट पर जाएं पीएम किसान सम्मान निधि और बेनिफिशियरी स्टेटस पर जो विकल्प आए उसके ऊपर क्लिक करें, फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या आधार नंबर है उसको दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें और गेट डाटा पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करें।
1: लेकिन ध्यान रहे कि सरकार द्वारा जितने भी नियमों के अनुसार खाते में पैसे के लिए EKYC बहुत जरूरी है।
0: और 23वीं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त 20 जून को

करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं।

और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें।

0: कमलेश जी, अगर हम बात करें हमारे आयुष मिशन यानी कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की, तो भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य होता है कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ करना और जन जन तक पहुंचाना।
1: बिल्कुल, और इस मिशन के माध्यम से आयुष अस्पतालों और जो औषधालय है उनका विकास किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है और लोगों को आयुष पद्धतियों के बारे में जानकारी
0: भी दी जाती है। बिल्कुल, और गुणवत्ता ही बढ़ाई जाएगी और औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को प्रोत्साहित करना भी इसका मिशन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि किसानों को आय के नए अवसर भी मिलते हैं।
1: बिल्कुल, और उनका जो कच्चा माल है वो भी समय पर उपलब्ध हो जाता है। और इसी के साथ हम बात कर लें भारत की वीरांगना क्रम में, तो आज हम बात करेंगे उषा मेहता के बारे में, जो गांधीवादी और स्वतंत्र कार्यकर्ता थी, राष्ट्रवादी गीत और जो अधिकारियों के जो एक भाषण थे वो एक खुफिया रेडियो स्टेशन के माध्यम से प्रसारित किए जाते थे, क्योंकि जो बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं जब तक हम अपने श्रोताओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे पता चलेंगे। तो उस समय पर ये काम जो थी वो उषा मेहता ने किया था, और 3 महीने के बाद उनको फिर जेल की यात्रा करनी पड़ गई थी और उन्होंने आजीवन खादी पहनी थी और सामाजिक कार्यों से वो जुड़ी रही।
0: और 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की कार्यकर्ता रही और इसी के बाद हम इनको शत शत नमन करते हैं और सुनते हैं ये वाला नगमा।
1: और इसके साथ ही हम ये बता दें कि जो हमारा कार्यक्रम हमारी बहनें सुनती हैं और समय समय पर जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको ये भी बता दें कि आज विश्व संगीत दिवस भी है, क्योंकि इतने सारे दिवस हैं तो मुझे लगा कि पहले उनको जो है ये बताना चाहिए।
0: बिल्कुल, और संगीत से मन और तन दोनों खुश रहता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप सुनते हैं हमारे संगीतों को और संगीत के साथ साथ जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो आप तो पता ही है कि हमारा यही उद्देश्य होता है कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और घर बैठे ही इसका ज्ञान भी लें, साथ साथ संगीत का एक कहते हैं ना मन खुश करने वाले हम गीतों का बहार भी लेकर आते हैं, चाहे वो फिर वो लोक गीत हो, रागनी हो या फिर हमारे बॉलीवुड से संबंधित गीत हो।
1: बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं आज के दिन की, तो आज फादर्स डे भी है और जून के तीसरे रविवार को अपने पिता के प्रति मान सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इस दिन को जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज का जो दिन है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी है,
0: क्या बात?
1: इसमें समुद्र के नक्शे और हाइड्रोग्राफी के महत्व को बताता है और ये भी बताता है कि वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और ये दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जितना हमें ज्ञान हम कहीं से भी लेकर बटोर कर आते हैं या अपना ये देखते हैं कि अपनी बहनों को क्या क्या बताया जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: और समय कम, हमें लगता है कि समय कम है।
1: देखो, इसके साथ साथ हमें भी जानकारी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम आप बहनों के समक्ष आते हैं तो देखो ऐसे ही नहीं आ जाते, पूरी जो है वो टीम वर्क होता है।
0: हाँ।
1: और उस टीम वर्क की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं वो हैं तुषार पाराशर, और जो
0: संयोजक हैं वो हैं शिव नंदन लाल,
1: और हमारा जो पता है वो है

0: जी हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश कमरा नंबर 610 नया प्रसारण भवन नई दिल्ली 110001 और ईमेल आईडी feedback@fnh.gmail.com।
1: और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपने विचार जरूर बताएं क्योंकि आपका अपना ये कार्यक्रम है, उसी पर चार चांद लगेंगे यदि
0: आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं
1: हमें बताएंगे।
0: और इसी के साथ हमारा आज का गृह लक्ष्मी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से सुनने वाले सभी बहनों को हमारा राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने को है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान

0: मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrae in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
2: Bharat aaj apne pure maritime ecosystem ko sasakta bana raha hai. इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "Yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit." President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Addressing the event, the president said, "Yoga is a celebration of India's great tradition." She said yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. The National Testing Agency, NTA, has issued guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA said entry to the examination centres will close at 1:30 in the afternoon. It has asked the students to carry their admit cards and valid photo ID. The admit cards for the exam can be downloaded from the website neet.nta.nic.in. Talking to media in New Delhi, Union Education Minister Dharmendra Pradhan assured that all necessary arrangements have been made for the smooth conduct of the exam. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF, will draw to a close today. The biennial festival of documentation.

0: Documentaries, short fiction, animation, and AI cinema began on 15th June and will conclude tonight with a grand closing ceremony. One of the key attractions on the final day of MIFF will be the screening of V. Shantaram, the Pioneering Spirit, marking the 125th birth anniversary year of the legendary filmmaker. U.S. Vice President J.D. Vance has arrived in Switzerland. Mr. Vance earlier said the United States will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation from Tehran is also on the ground and has warned that talks won't advance without first addressing Lebanon. Hours after Tehran said it closed the Strait of Hormuz because of Israel's attacks in Lebanon, and warned that little might be achieved if the fighting doesn't stop, U.S. President Donald Trump, in response, unleashed a new threat to impose American controls in the crucial waterway. In cricket, India A were 291 for 6 wickets in 42 overs against host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त दिन के 1:10 हुए और हुए हैं 18 सेकंड। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोता, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी फिल्म है 1985 में रिलीज हुई एक बेहद सफल और ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म है। विजय सदाना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। तो श्रोताओं, फटाफट से हमें मेल करिए और पहचानिए कि कौन सी फिल्म है ये। तब तक सुनते हैं उसी फिल्म का ये बेहद लोकप्रिय गीत।

श्वेता लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। और बहुत सारे लिसनर्स ने हमें संदेश भेजा है, जिनमें से हैं राजकुमार डूडी और अजीत भावसर, नवाब खान, देवशंकर तामुरिया, सुदर्शन मुखी, दिग्दर्शन गौर और उनके साथ ही जिन्होंने सही पहचाना। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं, ऐसी फिल्म जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो अपने बेहतरीन गीतों के लिए जानी जाती है। मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरी, डेनी डेंजोंगपा, असरानी और बिंदु मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये फिल्म 1973 की हिंदी फिल्म आ गले लग जा का रीमेक है। बॉक्स ऑफिस पर ये बहुत बड़ी हिट थी। 1985 में ही ये सब तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने

वाली फिल्म थी। इसके गीत भी काफी लोकप्रिय थे। श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म के बारे में बात करें और इनके कुछ तथ्यों के बारे में बात करें, तो ये जो फिल्म थी वो निर्माता केसी बोकाडिया ने पहले इस फिल्म को ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी को ऑफर किया, लेकिन जो ऋषि कपूर थे उनको इसकी कहानी फिल्म बॉबी जैसी ही लगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बाद में फिल्म की भारी सफलता को देखकर उन्हें छोड़ने का बहुत अफसोस हुआ था। और क्यों ना हो, ऐसी फिल्म कौन से कलाकार ना ही करना चाहेंगे। तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये अगला गीत लता मंगेशकर की मधुर आवाज में।

श्रोता, अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो प्रीति यानी पद्मिनी कोल्हापुरी एक समृद्ध लड़की है जो एक माध्यम वर्ग से फोटोग्राफर अजय यानी मिथुन चक्रवर्ती से प्यार कर बैठती है। उसके माता पिता शुरुआत में विवाह के लिए असहमत थे, लेकिन बेटी उन्हें शादी के लिए तैयार करने का प्रबंधन करती है। प्रीति के पिता भान यानी डैनी अजय को एक शीर्ष श्रेणी के फोटोग्राफर बनाते हैं और उनका वेतन बढ़ाते हैं। बाद में अजय ने जब पता लगाया कि भानु ने उसकी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया तो वो प्रीति और अजय अलग हो जाते हैं। प्रीति और अजय दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे। भानु उन्हें अपने कारण की गई गलतफहमी से तलाक दिलाता है। भानु ने अजय को विश्वास दिलाया कि प्रीति तलाक चाहती है और इसके विपरीत भी किया। जब प्रीति को अजय के बच्चे के साथ पाया गया है, भानु अजय को ये नहीं बताता है और इसके बजाय उससे शिमला में प्रीति को ले जाता है ताकि कोई भी ना जान पाए कि उसने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल वो पूरी कोशिश में थे कि शादी के बाद भी उन्हें किस तरीके से दोनों को अलग किया जाए।

0: श्रोताओं, जब अजय मिलता है भानु से अस्पताल में तो उसे पता चलता है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया और भानु उसे ये बच्चा देना चाहता था, लेकिन इस शर्त में कि प्रीति को ये पता ना चले कि ये बच्चा अभी भी जीवित है, इसलिए वे अनाथालय में ना देकर वो अजय को दे देता है। कहानी कुछ सालों तक आगे बढ़ती है और प्रीति नहीं मान रही है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिरता जारी होती है। वह अपने हाथों में गुड़िया रखती है, मानती है कि वह उसका अपना बेटा है। उसके माता पिता तेजी से चिंतित हो जाते हैं, हालांकि प्रीति कुछ सुधार दिखाती है जब वह एक तस्वीर देखती है जिसे उसने शिमला में खींचा था जब वह अजय के साथ थी। माता पिता उसे वापस शिमला ले जाते हैं। अजय शिमला में रहता है और अपने बच्चे को उसने खुद ही पाला है। एक मौके पर बच्चा प्रीति से मिलता है और दोनों के बीच एक लगाव हो जाता है। अजय की मदद से बाद में वह उसे अपनी माँ के रूप में पहचानता है। वह उसके पास लौट आया और उसे अजय के पास ले गया और उन्होंने अपनी गलतफहमी को दूर किया। दोनों भानु के कारण उनके दिमाग में गलतफहमी का पर्दाफाश करते हैं। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को सुलझाने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और उसके बाद अपने बच्चे के साथ वे खुशी खुशी रहते हैं। इसीलिए तो इस फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।
1: हजार

एक्शन इमेज वाले मिथुन को रोमांटिक रोल में देखने के कारण डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने से डर रहे थे। यही वजह थी कि ये बनकर तैयार होने के बावजूद भी ये फिल्म पूरे 2 साल तक रिलीज नहीं हो पाई। बाद में निर्माता बुकाडिया ने इसे खुद रिलीज करने का फैसला किया और उनका ये जो डिसीजन था वो भी बिल्कुल सही था। ये फिल्म सिर्फ 50 लाख के बजट में बनी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर हासिल हुई। इस फिल्म के गीत भी तुमसे मिल करना चाहने के और वो दिल भर जानिए बहुत बड़े हिट हुए थे। एचएस बिहारी ने इस फिल्म के गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल द्वारा रचित इसके गाने थे। फिलहाल श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बस इतना ही।

श्रोता, हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रकाश वर्मा की छत्तीसगढ़ पलारी से। इनके साथ है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। अगला संदेश है संदीप मक्कर का। आर कुमार भी हमें लिख कर भेज रहे हैं। इनके साथ है आदि अरोड़ा, पिंकी लवली, मिंटू थॉमस पंजाब से। और जो अगला संदेश है वो है फागू राम यादव की। इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संबलपुर कांकेर से। संदीप मक्कर हमें लिख कर भेज रहे हैं, साथ ही पी एस नावकर। और इनके साथ है निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान टाइडे और आशीष। भागवत वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं, सोमदत्त लिखकर भेज रहे हैं, नाभा जिला पटियाला पंजाब से। हीरा राममणि वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं और उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अगला जो संदेश है वो निसार अली का। स्वर्ण सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और राशदीप सिंह।

और इनके अन्य साथी साथी शमसुल कमर हमें लिखकर भेज रहे हैं, संजय ढींगे हमें लिखकर भेज रहे हैं, बिट्टू गजनीचा, सुदर्शन मुखी, धर्मेंद्र चीपा राजस्थान से, भूषण खेरा, और जो अगला संदेश है वो है अनिल मोहन का, संदीप मक्कर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और अन्य साथियों का भी संदेश आ रहा है लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी कमी है जिनका नाम हम नहीं शामिल कर पाए इस कार्यक्रम में, उनका नाम हम जरूर शामिल करेंगे, कल फिर हाजिर होंगे इस कार्यक्रम को लेकर ठीक 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

सफर है। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 1:40 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार, उसके बाद आप सुन सकेंगे उर्दू में।

0: ਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 370 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਨਈ ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਰੂਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ 29ਵੇਂ ਓਵਰ ਚ ਇਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 224 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦਾ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 3 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ UG ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हनी तंदरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज योग के 12वें बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरूनी मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज़्यादा मराकज़ और बैरून मुल्क 14 मराकज़ में नीट UG का दोबारा इम्तहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। ईरान की जानिब से अपनाए हुरमुज को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर JD वेंस और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर MB कालिबाफ़ अमन बातचीत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में दम्बुला में 3 मुल्कों की ए सीरीज़ के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार अंदाज से बढ़ती उम्र के लिए ज़िंदगी भर योग को अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से योग का बैनुल अक़वामी दिन मनाने में मुल्क की क़यादत की। मुश्तरका योग प्रोटोकॉल योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए जनाब मोदी ने इस तारीखी मुकाम पर हजारों लोगों के साथ योग आसन किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी कसरत नहीं और न ही ये किसी मखसूस उम्र तक महदूद है, बल्कि ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड पर योगासन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार और शहरी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का एक जश्न है। उन्होंने कहा कि योग ने लोगों को एक सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं

0: वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
1: बांग्लादेश में योग का असल प्रोग्राम ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में मुनक़िद हुआ, जहां सैकड़ों योग शायकीन कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत के लिए जमा हुए। इस तकरीब की क़यादत IGCC के योग असातिज़ा और तलबा ने की। आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश और एवरग्रीन योग समेत 8 सरकर्द

0: के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने आज मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। बहरिया के जंगी जहाज़ों के डिज़ाइन से मुतालिक ब्यूरो ने इनका डिज़ाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है। इन जंगी बहरी जहाज़ों का मकसद मुकाबला करने की सलाहियत, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निज़ाम को मुस्तहकम बनाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने कई पॉलिसी इस्लाहात की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अंदरून मुल्क तामीर करने की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर खुसूसी इकदामात किए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इन जंगी बहरी जहाज़ों को बहरिया में शामिल किया जाना भारत के मुस्तकबिल का एक इशारा है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में न सिर्फ दिफाई सामान की तैयारी में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, बल्कि दिफाई सामान की बरामदात भी तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को बहरिया में शामिल किया जाना भारत की बहरी सलाहियत के फरोग में एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में 5,000 से ज़्यादा मराकज़ और बैरून मुल्क 14 मराकज़ में NEET UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज़्यादा उम्मीदवार ये इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने NEET UG का दोबारा इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो बेखौफ होकर इम्तिहान दें। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। ईरान से भी एक वफद स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लेबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान में इसराइली हमलों की वजह से अबनाए हुरमुज़ को बंद कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम और मेघालय में कहीं कहीं तेज़ से लेकर बहुत तेज़ बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, साहिली कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में दाम्बुला में 3 मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर धुआंधार 94 रन स्कोर किए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज योग के 12वें बैन अलाक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज़्यादा मराकज़ और बैरून मुल्क 14 मराकज़ में NEET UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
5: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और

0: प्रदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
1: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ, हम भी आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है एक ही कलाकार। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म आंधी जो कि 1975 में आई थी और इस गाने को आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने, बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और संगीत आरडी बर्मन ने दिया है। और ये फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा रोल था हमारे आज के कलाकार रहमान साहब का। बहुत कुछ करेंगे, उनके बारे में बातें, उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कला।

सच में हमारे जो आज के कलाकार हैं रहमान साहब, वो जिस भी फिल्म में आते थे, भले ही उनका रोल विलेन का ही क्यों ना हो, लेकिन उस फिल्म में वे अपने किरदार में इतना नूर भर देते थे कि दर्शक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। जी हाँ, आपको याद ही होगा चिनॉय सेठ, ये किरदार कितना फेमस हुआ था और इस किरदार को निभाया था सैयद रहमान खान ने, जिनका जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में एक पठान परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से किया। इसके बाद 1942 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट के रूप में भी वे शामिल हुए थे, लेकिन उनकी दिली इच्छा थी फिल्मों में करियर बनाने की और इसके साथ ही उन्होंने एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब को छोड़ दिया और फिल्म कंपनी प्रभात, एक फिल्म कंपनी थी, उससे सहायक निर्देशक के रूप में जुड़ गए और अपनी पहली फिल्म चांद से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं रहमान साहब की ही एक फिल्म से।

1962 में रिलीज हुई फिल्म साहेब बीबी और गुलाम। इस फिल्म से आप आशा भोसले जी की आवाज़ में सुन रहे हैं ये प्यारा सा गीत। और इस फिल्म में हमारे आज के कलाकार रहमान साहब की एक बड़ी और प्रमुख भूमिका।

साहिब बीबी और गुलाम इस फिल्म में उन्होंने एक अय्याश और जमींदार छोटे बाबू की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें बेहद सराहना भी मिली थी।

और इसी बीच आपके संदेश ईमेल के माध्यम से लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और एक ये संदेश आया है दतरेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा का, और इन्होंने लिखा है कि आज आप सैयद रहमान खान साहब पर केंद्रित कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि हमें बेहद पसंद आ रहा है। आप जो उनके फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं और उनके बारे में रोचक जानकारी दे रहे हैं वो भी हमें अच्छे लग रहे हैं। यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

दोस्तों, अभिनेता रहमान ने अपने शानदार करियर में 150 से भी अधिक फिल्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। और अगर उनकी भूमिका के बारे में बात करें, एक बहुत ही अच्छी सी दिल को छू जाने वाली फिल्म आई थी गुरुदत्त साहब की प्यासा, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। इस कल्ट क्लासिक फिल्म में उन्होंने एक मतलबी और अमीर प्रकाशक घोष बाबू का यादगार किरदार निभाया था। इसी तरह से चौदहवीं का चांद, ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसमें गुरुदत्त और वहीदा रहमान के साथ इस फिल्म में रहमान साहब ने नवाब का किरदार निभाया था, जो बेहद ही पॉपुलर हुआ था। तो दोस्तों, इसी बीच आपके कुछ संदेश और हमारे पास आ गए हैं, आइए उनको शामिल कर लेते हैं। ये हमारे एक नियमित श्रोता हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है, आदरणीय अरुणेश द्विवेदी, सादर प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। और इन्होंने आगे लिखा है कि हमारी ओर से आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आप जानते ही हैं, करेंगे अगर रोज योग तो हमेशा रहेंगे निरोग। तो कीजिए योग और रहे निरोग। और इन्होंने ये लिखा है कि आज आपका ये जो कार्यक्रम है, एक ही कलाकार, ये हम सुन रहे हैं और ये हमें बेहद पसंद आ रहा है। और हमारी जो है शुभकामनाएं आपके इस कार्यक्रम के लिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और मैसेज ले लेते हैं, ये आया हुआ है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर का, जालंधर पंजाब से। और इसके अलावा एक और संदेश आया है मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता का, और बिकनेर से रानी और बिट्टू का। और इन्होंने लिखा है, अरुणेश जी सादर नमस्कार, शुभ दोपहर। आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम रहमान जी पर केंद्रित है, जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण है, गाने जानकारी और रोचक किस्से बेहद अच्छे लग रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऐसे ही आप हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे इस चैनल को सुनते रहिए और अपना फीडबैक हमें ipradiodelhi@gmail.com पर देते रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रहमान साहब की कुछ और फिल्मों के बारे में। एक यश चोपड़ा साहब की मल्टी स्टारर फिल्म आई थी वक्त, जो कि 1965 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में ही उन्होंने चिनॉय सेठ का आइकॉनिक और बेहद ही रसूखदार विलेन का किरदार निभाया था। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और इनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाएंगे। फिलहाल आपको एक और गाना सुनवाते हैं लता जी और प्रेमलता की आवाज़ में।

और इसी बीच एक और संदेश आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद, निगरत, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का। और इन्होंने लिखा है कि आपके कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए बधाइयाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।

आदरणीय होस्ट जी नमस्कार। एक ही कलाकार में आपकी शानदार प्रस्तुति और गीतों के चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। ये संदेश आया है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी वीना आशीष राजा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित खुराना और केशु खुराना का।

सच में हमारे आज के कलाकार रहमान साहब के किरदार में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। एक और अगर हम उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल ने फिर याद किया, और इस टाइटल ट्रैक में रहमान साहब का बेहतरीन और संजीदा अभिनय देखने को मिलता है। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म यानी दिल ने फिर याद किया, इसका टाइटल सॉन्ग सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी का संदेश आया है और इन्होंने लिखा है कि कलाकार में आज आप रहमान साहब के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो बेहद ही अच्छा लग रहा है और आप जो गीत सुना रहे हैं वो भी हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से ये संदेश आया है मोहम्मद इशफाक, खतीजा बेगम मोहम्मद इशफाक, अफरीन कौसर और अल्ताफ नीलोफर का। इन्होंने लिखा है कि आज के बारे में जो आप कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सुनकर बेहद मजा आ रहा है। आपकी प्रस्तुति का अंदाज बेहद ही शानदार और सटीक है। आपकी मधुर और मीठी आवाज दिल को छू जाती है। आप यूं ही खुश रहो और हंसते हंसाते रहो। अरे जी, आपने तो हमारी तारीफों के पुल बांध दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हंसी और हमारी खुशी तो आप जैसे श्रोताओं पर निर्भर करती है। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, सराहना करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने कार्यक्रमों के जरिए, गीत संगीत के जरिए अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते रहें।

दोस्तों, रहमान साहब हिंदी सिनेमा के एक बेहद ही गरिमामयी, रोबीले और शानदार अभिनेता थे। उन्होंने 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया। वे विशेष रूप से फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त साहब की टीम का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते थे। उनकी अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और रईसाना अंदाज के लिए मशहूर रहमान साहब पर कई सदाबहार गाने भी फिल्माए गए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक और गाना सुनवाते हैं प्यासा फिल्म से, जिसमें रहमान साहब ने एक अमीर प्रकाशक घोष बाबू का यादगार किरदार निभाया था। आप सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ।

0: जाए तो क्या है।
1: धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का मैसेज आया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हम आपके संदेश को शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है।

दोस्तों, एक और संदेश आया है। हमारे नियमित श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार का। इन्होंने लिखा है कि आपने रहमान साहब के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनवाए, जो कि हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, एक और फिल्म आई थी

चौदहवीं का चांद और इस फिल्म में भी रहमान साहब ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। तो आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में।

सच में हमारे आज के कलाकार रहमान साहब अपने किरदारों में लाजवाब अभिनय किया करते थे। एक और संदेश आया है करनाल मॉडल टाउन से। सुधीर, नूतन, किरण, संदीप, जगमोहन, प्रजापति,

दोस्तों, रहमान साहब ने बड़ी बहन एक फिल्म आई थी 1949 में, इसमें भी उन्होंने बहुत ही शानदार किरदार निभाया था और ये उनके शुरुआती करियर की बेहद सफल और संगीत से भरपूर फिल्म थी। इसके अलावा दिल ने फरियाद किया 1966 में ये फिल्म आई थी, इसमें धर्मेंद्र और नूतन के साथ इस फिल्म में रहमान साहब का भी बहुत ही अच्छा सा रोल था। और आंधी 1975 में आई वो फिल्म थी जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन थे। इस सियासी ड्रामा फिल्म में भी रहमान साहब ने बेहतरीन कार्य किया था। तो दोस्तों, अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें आपको जो है अलविदा कहना होगा, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाज में।

दोस्तों, समय के साथ चलना होता है, इसलिए हमें आप अनुमति दीजिए, फिर किसी न किसी कार्यक्रम में इसी चैनल में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

0: कचोरी की राधे राधे। श्रुति बहना,
1: हाँ हाँ,
0: याद है आपको आज को दिवस?
1: आज तो 21 जून है।
0: हाँ, और आज योग दिवस मनाया जा रहा है। और योग शरीर के काजे कितेक लाभप्रद है, जे तो सभी जाने ही हैं।
1: हाँ बहन वंदना, तभी तो यह दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाएवे की मंजूरी फटाफट से मिल गई। मात्र 90 दिना में पूर्ण बहुमत के संग।
0: हाँ बहना, कह में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे कम समय में यह प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और हम तो यही कहेंगे कि भारत की यह बहुमूल्य देन को लाभ सबन को भरपूर मिल जाए।
1: हाँ वंदना, आजकल सभी योग के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भए हैं। और या के अलावा वंदना, या ते वैश्विक समरसता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
0: जे बात आपने बिल्कुल सही कही है श्रुति बहना, क्योंकि योग को उद्देश्य बस शरीर ते ही ना जुड़ो, वरन मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हु जुड़ो है। और जब मन ते जुड़े रहेंगे, आध्यात्म ते जुड़े रहेंगे, तो सबन को संभाव ते ही तो देखेंगे, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के।
1: बिल्कुल वंदना, देखो योग को अनुशासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुबह सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आसन और आहार के नियम, इनके नियमित अभ्यास से शरीर के संग मन हु तनाव मुक्त है जावे है और स्वस्थ मन बने हैं। और जब मन स्वस्थ होएगा तभी तो हम भलाई कर पाएंगे औरन की।
0: बिल्कुल श्रुति बहना, हमारे ब्रज में कहमे है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसे उठेंगे विचार, और जैसे होंगे विचार वैसा ही बनेगा व्यवहार। और आचार विचार को शुद्धिकरण योग ते ही संभव है। तभी तो योग भारतीय दर्शन के षड दर्शन परंपरा को महत्वपूर्ण अंग है श्रुति बहना।
1: बिल्कुल, और ऐसा हूँ कछु तो ब्रजभाषा में हूँ कहो गया है कि पहलो सुख निरोगी काया, क्योंकि काया निरोगी होएगी तभी तो सुख को स्वाद चखेंगे। और ऐसा हूँ कह में है कि काया राखे धर्म, और अगर काया कष्ट में होएगी तो सिगरे धर्म करम, यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे।
0: और जाइते योग के 8 नियम को अभ्यास अष्टांग योग में आवश्यक है श्रुति बहना। बहना, योग पतंजलि तक ही सीमित ना है, वरन या को वर्णन अलग अलग रूपन में अन्य ग्रंथन में हूँ मिले है। उपनिषद में योग को नाड़ी शोधन, प्राण नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति को साधन बतायो गयो है, तो वेदांत में ब्रह्म के संग आत्मा के विलय के रूप में बतायो है।
1: और वंदना, भगवत गीता में योग को कर्म, भक्ति, निष्काम कर्म, इन सिद्धांतन ते हु जोड़ो गयो है। चित्त, मन और बुद्धि की शुद्धता के माध्यम ते जीवात्मा ब्रह्म में लीन है सके है। संत, ऋषि और गृहस्थ के काजे निष्काम कर्म योग और भक्ति योग दोनों ही सहज साधना हैं।
0: हाँ बहना, और श्री कृष्ण अवतार को मुख्य उद्देश्य मानव जाति को कल्याण करना ही तो हतो। अपने इंद्रियों को वश में करके कैसे जीवन को सहज और सरल बनायो जा सके, जे बिन की लीलान में झलक्यो हो और ब्रज की धरती पे जन्म लेके बिन्ने प्रेम को मार्ग प्रशस्त करियो, ब्रजवासियों को आनंदित करियो, आह्लादित करियो।

0: रहे थे। और वंदना, यह भजन को सुन के ना एक अजीब सी थिरकन है रही है, जैसे कि मन स्वयं ब्रज की गलियन में विहार कर रहे होए। ब्रज वो भूमि है जहाँ यमुना की लहरन में आजहू राधा माधव की प्रेम कथाएं बहे हैं, जहाँ की मिट्टी को माथे ते लगाए हुए मात्र ते तीर्थ है जावे हैं।
1: बिल्कुल श्रुति बहना, और ब्रज की आत्मा है श्री राधा रानी, जिनके बिना ब्रज की कल्पना हु अधूरी है। कण कण में उनको वास है, हर कुंज में, हर घाट में, हर वट वृक्ष की लता पतान में, और हर ब्रजवासी के हृदय में। और याई लिए आज हम आपको उन दिव्य स्थलन को मानस विहार करवाए भी जा रहे हैं, जो राधा रमन की लीलांते सदा सदा के ताई अनश्वर है गए हैं।
0: वंदना बहन, सबसे पहले बात करें हैं रावल की। छोटो सो शांत सो गांव, जो मथुरा के पास ही बसो भयो है, और याए श्री राधा रानी को वास्तविक जन्म स्थान मानो जाए है। और वाके बाद अगर हम वृषभानुपुर की बात करें, वहाँ पे राधा रानी ने अनेक बाल लीलाएं करी हैं।
1: हाँ।
0: या को बरसाना धाम यही थे तो अमर है गयो।
1: और बहना, या वृषभानुपुर में कई मंदिर आमे हैं जहाँ राधा रानी

0: ने अनेक लीलाएं करी। प्रेम मनोहार की स्मृति आज हूँ इन मंदिरन की दीवारन में बसी भई है। यहाँ की लठमार होली तो विश्व विख्यात है ही बहना, वो परंपरा जो राधा कृष्ण की प्रेम केली की याद दिलावे है।
1: बिल्कुल वंदना बहन, और इन्हीं परंपरान को जीवंत रखते भय और भक्त संप्रदाय ने कृष्ण राधा लीला स्थलीन को संरक्षण कियो और बिनको पुनरुद्धार कियो। मंदिर जो इन लीलान के साक्षी हैं और बड़े प्राचीन हैं, प्रसिद्ध हैं, तो आज हम श्रोतान को बिन के बारे में बताएवे के काजे एक वार्ता लेके आए हैं। ब्रज भूमि में राधा जी ते जुड़े स्थल और मंदिर, वार्ताकार हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल।
2: श्रोता मित्रों, ब्रजभूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र ना है बल्कि प्रेम भक्ति और माधुर्य की जीवंत धरती है। यही भूमि पे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं संपन्न भई। ब्रज को कड़कड़ प्रत्येक वृक्ष, कुंड, सरोवर, वन और गिरिराज आज हूँ राधा श्याम के प्रेम को गुणगान करतो प्रतीत हुए है। जब ब्रज की धरती पे प्रभात को उजास फैले है, मंदिरन की घंटी की ध्वनि सुनाई देवे है, वृक्षन पे बैठे पक्षीन को कलरव सुनाई दे है और भक्तन के मुखसों राधे राधे की पुकार वातावरण को भक्ति रसों भर दे है, तो ऐसो लगे है मानो संपूर्ण ब्रज भूमि आज हूँ राधा श्याम के प्रेम में सराबूर है। सबसे पहले हम चलेंगे रावल गांव की ओर। रावल गांव श्री राधा रानी की प्राचीन जन्म स्थली मानी जाए है। यहीं ब्रशवान बाबा और मैया कीर्तिदा के आंगन में प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा प्रकट भई। आज हूँ रावल में स्थित राधा रानी मंदिर भक्तन की अगाध श्रद्धा को केंद्र है। यहाँ पहुँच के ऐसो प्रतीत हुए है मानो आज हूँ कीर्तिदा मैया को आंगन राधा रानी की बाल लीलान की स्मृति सो महक रहो हुए। लाली के जन्म दिन पे आज हूँ पूरे ब्रज में बधाई गाई जाए हैं कि बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। रावल के बाद ब्रजवान बाबा को परिवार बरसाने आए के बस गयो। आज बरसानो पूरे विश्व में राधा रानी की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। चार पर्वतन सो घिरो बरसानो प्रेम और भक्ति की राजधानी कहो जाए है। दूर सो ही ब्रह्माचल पर्वत पे विराजमान श्री जी मंदिर के शिखर और लहराती ध्वजा भक्तन को अपनी ओर आकर्षित कर ले हैं। बरसाने में स्थित श्री जी मंदिर राधा रानी को मुख्य मंदिर है। मंदिर की सीढ़ीन पे चढ़ते प्रत्येक भक्त के मुख पे केवल एक ही नाम रहे है, राधे राधे। मंदिर में विराजमान लाडली जी के दर्शन करते ही मन प्रेम रस में डूब जाए है और हृदय सो स्वतः ही स्वर फूट पड़े हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली जी मंदिर के बाद बरसाने की सांकरी खोर को बहुत महत्व है। ब्रज की लोक मान्यता है कि यहीं प्रेम भरी नोक झोंक और हास परहास की अनेक लीलाएं संपन्न हुई थी। बरसाने में स्थित मानगढ़ू अपनो विशेष महत्व रखे है। ऐसो कहो जाए है कि जब राधा रानी मान करके रूठ जामे ही तो श्री कृष्ण उन्हें मनावे के काजे यहीं आयो करे है। मानगढ़ प्रेम में मान और मनोहार की मधुरता को प्रतीक है। प्रेम में रूठनो और फिर प्रेम पूर्वक मनानो ब्रज की माधुर्य की अद्भुत पहचान है। या के निकट ही मोरकुटी है, चारों ओर वृक्षन की हरियाली, बरसात के दिनन में मोरन की मधुर पुकार वातावरण को रमणीय बना दे है। ब्रज की मान्यता है कि यहीं कृष्ण ने मोर बन के नृत्य करो हो और राधा रानी को प्रसन्न करो हो। आज हूँ जब मोर अपने पंख फैलाए के नृत्य करें तो ऐसो प्रतीत हुए है मानो वही पुरानी लीला पुनः सजीव है उठी हुई और मुखसो निकल जाए है कि काना मोए ब्रज को बनाइयो मोर, नाचू ताता थई थई। बरसाने की महिमा को वर्णन करते करते मन नाए भरे। यही बरसाने में स्थित गैवर वन हूँ राधा रानी को अत्यंत प्रिय स्थान मानो जाए है। गैवर वन में प्रवेश करते ही ऐसो अनुभव होए है मानो संसार को सारा कोलाहल पीछे छूट गयो हुए। घने कदम के तमाल के और पीपल के वृक्षन की शीतल छैया, मंद मंद बहती सुगंधित व्यार, पत्तीन की सरसराहट और पक्षीन को मधुर कलरव वातावरण को अलौकिक बनाए दे है। यहाँ पहुँच के मन अपने आप भजन में

0: पुरातन में या स्थल के प्रति विशेष श्रद्धा पाई जाए है। जनश्रुति के अनुसार अनेक साधु संतन ने यही एकांत में बैठ के हरि नाम संकीर्तन भजन ध्यान और साधना करी हती। प्रातः काल की बेला में यहाँ ऐसी शांति व्याप्त हुए है कि मन स्वतः ही संसार के कोलाहल से दूर हटके भगवान के स्मरण में लीन है जाए है। ब्रज के बड़े बूढ़े इनको ऐसो कहवो है कि ये भूमि श्री राधा रानी की कृपा से अभिषिक्त है। राधा बावरी केवल जल को स्रोत ना है बल्कि श्रद्धा साधना और आत्मिक शांति को प्रतीक है। ऐसो लगे है मानो ब्रज की पावन धरा कह रही हो कि राधा नाम रसधार है राधा कृपा अपार जाके हृदय बस राधिका ताको होए उद्धार। ऐसे वातावरण में भक्तन को मन विनय सो भर उठे है और भक्ति भाव उमड़ पड़े है तो मन कह उठे है कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण बाकी ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण। श्रोता मित्रों ब्रजभूमि में ऐसे पावन स्थल हमें केवल इतिहास ही ना बतावे बल्कि प्रेम भक्ति सेवा समर्पण और सरलता को ही संदेश दे हैं। श्री राधा रानी केवल एक पूजनीय देवी ही ना है अपितु प्रेम की पराकाष्ठा करुणा की मूर्ति और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। आओ हम सब मिलके राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे ब्रजेश्वरी हम सबन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो हमारे मन में प्रेम करुणा सद्भाव और भक्ति को दीपक सदा प्रज्वलित रखो हमें ब्रज भाषा ब्रज संस्कृति और राधा नाम की सेवा करवे की शक्ति प्रदान करो और मैं तो यही कहूँ हूँ कि मोहे तो भरो सो है तेरो ही किशोरी राधे।
1: तो प्यारे भैया बहनाओं अभी आप वार्ता सुन रहे हैं ब्रज भूमि में राधा जी से जुड़े स्थल और मंदिर या की वार्ताकार ही डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल। तो वंदना देखो ब्रज को जो हृदय है ना वो वृंदावन मान्यो जाए है प्रेम की नगरी है वृंदावन और यहाँ जो प्रेम की नगरी वृंदावन है वहाँ पे हम अपने श्रोतान को ले चले हैं मानस विहार कराईवे के ताई। तो यहाँ अच्छा। राधा रमण मंदिर राधा दामोदर मंदिर राधा गोविंद जी को हु मंदिर है ये सब मंदिर भक्तन के ताई साक्षात स्वर्ग हैं। पर वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जो मोए सबसे ज्यादा रोमांचित करे है और वो है इमली तला।
2: अच्छा
1: ये वो प्राचीन इमली का वृक्ष है जाकी छा में स्वयं श्री कृष्ण बैठ के राधा रानी की प्रतीक्षा कियो करते और यह वृक्ष की आयु हजारों वर्ष तेउ ज्यादा की बताई गई
2: अच्छा।
1: है। आज भी भक्त वा अनुभूति को महसूस करे हैं जो शब्दन में बताई ना जा सके है।
2: और श्रुति बहना आपने निधवन की बात करी है ना तो जे वो रहस्यमय वन है जहाँ रात ढलते ही सभी द्वार बंद है जाएं क्योंकि मान्यता ऐसी है कि आज हु रात्रि को राधा माधव यहाँ रासलीला रचे हैं। राधा रानी को आज हु हर रात्रि श्रृंगार थाली सजाई जाए पान मिठाई वस्त्र संपूर्ण 16 श्रृंगार और सुबह जब कपाट खुले हैं ना तो थाली अस्त व्यस्त मिले ये कोई किंवदंती ना है। यहाँ के पुजारी और स्थानीय जन आज हु याए आखिन देखो माने हैं।
1: तो श्रोताओं राधा रानी प्राकट्य मंदिर रावल जहाँ किशोरी जी ने प्राकट्य लियो मान मंदिर बरसाना जहाँ प्रेम ने रूठनो मनानो सीखो इमली तला वृंदावन जहाँ एक वृक्ष प्रतीक्षा को प्रतीक बन गयो राधा कुंड गोवर्धन निधि वन सेवा कुंज ये सब देख के लगे है कि ब्रज कोई भूगोल नाए है ये एक भाव है एक आत्मा है।
2: हाँ श्रुति बहना ये वो धरती है जहाँ प्रेम अपने सबते शुद्ध सबते निस्वार्थ और सबते अलौकिक रूप में प्रकट भयो। श्री जी जो साक्षात अहलादिनी शक्ति हैं वो आज हु यहाँ विचरे हैं। श्रोताओ अगर कबो ब्रज जाओ तो एक भक्त बन के जइयो यमुना की रेत में बैठ आंखें मूंद के बस मन ते एक बार पुकारियो राधे विश्वास मानियो वो जरूर सुनेंगी
1: क्योंकि ब्रज में जो आवे है वो कभो खाली नाए लौटे है
2: तभी तो वहाँ की गलियाँ प्यारी लागे हैं।

0: समूह स्वरण में अभय आप जे भक्ति गीत सुन रहे हैं और यह गीत के संगे आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
1: मोय यानी वंदना जौहरी को
0: और मोय श्रुतिपुरी को देव अनुमति नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे

0: पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और दोस्तों, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराट मोहन शर्मा और मेरे साथ हैं
1: आपकी दोस्त प्रिशा अग्रवाल।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसका नाम है
2: रेडियो प्रेस।
1: पता है विराट, भारत की भूमि ऋषि मुनि देवों की है।
0: हाँ प्रिशा, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध है। सभी सुखी रहे की भावना को लेकर ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को सुखमय और स्वास्थ्य बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें प्रमुख प्रयास है योग। और तुम्हें पता है, योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। इस पहल के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को प्रकाश में लेना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया था। अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है।
1: विराट, आपने मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या आप और जानकारी देना चाहते हो योग के बारे में?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताओ।
1: योग का मतलब है जोड़ना, मतलब किसी अच्छे काम से अपने आप को जोड़ना। अपनी हेल्थ के लिए अपने शरीर और मन से किया गया काम होता है योग।
0: हाँ, इसलिए तो कहते हैं सुबह सुबह जो कसरत करता, सुबह सुबह जो कसरत करता, जीवन में वो आगे बढ़ता। विटामिन डी की कमी पूरी होती, जिस तन सूर्य की किरणें लगती। तुम्हें मालूम है प्रशा कि आजकल मनुष्य अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने हेतु योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: हाँ विराट, मैं अपने पापा के साथ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती हूँ योग करने। मैंने देखा है पार्क, बगीचों, घर की छत पर लोग योग करते हैं। लोग योग संस्थाओं, टीवी, मोबाइल से सीख रहे हैं।
0: हाँ प्रशा, तुमने बिल्कुल सही बोला। विद्यालयों में बच्चों को योग शिक्षा दी जा रही है एवं योग कराया जा रहा है। योग स्वास्थ्य की कुंजी तो है ही, और यह भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। इसलिए तो कहते हैं मिलती ऊर्जा और सफूर्ति, मिलती ऊर्जा और सफूर्ति, दिन भर रहता शरीर एक्टिव। योग हमें सुंदर मार्ग दिखाता, रोगों से मिलता छुटकारा। दोस्तों, हमने योग दिवस पर तो बहुत जानकारी दे दी। चलो दोस्तों, आज हम एक मजेदार क्विज खेलते हैं जो योग पर आधारित है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने योग ज्ञान की परीक्षा देने के लिए?
2: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो चलिए पहला प्रश्न पूछते हैं, सबसे पुराना योग कौन सा है?
3: मैं बताऊं?
1: मुझे पता है।
0: हाँ हाँ।

0: अच्छा बताओ।
1: प्राणायाम।
0: बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, भगवान शिव को किस आसन में बैठना प्रिय है?
1: मुझे पता है विराट।
0: हाँ हाँ बताओ।
1: शिव जी आलती पालती कर बैठते हैं।
0: अरे आलती पालती मार कर तो बैठते ही हैं, लेकिन उस आसन का नाम क्या है?
1: अरे हाँ याद आया, पद्मासन।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने स्तुति। तीसरा प्रश्न, योग के कितने मुख्य आसन होते हैं?
1: मुझे पता है विराट।
0: हाँ हाँ बताओ।
1: योग के प्रमुख 84 आसन होते हैं।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अच्छा स्तुति, मैंने तो अब इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, क्या तुम कुछ प्रश्न या फिर पहेलियाँ लाई हो योग के ऊपर?
1: हाँ हाँ लाई हूँ।
0: तो जल्दी से पूछो।
1: हम इतनी देर से योग की बात कर रहे हैं कि योग क्या है?
0: हाँ हाँ स्तुति, मेरे को पता है, हमारे शरीर मन और आत्मा को स्वस्थ बनाने में योग हमारी बहुत मदद करता है।
1: अगला सवाल, योग करने से क्या हासिल होता है?
2: मुझे पता है।
0: आर्ची, मैं देख रहा हूँ तुमने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है?
2: हाँ मुझे पता है विराट।
0: तो बताओ।
2: योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरती है, तनाव कम होता है और ध्यान बढ़ता है।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने आर्ची।
1: अगला सवाल, योग दिवस कब मनाया जाता है?
3: मुझे पता है। मुझे पता
0: है। हाँ हाँ शोमचंद बताओ।
3: 21 जून।
0: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया शोमचंद। तो दोस्तों अब मैं आप सब से एक एक आसन का नाम पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं बताने के लिए?
4: हाँ तैयार हैं।
0: तो प्रिशा बताओ किसी एक आसन का नाम।
5: सूर्य नमस्कार।
0: स्तुति तुम?
6: ताड़ासन।
0: और प्रिशा कश्यप तुम?
7: प्राणायाम।
0: और आर्षी तुम किसी एक आसन का नाम बताओ।
8: त्रिकोण आसन।
0: और इतिका तुम?
9: पद्मासन।
0: अरे वाह, सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
1: अगला सवाल, योग करने से क्या लाभ है?
0: मैं बताऊं क्या स्तुति?
1: हाँ हाँ बताओ विराट।
0: योग करने से हमारा शरीर मजबूत और लचीला बनता है, तनाव कम होता है और हमें शांति भी मिलती है, हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद मिलती है, शरीर अपना रोग मुक्त करें, कपाल भाती आप रोज करें, सभी आसन योग के असरदायक, अनुलोम विलोम अति लाभदायक।
5: इसे दोस्तों कहते हैं योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें, वरदान मिला जो हमको हम उस का उपयोग करे, तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है, सदा सुखी वह रहता है जो इसको करता है।

0: हमारे स्टूडियो में एक साथी आए, चलिए पूछते हैं उनका नाम।
1: मेरा नाम इतिका है।
0: अब क्या सुनाने वाला है?
1: आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ,
2: तो चलिए सुनते हैं।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
0: यह तो बहुत आनंद आया सुनने में,
1: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, मैं आज कुछ मजेदार पहेलियां लाया हूँ, क्या तुम चाहते हो कि वो पहेलियां मैं तुमसे पूछूं?
3: हाँ, हम चाहते हैं।
2: तो पहली पहेली, बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती हूँ, बताओ बताओ।
1: मैं बताऊँ? हाँ, इसका उत्तर पुस्तक है।
2: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। दूसरी पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिरी कटे तो सब खाएं, भारत के 3 तरफ दिखाएं। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका उत्तर पता है।
2: तो बताओ।
4: सागर।
2: अरे वाह, तुमने भी एकदम सही उत्तर दिया। अगली पहेली, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार।
4: विराट, क्या मैं बताऊं?
2: हाँ आरशी, बताओ।
5: इसका उत्तर 4 पाई है।
2: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आरशी। अगली पहेली, नकल उतारे सुनकर वाणी, चुप चुप सुने सभी की कहानी, नील गगन है इसको भाए, चलना क्या उड़ना भी आए। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका भी उत्तर पता है।
2: बताओ फिर।
4: तोता।
2: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगली पहेली, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, प्रिशा क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ
2: हाँ हाँ बताओ।

0: सांप।
1: अरे सांप कैसे हो सकता है इसका उत्तर? सांप नहीं होगा इसका उत्तर। सोम, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
2: सपना।
1: अरे वाह सोम, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो दोस्तों अब चलते चलते मैं आप सबसे आखिरी पहेली पूछता हूँ, देखते हैं अब इसका उत्तर कौन देता है। वह क्या है जिसका नाम ले तो टूट जाती है?
2: क्या मैं बताऊँ?
1: हाँ हाँ बताओ।
2: खामोशी।
1: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया।

नमस्कार, मेरा नाम मन्ना शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं पर्यावरण विषय पे एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करने वाली हूँ। कुछ पंक्तियों में बंधा हुआ है जीवन का यह वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण। काट कर वृक्षों को देखो, बना दिया सब रेगिस्तान, करके प्रकृति का शोषण, धरती कर दी है सुनसान। सृष्टि अंत को रोकने का कोई नहीं है निवारण, क्षण क्षण देखो नष्ट हो रहे प्रकृति और पर्यावरण। जब धूप से बदन तपा तो याद आए छायेदार।

0: जब धुएं से दम घुटा तो याद आए हरे वृक्ष, जब भूख से पेट सूखा तो याद आए फलदार वृक्ष। जब ये सब याद आया है तो हे मानव तू क्यों पछताया है, तूने ही तो अपने हाथों से ये सब विनाश फैलाया है। अब भी समय है, जाग जाओ, पेड़ न काटो पेड़ उगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद।
1: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ जरूर सुनाओ।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं?
2: मेरे को तो नहीं पता प्रिशा, तुम ही बता दो।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स इसलिए होते हैं ताकि मच्छर उनके अलग अलग खून के फ्लेवर एंजॉय कर पाए।
2: प्रिशा मैं तो तुम्हारे चुटकुले सुन के लोटपोट हो गया।
3: अब मैं क्या एक चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ इतिका सुनाओ।
3: टीचर, संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा।
2: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
4: हाँ आशी सुनाओ।
3: टीचर, गोलू से, पांच में से पांच घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास पांच भटूरे हैं और पांच भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू, छोले।
2: अरे वाह आरशी, तुमने तो बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। तुमने तो आरशी जैसे छोले भटूरे की बात करी, मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया।
5: मेरा नाम अरहम है, आज मैं अपने पापा के लिए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। पापा मेरे सबसे प्यारे, लगते मुझको सबसे न्यारे, जब मैं गिरता हाथ बढ़ाते, हिम्मत देकर मुझे उठाते, खुद मेहनत दिन रात है करते, मेरे सारे सपने हैं भरते, कंधों पर जब मुझे बिठाते, दुनिया की सैर भी कराते, मेरी खुशियों का है खजाना, पापा जैसा नहीं ठिकाना, रब से बस यही दुआ है, खुश रहे पापा सदा सदा। फादर्स डे पर कहता हूँ, दिल से आपसे प्यार मैं करता हूँ, लव यू पापा।
6: जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है और आज मैं अपने जीवन के सबसे खास इंसान अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कहते हैं कि माँ ममता की छांव होती है, तो पापा उस मजबूत पेड़ की तरह होते हैं जो हर धूप और हर तूफान से हमें बचाते हैं। आज सुबह जब मैंने पापा को फादर्स डे विश किया तो उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा दिन बन गया। फिर हमने साथ बैठकर बातें की, पुरानी यादों को ताजा किया और कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा क्योंकि सबसे कीमती चीज जो मैंने पापा को दी वो था अपना समय। मैं अपने पापा के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। मेरी हर खुशी में आपका ही नाम है, मेरे हर सपने में आप ही मुकाम है, मैं जो आज मुस्कुरा कर दुनिया से मिलती हूँ उस मुस्कान के पीछे मेरे पापा का प्यार तमाम है। खुद धूप में रहकर छांव हमें दे जाते हैं, अपनी खुशियां भूल कर हमें हंसा जाते हैं, पिता का प्यार शब्दों में कहां बयां होता है, वो तो खामोशी से पूरी दुनिया लुटा जाते हैं। पापा आपने मुझे चलना सिखाया, सही और गलत में फर्क समझाया, गिरने पर संभलना सिखाया और सपने देखने भी सिखाए। जब भी मैं घबराती हूँ आपकी एक बात मुझे हिम्मत दे देती है, कोशिश करो बेटा तुम जरूर करोगी। आज फादर्स डे के इस खास मौके पर मैं दिल से बस इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू पापा मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, मेरा हर सपने को अपना सपना बनाने के लिए और हर हाल में मेरा साथ देने के लिए। आप मेरे पहले शिक्षक हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। अंत में बस दो पंक्तियाँ, नसीब वालों को मिलता है आपके जैसा सहारा, मेरे पापा हैं मेरी दुनिया, मेरा चांद मेरा सितारा। हैप्पी फादर्स डे पापा। और दोस्तों अगर आपके पापा आपके पास हैं तो आज उन्हें गले लगाइए और दिल से कहिए, पापा आप मेरी दुनिया हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
7: और हम मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक गाना साथ में गा लें।
5: हाँ ठीक है,
7: स्टार्ट करते हैं।

0: अरे विराट, बातें करते करते हमें तो पता ही नहीं चला हमारे जाने का समय हो गया।
1: हाँ प्रशा, अब वक्त हो चुका है हमारे जाने का और किसी और के आने का। दोस्तों, मैं और प्रशा लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए
2: बाय बाय।

0: श्रोता मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोक संगीत किसी विशेष क्षेत्र, संस्कृति या समुदाय के आम जनजीवन से जुड़ा पारंपरिक संगीत होता है और ये प्रायः लिखित रूप से लगभग सहेज कर नहीं रखा जाता है, बल्कि सुनकर और गाकर याद रखा जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। लोक संगीत में देश के विभिन्न क्षेत्रों के त्योहारों, ऋतुओं, जन्म विवाह, धार्मिक आयोजन और दैनिक जीवन के सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है। इसमें पारंपरिक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ढोल, नगाड़ा, मंजीरा, सारंगी, एकतारा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा का प्रसिद्ध लोक संगीत रागिनी और इसे प्रस्तुत करेंगे सत्येंद्र कुमार और साथी। गायन में आपका सहयोग करेंगे जसबीर सिंह, ब्रजेश कुमार, अमित यादव और आपके बोलों को संगीत से सजाएंगे हारमोनियम पर बीर सिंह, ढोलक पर लेखराज, नगाड़े पर बबलू, बेंजो पर लोकेश और ऑक्यूपाइड पर देवेंद्र जी। तो आइए आनंद लेते हैं लोक संगीत रागिनी का। शुरुआत करते हैं भक्ति रचना से, ब्रह्मरूप भगवान चरण से। ये बोल हैं गायक सत्येंद्र कुमार।
1: आइए गंगा जी के विषय पर एक रागिनी में आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। कवि की कल्पना है और ऐसे बताते हैं कि नरसी सेठ की घरवाली नरसी जी को बता रही हैं और कहती हैं कि पियाजी चलिए गंगा जी नहा करके आते हैं। तो नरसी सेठ कहते हैं कि मुझे तो गंगा के महत्व के बारे में नहीं पता। नरसी सेठ की घरवाली गंगा के विषय में क्या कह रही है और कवि की कलम क्या लिख रही है, आइए इस रागिनी के माध्यम से गंगा माँ के विषय पर।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम स्वरांजलि।
1: नमस्कार, स्वरांजलि कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।

और अब आइए सुनते हैं 57 सावित्री के किस्से की रागिनी कंगले से तू व्याह रचावे। गायक हैं सत्येंद्र कुमार।

आइए ये रागिनी सत्यवान सावित्री के किस्से की, जिस समय सावित्री वनों में जाकर के सत्यवान से कुछ अपने मन की बात कहती है और सत्यवान उस बात को स्वीकार न करते हुए जवाब में क्या कहता है, आइए।

यह रागनी उस समय की है जब रानी केकई राजा दशरथ से अपने पुराने दो वरदान मांगने के लिए पहुंच जाती है। तो राजा दशरथ केकई से किस तरह से

0: अति सुंदर प्रस्तुति और स्वरांजलि कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं चला सुदामा डूब पुराने ख्याल में, ये रागिनी सत्येंद्र कुमार से।
1: आइए प्रेमी श्रोताओं, ये रागिनी सुदामा और कृष्ण के किस्से से, कि जिस समय सुदामा जी अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में अपने मन में किस किस तरह की बातों को सोचते जा रहे हैं कि मेरे बचपन का मित्र है, इतने दिन बाद मिलूंगा, कहीं पहचानेगा या ना पहचानेगा, तो अपने मन में विचार लगाते हुए जा रहे हैं। आइए कवि ने इस रागिनी के माध्यम से क्या लिखा।

0: और अब स्वरांजलि कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, गायक ब्रजेश कुमार, बोल हैं अपरंपार तेरी माया।
1: आइए हरियाणा के सूर्य कवि शिरोमणि कवि दादा लक्ष्मी चंद की कलम से लिखा हुआ यह भजन आपके बीच में, कि उस परमात्मा की माया का आज तक किसी को पता नहीं चला, वो पल में क्या से क्या कर दे, सुनेंगे भजन के माध्यम से।

आइए ये रागनी आपके बीच में महाभारत के इतिहास से उस वक्त की बात के जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो कृष्ण भगवान अर्जुन को स्वर्ग लोक में ले जाते हैं, अभिमन्यु की आत्मा को सामने खड़ा कर देते हैं। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु को किस तरह से पुकारता है और अभिमन्यु क्या जवाब देता है सुनेंगे रागनी।

0: और यह है इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: आइए सज्जनों, ये रागनी गोपीचंद के किस्से से है। उस समय की बात, जब गोपीचंद साधु के वेश में अपनी बहन चंद्रावल के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो बहन चंद्रावल किस तरह से कहने लग जाती है, आइए।

0: और यह है आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: आइए ये रागनी पिंगला भरत्री के किस्से की और राजा भरत्री और विक्रम के सवाल जवाब इस रागनी के माध्यम से अपनी सच्चाई पेश करना चाहता है वो विक्रम, लेकिन भरत्री उसकी एक नहीं मानते हैं। भरी सभा के बीच वो अपनी बात रख रहा है और क्या भरत्री कह रहे हैं, दोनों के सवाल जवाब।

0: तो आज स्वरांजलि कार्यक्रम में सत्येंद्र कुमार और साथी प्रस्तुत कर रहे थे लोक संगीत रागिनी। गायन में सहयोग कर रहे थे जयवीर सिंह, ब्रिजेश कुमार और अमित यादव। और आपके गीतों को संगीत से सजाया हारमोनियम पर बीर सिंह, ढोलक पर लेखराज, नगाड़े पर बबलू, बैंजो पर लोकेश और ऑक्टोपैड पर देवेंद्र। प्रस्तुति सहयोग दिया दिनेश कुमार मीना और विशाल ने। कार्यक्रम का संयोजन किया शिव नंदन लाल ने और इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया तुषार पाराशर ने। तो अब स्वरांजलि कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। अब अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों

0: साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। हेमंत भाई, देखिए लोकगीतों का महत्व तो हमारे देश में काफी है। लोकगीत न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि हमारे समाज का जीवन दर्पण होते हैं। और लोग यहाँ तक कि देखिए लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मूल संस्कृति मान्यताओं और परंपराओं को सहेज कर रखते हैं।
1: बिल्कुल, और त्योहारों, शादियों, बच्चों के जन्म के समय या खेतों में काम करते हुए हमारे यहाँ हर अवसर के लिए अलग लोकगीत होते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए बात मेलों की हो, त्योहारों की हो, सामाजिक आयोजनों में भी इनका जो लोकगीतों का प्रचलन है। और साथ ही देखिए भाई, ये जो इतिहास की जो कुछ ऐसी घटनाएं जो स्थानीय वीर योद्धाओं की गाथाएं, उन पर आधारित लोकगीत भी बनाए जाते
1: और
0: हैं।
1: भारत के अलग अलग राज्यों में लोकगीतों के अनगिनत रूप हैं, चाहे राजस्थान का घूमर हो, पंजाब का भांगड़ा या यूपी बिहार के सोहर या बिरहा, सबकी अपनी अलग मिठास है।
0: बिल्कुल, और देखिए भाई लोकगीत आम जनता द्वारा लिखे जाते हैं, यानी आम आदमी द्वारा लिखे जाते हैं, और जैसे कि गांव की महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, इसलिए इनमें समाज के जो वास्तविक अनुभव हैं मंत भाई, और संघर्ष और खुशियां झलकती हैं।
1: बिल्कुल, और इन्हें गाने के लिए ढोलक, मंजीरा या हारमोनियम जैसे साधारण वाद्य यंत्र होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है जो किसी भी महफिल में जान डाल देते
0: और
1: हैं।
0: ऐसे ही लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम है हमारा लोकरंजनी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रियंका चौधरी के गाइस लोकगीत से।

0: उंगलियां आपस में बतलाओ हेमंत भाई, ये तो प्रियंका चौधरी से लोकगीत सुना। और देखिए ये लोकगीतों की ही ताकत है कि जो उंगलियों को भी आपस में बात करा रही है।
1: बिल्कुल
0: और यहाँ तक कि देखिए लोकगीत एक जो विशेष व्यक्ति के न होकर ये पूरे समाज के होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो त्योहारों, खेती बाड़ी जैसे रोपाई से कटाई के
1: हाँ
0: समय गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं हेमंत भाई, लोगों को आपस में जोड़ते हैं। और भारी थकान वे जो एक तरह से काम के बीच में भी मनोरंजन व उत्साह का संचार करते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: और आज के समय में भी लोकगीत लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और ये नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और पुराने रीति रिवाजों के बारे में भी बताते हैं। लोकगीत हमारी पहचान को बनाए रखने में मदद करते हैं, और ये तो बात लोकगीतों की, आप सुन लेते हैं वीणा ढिल्लोर और सखियों की आवाज में एक और लोकगीत।

तो अभी सुनील भाई हमारे साथियों ने सुना ये वीणा ढिल्लोर और सखियों की आवाज में लटोल जी सुलझा रे। अब कार्यक्रम के अंत में सुन लेते हैं होशियारी देवी की आवाज में ये एक और लोकगीत।

0: हेमंत भाई, ये तो होशियारी देवी से सुना लोकगीत और होशियारी देवी की गाई इस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी के आज के संक में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल, और मेरे साथ हैं
3: मैं हूं रेणु गुप्ता, और स्वागत करती हूं आपका खेलों से भरी इस शाम में। और अतुल, जल्दी से बता दीजिए आज क्या क्या हम लेकर आए अपने श्रोताओं के लिए।
2: रेणु, दिन रविवार और बहुत कुछ है। आज बात होगी फीफा की, फुटबॉल का जो महाकुंभ चल रहा है, उसके अलावा आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विमेंस टी20 क्रिकेट मैच में मैच खेला जाने वाला है, उस पर बात होगी। हॉकी से एक अच्छी खबर है, जहां पे FIH टूर्नामेंट नेशन कप जो जीता है भारतीय महिला टीम ने। इसके अलावा बॉक्सिंग से अच्छी खबर है, फेंसिंग में बहुत कुछ हो रहा है, और फिडे चैंपियनशिप भी है। तो साथ साथ बहुत सारी इवेंट्स की बात करेंगे। लेकिन
3: अतुल, आज आप भूल रहे हैं कि आज 21 जून है, और आज की जो सबसे बड़ी और खास खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज देश और दुनिया में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष का आयोजन योग से स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ सहित देश के विभिन्न राज्यों में लाखों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भी योग कार्यक्रम में शामिल होकर नियमित योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया, और लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। तो अतुल, इस मौके पर खेल और युवा मंत्री

0: मनसुख मांडविया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: जी,
2: योग हमारा संस्कार है, योग हमारा स्वभाव भी है। जब दुनिया शांति की शोध में थी तब भारत ने भगवान बुद्ध दिया। जब दुनिया अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए प्रयास कर रही थी तब हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया को योग दिया। योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े, योग को दिनचर्या का एक भाग बनाए, हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
0: तो अतुल, ये थे मानसुख मांडविया, और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद से योग का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, और अब ये केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि अब ये वैश्विक खेल मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि अहमदाबाद के ईके एरिना में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 5 दिन तक चली इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और मेजबान भारत ने प्रतियोगिता में 122 सदस्यीय दल उतारा था। कुल 114 पदक जीतकर प्रतियोगिता का समापन किया, जिसमें रिकॉर्ड 102 स्वर्ण पदक शामिल रहे।
1: जी हाँ, ये तो अचीवमेंट की बात करी आपने, योग, और योग बिल्कुल एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाता हुआ। और बात करें रेणु और भी खेलों की, तो फीफा इस समय चल रहा है महाकुंभ, आइए जान लेते हैं उस पे क्या ताजा जानकारी है।

फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जहां मैच दर मैच बढ़ता जा रहा है, वहीं विश्व कप के ग्रुप चरण में शनिवार को खेले गए मुकाबलों में नीदरलैंड्स, जर्मनी और जापान ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जबकि इक्वाडोर को कुरासाओ के खिलाफ अप्रत्याशित झटका लगा। सबसे पहले ग्रुप एफ के मुकाबले की बात करते हैं। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। मैच के शुरुआती मिनटों से ही डच टीम हावी रही। ब्रायन ब्रॉबरी ने 2 दागे जबकि कोडी गाकपो ने भी 2 गेंद को जाल में पहुंचाया। अंतिम क्षणों में क्रिसेंसियो समरविल ने 5वां गोल किया। स्वीडन के लिए केवल एंथनी एलंगा ही गोल कर सके। इस शानदार जीत के साथ नीदरलैंड्स ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ग्रुप ई की ओर रुख करें तो वहां जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। आइवरी कोस्ट ने फ्रैंक केसी के गोल से बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में जर्मनी ने शानदार वापसी की। डेनिस उड़ाव ने 68वें मिनट में बराबरी का गोल किया और फिर इंजरी टाइम में विजयी गोल भी दाग दिया। इस जीत के साथ जर्मनी ने नॉकआउट दौर में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर ली है और ग्रुप ई में शीर्ष पर बना हुआ है। दिन के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर को कुरासाओ के खिलाफ 0-0 की निराशाजनक बराबरी से संतोष करना पड़ा। कुरासाओ के गोलकीपर एलॉय रूम मैच के सबसे बड़े नायक रहे। उन्होंने रिकॉर्ड 15 बचाव किए और इक्वाडोर के कई सुनहरे मौके नाकाम कर दिए। विश्व कप इतिहास में यह कुरासाओ का पहला अंक है और टीम के लिए यह परिणाम किसी जीत से कम नहीं माना जा रहा है। दूसरी ओर इक्वाडोर के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। ग्रुप एफ के एक अन्य मुकाबले में जापान ने ट्यूनिशिया को 1-0 मुकाबले में 4-0 से हरा दिया। जापान की ओर से दाइची कामादा ने 4th मिनट में गोल दागकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद आया से उएदा ने 2 किए जबकि जुन्या इतो ने भी 1 दागा। जापान ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और ट्यूनिशिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ ही जापान 4 के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बात करें जो आज मुकाबले खेले जाएंगे उनकी, तो ग्रुप एच में स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। स्पेन ने पहले मैच में केप वर्ड के खिलाफ ड्रॉ खेला था जबकि सऊदी अरब ने उरुग्वे को बराबरी पर रोका था। ऐसे में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी। स्पेन के पास तकनीकी बढ़त है लेकिन सऊदी अरब ने अनुशासित खेल से पहले ही सबको प्रभावित किया है। ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान आमने सामने होंगे।

0: दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मैच ड्रॉ खेले थे और जीत उन्हें नॉकआउट की दिशा में बड़ा फायदा दे सकती है। बेल्जियम अनुभव के दम पर मजबूत दिखता है, लेकिन ईरान की संगठित रक्षा पंक्ति चुनौती पेश कर सकती है। ग्रुप एच के एक दूसरे मुकाबले में उरुग्वे का सामना केप वर्डे से होगा। उरुग्वे को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन केप वर्डे ने स्पेन को रोककर अपनी क्षमता दिखा दी है। और ग्रुप जी की बात करें तो न्यूजीलैंड और मिस्र के बीच भी एक मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉकआउट की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी होगी। मिस्र के अनुभव और न्यूजीलैंड की जुझारू शैली के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिल सकती है। तो फीफा 2026 की खबरों के लिए बने रहिए खेल खिलाड़ी कार्यक्रम पर, जहां पर लेकर आते हैं हम रोजाना अपडेट। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
1: अतुल, ये तो आपने बात की फीफा फीवर की, लेकिन क्रिकेट का फीवर तो इंडिया में कभी उतर ही नहीं सकता। और कल इंडिया अफगानिस्तान का भी मैच हुआ है, उधर विमेंस T20 और न जाने क्या क्या क्रिकेट में चल रहा है, तो जरा क्रिकेट की भी थोड़ी जानकारी हमें दीजिए यहाँ पर।
0: हाँ, आज एक अहम मुकाबला होना है भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच में, और भी खबरें हैं तो आइए जान लेते हैं इस पर। और क्रिकेट की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले की, जहां ग्रुप ए में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। जी हां, विमेंस T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल की दौड़ को देखते हुए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर शानदार फॉर्म में है, जबकि गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम की उम्मीदें कप्तान लॉरा वोलवार्ड और अनुभवी ऑलराउंडर मारिजान कैप पर टिकी होंगी। दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती बनाए रखने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। भारतीय टीम संतुलन और हालिया प्रदर्शन के आधार पर थोड़ी मजबूत नजर आती है, लेकिन दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। वहीं बात करें टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों के नतीजों पर, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 98 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 219 रन बनाए। बेथ मूनी ने 74 और एशले गार्डनर ने 58 रन की शानदार पारियां खेली। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम महज 121 रन पर सिमट गई। बाबेट डी लीडे ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सकी। एक अन्य मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को मजबूत किया। बांग्लादेश की गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया और बल्लेबाजों ने दबाव के क्षणों में बेहतर खेल दिखाया। पाकिस्तान की टीम मैच में अहम मौकों को भुनाने में असफल रही। वहीं ग्रुप बी में मेजबान इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 38 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सोफिया डंकली ने 57 रन की शानदार पारी खेली, जबकि फ्रेया कैंप और डेनी गिब्सन ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन जुटाए। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 162 रन तक ही पहुंच सकी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं इंडिया और अफगानिस्तान के पुरुष टीम की बात करें, जहां पे कल तीसरा और अंतिम मैच खेला गया, वहां भारतीय टीम ने चेपॉक में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 44.2 ओवर में 218 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल के शतक और रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत आसानी से मैच जीता। भारत ने 28.4 ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। यशस्वी जायसवाल ने 86 गेंद पर नाबाद 110 रन बनाए। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 44.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 218 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की ओर से कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने शतक लगाया, ये उनका पहला वनडे शतक है। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट चटकाए। इसके जवाब में भारत ने अच्छी शुरुआत की। रोहित शर्मा 69 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुए। नबी ने उन्हें पेवेलियन भेजा। यशस्वी जायसवाल ने 86 गेंद में नाबाद 110 रन बनाए। उन्होंने 29वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। शेष अय्यर ने भी 19 गेंदों पर 20 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए नबी ने 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच, और कप्तान शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज रहे।

0: नए सीरीज में 238 रन बनाए। जी हाँ, ये तो बात हुई कल खेले गए मैच की, और आज भी कुछ ताज़ा जानकारी है हमारे पास। अगर बात करें विमेंस T20 वर्ल्ड कप की रेणु, तो वहाँ पे एक अहम मुकाबला खेला जा रहा है श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच में। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 98 रन बनाए थे, जिसके जवाब में 9.2 ओवर के खेल तक वेस्टइंडीज ने 55 रन बनाए हैं 3 विकेट खोकर, यानी कि 44 गेंदों में 64 रन बनाने हैं। और बात करें अगर एक और अन्य अहम मुकाबले की, जहाँ पे श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच में ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला जा रहा है। इंडिया ए ने जहां 377 रन बनाए 50 ओवर में 9 विकेट कर खोकर, और मुख्य आकर्षण रहा वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी, जिन्होंने 29 गेंदों पर 94 रन बनाए। और ताजा स्कोर मिलने तक जानकारी तक श्रीलंका ए ने 41.3 ओवर में 284 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि भारत की झोली में जाता हुआ दिख रहा है फाइनल मैच। और इसके अलावा एक अहम खबर और है कि भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है वनडे टीम की, जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर रहेगी। अगर इंग्लैंड दौरे की बात करें तो शुभमन गिल कप्तान होंगे, और जबकि केएल राहुल विकेटकीपर के रूप में होंगे, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन होंगे टीम के। टीम 3 मैच खेलेगी 14 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई को। और अगर आयरलैंड दौरे की बात करें, जहां पे T20 मैच खेले जाएंगे, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम वहां पर मैच खेलेगी।
1: जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी थी अतुल। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ एनुअल अवार्ड्स भी अभी घोषित किए हैं और ये वितरित हुए हैं, तो इनके बारे में भी कुछ जानकारी है हमारे पास। तो हमारे जो साथी हैं शाहिद आजमी जी, वो मौके पर पहुंचे और काफी ताजा जानकारी वहां से लेकर आए हैं। कई हस्तियों से, विशेष हस्तियों से बात भी उन्होंने की है, तो आइए जानते हैं।
2: ट्रैक से लेकर थ्रो तक, स्प्रिंट से लेकर स्टैमिना तक, भारतीय एथलेटिक्स ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाने और खेल के नायकों को सम्मान देने के लिए नई दिल्ली में पहली बार इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड का आयोजन किया गया। आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को।
3: जब किसी को सम्मान मिलता है और सम्मान उसका हौसला बढ़ाता है, उसको प्रेरणा देता है, दो लोगों के लिए इंस्पायर मिलती है, जिसको सम्मानित करा गया उसको और अच्छा परफॉर्मेंस करने की प्रेरणा मिलती है, उसको देखने वाले, जैसा यहाँ जब एक हमारी एथलीट का सम्मान करा गया तो बोल रही थी कि मुझे, मैं ऐसी एथलीट कैसे बनूं, मेरा नाम कैसे आए, मैं ये सोचती थी, ऐसा सोचना उसको तब ऐसा सोच बनी जब उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए देखा। यहाँ जिस एथलीट का सम्मान करा गया है, इस एथलीट को देख के कई जूनियर एथलीट को प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी नेशनल चैंपियनशिप आपकी चल रही थी, उसमें 3-4 खिलाड़ियों ने हमारा ही नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करा। हर बार ये जज्बे के साथ हमारे एथलीट खेल के मैदान में उतरे, हमें पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, ओलंपिक रिकॉर्ड के बराबर हमें हमारे एथलीट को पहुंचाना है और एथलीट को ये जज्बा रखना है। यहां हमारे शाहनवाज को आप मुझे इंडिविजुअल बता रहे थे कि मुझे 8.5 मिनट्स का रिकॉर्ड करना है, पर जब सार्वजनिक उसको कहा तो खिंचकाए। शाहनवाज खिंचकना नहीं है, समय है भाई, ये नया भारत का मेरा एथलीट है और लक्ष्य तय करेगा और उसको अचीव करने की कोशिश करेगा, संसाधन की कोई कमी नहीं होगी।
2: जिस खिलाड़ी का माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जिक्र किया, आइए उसे भी सुन लेते हैं।
4: बेस्ट एमर्जिंग मेल एथलीट अवार्ड 2025 गोज टू शाहनवाज खान।
5: मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ अंडर 18 अंडर 20 का। फर्स्ट टाइम मुझे अवार्ड मिला तो इधर आके एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अरेंजमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर का अवार्ड भी मिला मुझे और मुझे काफी मोटिवेशन भी मिला। सारे नीरज भैया जो सारे एथलीट को देखा कैसे क्या करना है, एथलीटिक के बारे में भी सुना समझा।
2: को बता दें वर्ष 2025 के बेस्ट पुरुष एथलीट का पुरस्कार ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दिया गया। नीरज ने समारोह के बाद आकाशवाणी के सवालों का जवाब देते हुए कहा,
6: बहुत अच्छा लगा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा मौका दिया सभी को और पुराने एथलीट्स को मिलके, नए टैलेंट से मिलके बहुत अच्छा लग रहा था, तो काफी मजा आया। नहीं, मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है।
7: सामने कॉमनवेल्थ गेम है, उसके लिए क्या टारगेट था?
6: बस उसके लिए यही है कि अभी फर्स्ट कंपटीशन खेल लिया, हमको पता लग गया कि हम किस कितनी फिटनेस पे और कहाँ पे हैं, और अभी बहुत सारा काम करना है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने का और ऑलमोस्ट 40 डेज है काम करने के लिए, तो अभी और हार्ड वर्क करेंगे और इसमें जो भी कमियां उनको पूरा करेंगे।
2: इसी तरह सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी को दिया गया।
4: बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड।

0: 2025 goes to Parul Chaudhary.
1: बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेके, पहली बार ये अवार्ड फंक्शन हुआ है. मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ. जैसे कि मतलब इस बार मैंने अपना 5000 मीटर में ऐसा रिकॉर्ड किया है तो अच्छा था.
2: उभरती प्रतिभाओं की श्रेणी में शाहनवाज खान को सर्वश्रेष्ठ उभरते पुरुष एथलीट जबकि पूजा को सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला एथलीट चुना गया.
3: The best emerging female athlete award 25 goes to Miss Pooja.
1: मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ तो ये अवार्ड मुझे मिला. फाई ने मुझे चूज किया है. मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ उन्होंने मुझे कुछ देखा कि हाँ मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ. मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स थी कि हाँ ठीक है आज मुझे, बट मैं इस चीज से संतुष्ट नहीं होना चाहती कि हाँ मुझे अवार्ड मिला है, मैंने इंडिया रिकॉर्ड किया. मैं अपनी परफॉर्मेंस से कभी भी संतुष्ट नहीं होती हूँ. मुझे आगे अभी एशियन गेम्स में मेडल चाहिए. अभी और भी अपना इंडिया रिकॉर्ड जो किया है मैं उसको और अच्छा इम्प्रूव करना चाहती हूँ. ट्रेनिंग सब कुछ सबसे मेन होता है कि हम कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कितना डिसिप्लिन में है, कितना डेडिकेशन है, सब चीज मेन होती है गेम में.
2: समारोह में भारतीय एथलेटिक्स की महान हस्तियों पीटी उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बहादुर सिंह चौहान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया. ये हैं अंजू बॉबी जॉर्ज.
4: आई रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स बट दिस स्पेशल अवार्ड इट विल क्लोज टू माय हार्ट, इट विल स्टे क्लोज टू माय हार्ट. आई डेडिकेट दिस अवार्ड्स टू माय फैमिली हु गाइडेड मी टू एथलेटिक्स, माय कोच एंड माय हस्बैंड रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज हु डेयर टू ड्रीम बिग व्हेन आई वाज डाउन एंड टू माय एंटायर एथलेटिक फैमिली हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट माय लाइफ.
2: अब सुनते हैं बहादुर सिंह चौहान को.
5: वैसे तो मैं एक चीज कहूंगा कि हर हिंदुस्तानी और हर आदमी अपने देश के लिए ऐसे ही बहुत काम करता है जितना उसकी कैपेसिटी होती है. कोई भी आदमी कमी नहीं छोड़ता. पर फिर भी अवार्ड मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज है. इसके लिए आई थैंक यू फेडरेशन ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स फेडरेशन ऑफ इंडिया.
2: ये है उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा.
6: वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम एथलेटिक फेडरेशन दैट दे आर गिविंग अवार्ड टू द प्लेयर्स. थैंक यू एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी फ्रॉम माय एथलेटिक फेडरेशन. दे आर डूइंग अ बिग थिंग्स एक्चुअली. सो थैंक यू एएफआई फॉर सेलेक्टिंग मी एज एन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड अदर अवार्ड्स फॉर द प्लेयर्स. थैंक यू सो मच.
2: समारोह में देश और विदेश की कई खेल हस्तियां मौजूद रही. इस दौरान सर्वश्रेष्ठ कोच, सर्वश्रेष्ठ राज्य एथलेटिक्स संघ, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने वाले विभिन्न संगठनों को भी सम्मानित किया गया. भारत के दिग्गज स्टीपलचेज एथलीट अविनाश साबले ने इस समारोह की सराहना करते हुए कहा,
7: एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड का ये किया है, बहुत अच्छा ये है, जिससे हमारे जो यंग एथलीट्स है उनके लिए मतलब एक प्रेरणा है और उनको वो मोटिवेट होंगे कि हमें भी मतलब अच्छा करना है.
2: यह देश की मशहूर धाविका हिमा दास.
8: बहुत अच्छा लगा. दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है और ऐसा मंच में रहने का लाइक एक एथलीट होने का नाते बहुत अच्छा लगा और फेडरेशन ने ऐसे किया है तो फेडरेशन को भी थैंक यू.
2: आज के अंक में बस इतना ही. कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी.
9: तो अतुल ये तो थे एथलेटिक्स अवार्ड और अब बात करते हैं हम FIH हॉकी की क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बड़ी मुकाबले चल रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी विमेंस नेशन कप की जो कि कल हुआ है. तो FIH महिला नेशंस कप हॉकी में भारत ने इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है. ऑकलैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा कर दूसरी बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता. इस जीत के साथ भारत ने अगले सत्र की FIH प्रो लीग में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है. नॉर्थ हार्बर हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. चौथे मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर नवनीत कौर ने सटीक स्ट्राइक के साथ गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद 15वें मिनट में भारत के 5वें पेनल्टी कॉर्नर पर दीपिका के प्रयास को सुनेलिता टोपो ने शानदार डिफ्लेक्शन देकर गोल में बदल दिया और भारत की बढ़त 2-0 कर दी. इसके बाद न्यूजीलैंड ने वापसी की भरपूर कोशिश की लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति और गोलकीपिंग ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया. भारतीय टीम ने अनुशासित और मजबूत रक्षात्मक प्रदर्शन करते हुए 2-0 की बढ़त अंत तक बरकरार रखी और खिताब जीत लिया. मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए लालरे सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं भारत की दीपिका 6 गोल के साथ टूर्नामेंट की संयुक्त शीर्ष स्कोरर रही. उन्होंने अमेरिका की एशले सेसा के साथ यह सम्मान साझा किया. भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा. टीम ने लीग चरण में अमेरिका, जापान और उरुग्वे को हराया. सेमीफाइनल में चिली को 6-0 से पराजित किया और फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। ये भारत का दूसरा महिला नेशंस कप है। और अतुल, अब मैं बात करना चाहूंगी आज जो इंडिया और नीदरलैंड्स का प्रो लीग होने वाला है उसके बारे में। तो आज रॉटरडैम में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना सीधे मेजबान और दुनिया की नंबर 2 टीम नीदरलैंड से होने जा रहा है।

0: डच चरण का यह आखिरी मुकाबला भारत के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पिछली हार का बदला लेने और इस चरण का समापन एक शानदार जीत के साथ करने का सुनहरा मौका है। अगर पिछले मैचों की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम का सफर अब तक मिला जुला रहा। अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड के खिलाफ 2-3 से एक बेहद करीबी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद हमारे जाबाजों ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से धूल चटाकर शानदार वापसी की। हालांकि जर्मनी के खिलाफ दूसरे मुकाबले में टीम को 1-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। घरेलू मैदान होने के कारण नीदरलैंड की टीम मजबूत स्थिति में जरूर है, लेकिन भारतीय टीम के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। तो आज सबकी नजरें मुख्य रूप से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने और अपनी डिफेंस लाइन यानी रक्षा पंक्ति को अभेद्य बनाने पर होंगी। तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह की ड्रैग फ्लिक, उप कप्तान हार्दिक सिंह की रफ्तार, अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह का अनुभव और हमारी युवा फॉरवर्ड लाइन की फुर्ती पर आज पूरे देश की नजरें टिकी होंगी। अतुल
1: जी हाँ, देश की नजरें टिकी हुई है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप पे भी, जो दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। और तीसरे दिन की रिपोर्ट के लिए आइए आपको ले चलते हैं ताजा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी विदुषी के पास।
2: नमस्कार, मैं विदुषी वत्स जुड़ रही हूँ आपसे भारत मंडपम, जहाँ 26वीं एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुष एपी और महिला सेबर के व्यक्तिगत मुकाबले खेले गए। पुरुष एपी वर्ग में जापान के यामादा मासारू ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला सेबर में जापान की सानो यूई ने गोल्ड अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ियों ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया। पुरुष एपी में जोसेफ बेनेट 22वें स्थान पर रहे, जबकि महिला सेबर में ओलंपियन सी ए भवानी देवी ने 23वां स्थान हासिल किया। वहीं बात अगर पुरुष सेबर स्पर्धा की करें तो उसमें विशाल थापर ने 22वां स्थान हासिल कर भारत का प्रतिनिधित्व किया। कई भारतीय फेंसर्स टॉप 32 तक पहुंचे, जिससे यह साफ दिखा कि भारतीय खिलाड़ी अब एशिया के शीर्ष फेंसर्स को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। आज प्रतियोगिता के तीसरे दिन पुरुष फॉयल और महिला एपी के मुकाबले खेले गए। भारतीय खिलाड़ियों ने पूल राउंड में चुनौती पेश की, जबकि पुरुष फॉयल वर्ग में सचिन राउंड ऑफ 32 तक पहुंचने में सफल रहे। हालांकि इसके बाद उनका अभियान समाप्त हो गया। अब सभी की नजरें आगामी टीम स्पर्धाओं पर टिकी हैं। इन्हीं तैयारियों और भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर हमारी बात हुई भारतीय फेंसर विशाल थापर से, जिन्होंने पुरुष स्पर्धा में 22वां स्थान हासिल किया और कल टीम मुकाबलों की तैयारियों में जुटे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: मैं कल राउंड ऑफ 32 में हार गया था उज़्बेकिस्तान से 13-15 से, बहुत क्लोज मैच था। और बाकी मेरे तीन टीममेट्स हैं वो भी राउंड ऑफ 32 में हारे। इट वाज वेरी क्लोज फाइट, बट वी होप टुमारो हमारा टीम इवेंट है एंड फर्स्ट बाउट इज विद ऑस्ट्रेलिया। आई होप वी विल गिव अवर बेस्ट। मेंस फॉइल का तो लॉन्ग बहुत यंग टीम आई है, बहुत यंगस्टर्स हैं, लाइक 20-21 ईयर्स 18 ईयर्स के ऐसे बच्चे हैं। उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, यंगस्टर्स इतना फाइट कर रहे हैं, इतने क्लोज मैचेस हार रहे हैं और अच्छी अच्छी कंट्री से हार रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप या ग्रैंड प्रिक्स में मेडलिस्ट हैं। उनको बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं और अच्छा फ्यूचर ब्राइट है उनका। और एक्चुअली इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, हिस्ट्री में पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है इतना बड़ा इवेंट, वो भी एशिया का। और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मेहता सर, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएट लिया और इतना अच्छे से कंडक्ट किया है। और ये आगे फ्यूचर ऐसा है कि बाकी कंट्रीज भी देख सकती है कि इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया कैन होस्ट एनीथिंग एंड इंडिया कैन विन मेडल्स इन बिग टूर्नामेंट्स।
2: तो ये थे भारतीय फेंसर विशाल थापर। अब रुख करते हैं भारतीय टीम के राष्ट्रीय फेंसिंग कोच विजय कुमार की ओर। प्रतियोगिता के स्तर और भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर उनसे भी हमने विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं।
4: कि फेंसिंग जो है इंडिया में ये पहली बार इतना बड़ा कंपटीशन हो रहा है जो कि सीनियर फेंसिंग एशियन चैम्पियनशिप है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजिंग है। और दूसरा, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप का, क्योंकि एशिया का ही सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इससे बड़ा फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कि अगले महीने हांगकॉन्ग में है, तो ये उसके लिए भी एक इंडिया टीम के लिए प्रिपरेशन है। और अपकमिंग जो एशियन गेम्स है जापान में, तो सारी तैयारी ये उसी के लिए चल रही है। और ऑल ओवर इंडिया से लोग देखने आए, पेरेंट्स, बच्चे, फेंसर्स, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखने आए। तो आने वाला मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडिया में फेंसिंग के लिए, क्योंकि फेंसिंग में 36 मेडल्स हैं ओलंपिक्स में।
2: एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप के आयोजन और प्रतियोगिता के स्तर को लेकर हमारी बातचीत जापानी टीम के कोच से भी हुई, जिनकी टीम इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
5: So शो।

0: now for us.
1: इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन की लाइन कहने के लिए हमारी बातचीत अंतर्राष्ट्रीय फेंसर मारिया अक्षता से भी हुई. मारिया अक्षता भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और एथलीट्स फेडरेशन में भारतीय फेंसिंग समुदाय की आवाज के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं. इस रिपोर्ट का समापन हम मारिया अक्षता की एक प्रेरणादायक संदेश के साथ करेंगे.
2: You know, they are in India, playing for India. I want them to show India's power.

0: किया। चैंपियनशिप के दूसरे दिन समीर गुलिया ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां दी। इसके अलावा रोहित कन्यान ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण अपने नाम किया। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस जूनियर स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुष टीम स्पर्धा में भारतीय दल ने कांस्य पदक हासिल किया। इन उपलब्धियों के साथ भारत ने एक ही दिन में 5 पदक जीतकर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। और अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार अंजलि महेंद्र भागवत शूटिंग 25 मीटर पिस्टल में छठी पोजीशन पर रही हैं।
1: जी हाँ, आपने पदकों की बात करी तो 4 गोल्ड के साथ टोटल 11 पदक भारतीय टीम जीत चुकी है और 5वें गोल्ड की उम्मीद है, जहां पे 10 मीटर एयर राइफल मैन जूनियर टीम इवेंट के फाइनल में फिलहाल भारत की टीम शीर्ष पर बनी हुई है। तो ये तो हुई रेनू बात
0: निशानेबाजी
1: और निशानेबाजी की। और जल्दी से अगर बॉक्सिंग की बात कर लें, चीन से अच्छी खबर आ रही है, जहां पे भारतीय मुक्केबाजों ने पदक जीते भी हैं और पदक सुनिश्चित भी किए हैं। 48 किलोग्राम भार वर्ग में ज्योति ने स्वर्ण पदक जीता है, जहां उन्होंने उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को हराया। उसके अलावा 51 किलोग्राम भार वर्ग में प्राची मीनाक्षी का मुकाबला आज शाम होने वाला है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्राची को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं दीपक ने भी 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला खेलते हुए हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा भारत को 2 कांस्य पदक भी मिले, तो कुल मिलाकर अच्छी खबर। और जल्दी
0: और अतुल, जब आप अच्छी खबरों की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि भारतीय कराटे खिलाड़ी अलीशा चौधरी ने इंडोनेशिया के बाली में चल रही एशियन सीनियर कराटे चैंपियनशिप में महिला कुमिते 55 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में अलीशा ने जापान की रीना कोडो को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
1: जी हां, इसके अलावा एवीसी नेशन कप वॉलीबॉल की बात करें तो अहमदाबाद में जो टूर्नामेंट चल रहा है वहां पर भारत ने न्यूजीलैंड को पहले मैच में 3-0 से सीधे 3 सेट में हराकर जीत हासिल की और अगला मैच खेलने के लिए टीम उतरेगी। और इसके अलावा अगर जल्दी से चेस की भी बात कर लें कुछ।
0: जी हाँ, तो बिल्कुल फिडे में जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी फाइनल जो है वो चल रहा है एंड गेम और ड्रैगन चिलिंग के बीच में, तो इसके बारे में अगर मैं और थोड़ी जानकारी अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं दे सकती हूँ।
1: आज शायद वक्त कम है। और स्क्वैश में चलते चलते बता देते हैं कि अभय सिंह और वेलविन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने पाकिस्तान की जोड़ी को हराकर एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वहीं पेरिस में पेरू के डिएगो एलियास ने मेंस और मिस्र की हमीमा एल हमामी ने विमेंस पीएसए स्क्वैश टूर फाइनल 2025-26 का खिताब जीत लिया है। तो इसी के साथ आज समय नहीं है, यहीं लेते हैं विदा।
0: जी नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
4: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।

0: इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Talks between the US and Iran aimed at strengthening the fragile interim agreement and advancing efforts to end the West Asia conflict began in Switzerland's Bergenstock today. US Vice President J.D. Vance is leading the US delegation, while Iranian delegation is led by Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Qatar and Pakistan are mediating the talks. The meeting comes after Tehran closed the Strait of Hormuz again over Israel's continued attacks on Lebanon. However, the US military said that the waterway remains open to all vessels. Tehran and Washington are set to participate in quadrilateral talks later in the day with representatives of Qatar and Pakistan. Ahead of the four-party talks, the US delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, held a meeting with the Pakistani mediating team. Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem.
0: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of 3 indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses

0: इस आयोजन में शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को

0: अधिक उड़ान मिलेगी। बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। युवा मन की एक ही कसौटी है जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: 19 जून शुक्रवार को दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा,
2: 1,29,00,000 फिंगरप्रिंट का जो रिकॉर्ड है, लगभग 9,19,000 नार्को ऑफेंडर का रिकॉर्ड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का 3,65,000 का रिकॉर्ड है और प्रिजन का डेटाबेस, ये सब मिलाकर आज हम एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए हैं। और अब जरूरत है कि हमारी पूरी सिस्टम को ये ताकत से परिचित कराना और ये डेटा जो पड़ा है उसको ताकत में परिवर्तित करना। ये आने वाले 5 साल तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का दायित्व है कि हमें डेटा को एक्सनेबल तरीके से उपयोग हो जाए इस तरह का बनाए, हर डेटा एक दूसरे से बात करे ऐसा बनाए, डेटा के एनालिसिस की पद्धतियां खड़ी करें और ढेर सारे युवा को जोड़कर इसमें से क्राइम कंट्रोल के अलग अलग मॉड्यूल को तैयार करें। और आज की जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सिर्फ टेक्निक पर चर्चा न हो, इसके व्यवहारों

0: उपयोग पर हो, डेटा संग्रह करने की शुद्धतम पद्धति को बनाने पर हो, क्राइम सीन पर से डेटा लेने की शुद्धतम पद्धति बनाना और संग्रहित डेटा को सुरक्षित करना और पुलिस थाने से नफीस के अंदर डेटा सर्च में कम से कम टाइम लगे, इस प्रकार की टेक्निक को डेवलप करना, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत सहयोगी होगा। कॉन्फ्रेंस जो शुरू हो रही है उसको मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। वंदे मातरम।
1: 19 जून शुक्रवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों को योग गुरु डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल ने योगाभ्यास करवाया।
2: भ्रामरी और ओम चैंटिंग बड़ा योगदान देता है। भ्रामरी को करते कैसे है, कान बंद, आंखें बंद, डीप इनहेल एक्सहेल विद बी साउंड लाइक ये जो इसकी जो साउंड है ना, जो वाइब्रेशन है, यही इसकी एक्सरसाइज है जो कि ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, जो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को ट्यूमर से बचाएगी। क्लॉटिंग आजकल देखा होगा, ब्रेन क्लॉटिंग हो रही है या पैरालिसिस के अटैक। यकीन मानिए, अगर आप डेली भ्रामरी कर रहे हो आपको कभी पैरालिसिस का अटैक आ ही नहीं सकता, अगर भ्रामरी की डेली प्रैक्टिस हो रही है 5 से 10 बार। हमिंग साउंड ऐसे करें, वेगस नर्व को भी आपके एक्टिवेट कर देता है पीछे से ऐसे। ओम चैंटिंग करते हैं दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, धीरे से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मन बिल्कुल शांत, डीप इनहेल। ओ

0: बवेद।
1: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशे योगोत्सवः सोत्साहम् आचरितः। तेन प्रख्यापितं यत् योगः मानसिकस्वास्थ्यात् शारीरिकस्वास्थ्यं प्रति एकमात्रो मार्गो विद्यते। सहैव मानवीयचेतनायाः प्रकटीकरणमस्ति योगः। प्रधानमन्त्रिणा कोलकातानगरे स्वदेशे निर्मितानि त्रीणि भारतीय नौसेना मञ्चानि राष्ट्राय समर्पितानि। तेनोदीरितं यत् देशे रक्षा उत्पादन क्षमतायाः वर्धनाय विशेषाः प्रयासाः विधीयन्ते। अद्य भारते विदेशेषु च 5,000+ परीक्षा केन्द्रेषु सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायाः अन्तः नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षा सुसम्पन्ना। अपि च क्रीडा वार्तासु, महिला हॉकी क्रीडायां FIH महिला नेशन्स कप स्पर्धायाः चरमे द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलं 2-0 इत्यंकांतरालेन पराभूतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोपलक्ष्ये प्रत्यपादीत् यत् मानसिकस्वास्थ्यात् शारीरिकस्वास्थ्यं प्रति योगः एव एकमात्रो मार्गो विद्यते। प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे कोलकातानगरस्य रेड रोड स्थले मुख्यायोजनं सञ्जातम्, यत्र तेन सहस्रशः साधकैः सह सामान्य योग नियमानुसारं योगाभ्यासः कृतः।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: हेमंत भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए आज 21 जून है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है
1: जी।
0: यह दिन उत्तरी जो गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत के लिए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी
1: जी।
0: और हेमंत भाई इस बार के अगर थीम यानी विषय की बात करें तो विषय रखा गया स्वस्थ आयु के लिए योग, योग फॉर हेल्थी एजिंग। यह विषय सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य, सहन शक्ति और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है ताकि बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति सक्रिय और स्वतंत्र रह सके।
1: बिल्कुल, और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिमाग को शांत रखने के लिए भी योग बहुत जरूरी है। रोज ध्यान मेडिटेशन करने से हमारी चिंता, तनाव और गुस्सा कम होता है और हम आज में खुश रहना सीखते हैं। योग हमें एक अच्छा, सच्चा और शांत इंसान बनाना सिखाता है। यह हमें बताता है कि असली खुशी बाहर की महंगी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई है।
0: बिल्कुल, और देखिए भाई योग से कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो योग करते से अगर हम योग करते हैं तो वो बीमारियां या तो होती ही नहीं
1: हाँ।
0: और हो भी जाती हैं तो वो योग के द्वारा बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। तभी तो कहा भी गया है दवा और डॉक्टर से हमेशा बचे रहेंगे आप अगर हर सुबह करेंगे योगा का जाप।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और देखिए भाई हम तो अपने सभी श्रोताओं को यही

0: करेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। योग दिवस को सफल बनाना है, भारत की यही पुकार है। योग से स्वस्थ हो सारा संसार, खुद से जुड़ने के लिए योग करें और विश्व से जुड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं।
1: ये तो बात हुई योग की, और योग के अलावा आज बहुत खास दिन है जिसका हमारा श्रोता जो है बड़ा चाव से इंतजार करते हैं, है ना। आज है फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम जिसमें हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं उनकी पसंद के लोकगीत।
0: और भाई देखिए, काफी फरमाइश हमें भाइयों की मिली है और भाइयों को भी बेसब्री से इंतजार होगा।
1: बिल्कुल।
0: और आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो सत्येंद्र यादव, और सत्येंद्र यादव को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है ये मिली खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो, कोयल मल्होत्रा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: अगली जो फरमाइश सुनील भाई हमारे पास आई है, गाँव चौहल्दा बागपत उत्तर प्रदेश से आई है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है चंडीगढ़ से भाई सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और अब्बासी परिवार के बाकी सभी सदस्य।
0: बिल्कुल। और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो भाई मिली है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राय और मेहराज जान और उनके समस्त परिवार की तरफ से। ये फरमाइश हमें भेजी है आजाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये आई है पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा और छत्तीसगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं देव शंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है गांव लोगर ठाकरो वाला से शरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरलाल और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता ने भी हमें फरमाइश भेजी है।
0: और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है गांव टोरावाल और पंजाब से, उसको भेजने वाले गगनदीप थांदी, त्रिपिता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है गांव फारासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं नलवेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नावांकर, निर्मला, विशाल, सोपान और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
0: और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है ये मिली है पलारी छत्तीसगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत और उनका समस्त परिवार।
1: एक और फरमाइश हम तक आई है यह आई है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति की।
1: दतरंगी से हमारे पास फरमाइश आई है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं दादा बाबू गरोड़ झारखंड से मोहम्मद यासीन, साई मां नवाज, हसन नवाज और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश है कुगदी कुम्हारी छत्तीसगढ़ से बलराम भया, दामिनी भया, डोमेश भया की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी, लक्ष्मी देवी और जोगेशपुरी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: एक और फरमाइश हम तक आई है हितेंद्र दास की, ये इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा, स्टेट इनका जो है, जो राज्य है वो आसाम से इन्होंने फरमाइश भेजी है।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक की।
1: अगली फरमाइश ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: सत्येंद्र यादव को ही सुनने के लिए फरमाइश मिली है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू की।
1: सत्येंद्र यादव को ही सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है अनारकली वजार जगराओ पंजाब से, और ये भेजने वाले हैं भाई सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव और उनका समस्त परिवार।
1: तो सुनील भाई अब सुनवा देते हैं हमारे श्रोताओं की ये पसंद पर
0: सत्येंद्र यादव से ये रागनी और किस्सा रहेगा सत्यवान शावित्री का।

मेरी भुया दिखना बंद जचे है, चारों खूंट अंधेरी रहे, चारों खूंट अंधेरी।

गया तेरे अगाड़ी, शादी की मैंने टाल करी, तू रही भाग की माड़ी, रहे रही भाग की माड़ी।

0: पर रागनी सु सत्येंद्र यादव से और किस्सा था सत्यवान शावित्री का, और हम बात कर रहे थे योग द्वारा वही स्वस्थ रहने की।
1: बिल्कुल,
0: इसी क्रम में देखिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग मिशन की शुरुआत की गई, और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भाई देखिए देश भर में लागत प्रभावी सुलभ और न्याय संगत आयुष आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा आदि सेवाएं स्वास्थ्य प्रदान।
1: बिल्कुल, खास करके गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक सस्ती सुरक्षित और असरदार स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसके लिए सरकार की तरफ से राज्यों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि नए आयुष अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र जो है खोले जा सकें और पुरानी जगहों पर सुधार किया जा सके।
0: इसी क्रम में देखिए आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ आयुष शिक्षण संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है और औषधीय पौधों की खेती और कच्ची सामग्री का सतत प्रबंधन भी इसके अंतर्गत किया गया है,
1: जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और दवाइयों के लिए कच्चा माल भी आसानी से मिलता है। इसके अलावा शिविरों के जरिए योग को घर घर पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये मिशन सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता बल्कि लोगों को प्राकृतिक तरीके से हमेशा स्वस्थ रहना भी सिखाता है।
0: तो हेमंत भाई बातचीत भाइयों से और भी करेंगे। देखिए आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो है कोशेंद्र खदाना और उनके साथी, और उनको सुनने के लिए जो पहली फरमाइश हमें मिली है ये मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। उसको भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उनका समस्त परिवार।
1: वहीं अगली फरमाइश हम तक आई है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की।
1: गांव बुर्दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से हमारे पास फरमाइश आई है महिपाल शारोन, नीरू, उत्कर्ष और दिव्यांश की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। इसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में एक और फरमाइश हम तक आई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है चक 5 MD रोड पतरोड़ा से, और इसको भेजने वाले मंगल जा जनागल, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और उनका समस्त परिवार।
1: गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से हमारे पास फरमाइश आई है सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़, जीतू सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की भी फरमाइश आई है।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है राहुल नगर अमरावती से, इसको भेजने वाले हैं सिद्धार्थ, हिरामन और उनका समस्त परिवार।
1: कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से फरमाइश आई है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और उनके परिवार के बाकी लोगों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से फरमाइश आई है नासिर शेख, नाजियाना सिर, साजिद और शाहिद की।
0: गोविंदपुरा अहमदनगर से फरमाइश मिली है जुनेद और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: एक और फरमाइश आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जसपुर उत्तराखंड से, उसको भेजने वाले रियासत हुसैन, नाजमा बेगम और उनका समस्त परिवार।
1: कौशिंदर खदाना को ही सुनना चाहते हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेगा, साक्षी और उनके परिवार के बाकी
0: कौशिंदर खुदागरने के लिए। और फरमाइश हमें मिली है गांव खोकर वाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: इसी क्रम में एक और फरमाइश आई है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम ममना जिला हमीरपुर से, इसको भेजने वाले रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना और उनका समस्त परिवार।
1: गांव डंडी तहसील बद्रवा जिला डोडा जम्मू कश्मीर से हमारे पास फरमाइश आई है पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, ओम राज, मोतीलाल और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार शाहू, चित्ररेखा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, हिना, सकीला और उनके परिवार के सदस्यों की भी फरमाइश हम तक आई है।
0: कौशेंद्र खजाना और साथियों को सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कौशेंद्र खजाना और उनके साथियों से ये रागनी और किस्सा रहेगा नल दमयंती का।

0: तो सुनील भाई, अभी कौशिंदर खदाना और साथियों को हमने सुना, और अब अगले जो कलाकार हैं हमारे, योगेश कुमार, और उनके लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है, वो बहुत सारी फरमाइश हैं हमारे पास।
1: ये पहली फरमाइश हमें मिली है मुकेश बत्ता नीलम बत्ता की, कनेरा मोहला पटियाला से। और
0: वहीं अगली फरमाइश जैन मंदिर वाली गली कुरावली से फरमाइश आई राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: हेमंत भाई, इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है बठिंडा रोड मंडी से, इसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अनु नारंग और उनका समस्त परिवार।
0: वहीं भोला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश आई है विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है अम्बेडकर चौक से, और इसको भेजने वाले उत्तम जमदाड़े और स्वराज और उनका समस्त परिवार।
0: गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से फरमाइश आई है विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: योगेश कुमार और साथियों को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ हादसा नंबर 2, इससे भाई भेजने वाले हैं कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू और पायल शाहू।
0: अगली फरमाइश ब्रिज बिहार कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद से आई करमबीर सिंह ढिलोट की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जटवाड़िया गाजियाबाद से शीशपाल अकेला।
0: पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और उनके परिवार के सदस्य।
1: और इसी क्रम में अगली जो फरमाइश हमें मिली छत्तीसगढ़ डोगर गांव से, इसको भेजने वाले राष्ट्रपाल राधिका और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश आई है इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और हेमंत भाई, कुछ फरमाइश हमें और भी मिली है, वो हम हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे, तो आप कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहिए। और अभी सुन लेते हैं आप सभी की पसंद पर योगेश कुमार और साथियों से ये रागनी।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी योगेश कुमार और साथियों से, और योगेश कुमार की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी है। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 3 पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: हेमंत भाई, देखिए सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें कृषि पर घरेलू खर्च के लिए सहायता प्रदान करना। इसके तहत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता के लिए हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों के रूप में दिया जाता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 जून 2026 को किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई। इस अवसर पर जानकारी देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा,
2: बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। आज इस कार्यक्रम में देश के अलग

0: अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलकर हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। साथियों, देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: तो सुनील भाई, अभी हमारे किसान भाइयों को हमने सुनवाया किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संदेश है देश के प्रति, किसानों के प्रति, वो हमने सुनवाया। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई हमें खेत बचाओ जो अभियान है, जिसके बारे में हम पूर्व कार्यक्रमों में भी बहुत बातें करते हैं,
2: बिल्कुल
1: उससे जुड़ना है और बाकी किसानों को भी प्रेरित करना है कि वो भी, क्योंकि जो उर्वरक होता है उसमें जो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के लिए उन्होंने मना किया है कि भाई वैसा उर्वरक जो अपनी खेतों में नहीं डालना, क्योंकि उससे नुकसान, फायदा तो होता है लेकिन उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है।
2: और भाई देखिए, इस समय खरीफ फसलों की जो बुआई की तैयारी भी चल रही है।
1: हाँ।
2: तो कुछ क्षेत्रों में जो प्री मानसून बारिश भी हुई है, लेकिन देखिए मानसून की अभी इंतजार है और उत्तर भारत और मध्य भारत में मानसून के जो आने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो देखिए, मिट्टी में पर्याप्त नमी कम से कम 4 से 6 इंच होने पर ही बुआई करें। और दूसरा भाई, बीज उपचार अवश्य करें, जहाँ से भी आप बीज लें उपचारित बीज लें, अगर बीज उपचारित ना हो तो भाई बीज को उपचारित अवश्य करें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि भाई देखिए, अचानक कई बार बारिश तेज हो जाती है तो ऐसे में खेत में भाई जो आपकी फसल के हिसाब से जल निकासी का भी प्रबंध करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: और सिंचाई और नमी प्रबंधन, जिन क्षेत्रों में बारिश में गैप हो या तापमान अधिक हो, वहाँ उपलब्ध पानी से हल्की सिंचाई करें या नमी बनाए रखने के लिए जैविक मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: फसल का चुनाव भी भाई देखिए, अपने क्षेत्र की कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह के अनुसार कम अवधि वाले उन्नत किस्मों का चयन करें तो अच्छे रहेगा।
1: बिल्कुल। और मानसून के दिनों में खेतों में फसलों के साथ साथ खरपतवार जो होते हैं, फालतू घास भी बहुत तेजी से उगने लगती है और ये घास जो है मुख्य फसल के हिस्से को खाद, पानी और धूप सोख लेती है, जिससे फसल कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद खेत की अच्छे से निराई गुड़ाई करके कचरा जो है उसका निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा हवा में नमी और गर्मी के कारण इस मौसम में फसलों पर कीड़ों और बीमारियों का हमला भी बहुत जल्दी होता है। किसानों के नियमित रूप से अपने खेतों को मुआयना जो है करते रहना चाहिए। अगर

0: पत्तियों में कीड़े या कोई बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर नीम के तेल या किसी सही कीटनाशक दवा का छिड़काव जो है करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, इस तरह से भाई देखिए, छोटे छोटे बातों का आप ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे भरपूर उत्पादन। और हेमंत भाई, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि कुछ और फरमाइश हमें भाइयों की मिली है,
0: जी
1: तो अगले जो कलाकार हैं वो हैं भूलन त्यागी, और भूलन त्यागी से उपदेश सुनने के लिए फरमाइश हमें मिली है। ये पहली फरमाइश मिली है सुनैना पवन भोंडे और तनुजा की थिलोरा दयापुर से।
0: बिल्कुल, और अगली फरमाइश हमारे पास आई है ये रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, और ये फरमाइश हमारे पास आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, गांव लोहड़ा जिला बागपत से जगमोहन प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं नूर महल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
0: एक और फरमाइश हम तक आई है करावल नगर दिल्ली से श्री रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: ये अगली फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है बिहार डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, बेगम शबनम और उनके समस्त परिवार की तरफ
0: इसी
1: से।
0: क्रम में अगली फरमाइश हम तक आई है ग्राम पाजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चांसली और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पहले से उत्तर प्रदेश से, उसको भेजने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा।
0: गांव शेरड़ा जिला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश आई है मिंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। डुमराव बिहार से फरमाइश मिली है डॉक्टर डब्लू अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: और अगली फरमाइश हमारे पास आई है ढाणा नरसाना भिवानी से, ये फरमाइश आई है जगदीश चांडालिया, राजवीर चांडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से, ये फरमाइश आई है तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, क्षमा, शिवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की।
0: मुंगी बैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगड़कर और परमेश्वर की फरमाइश हम तक आई है।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सुक्रांति चौहान और उत्कृष्ट चौहान।
0: चौधरीवास हिसार से फरमाइश आई है हमारे पास प्रियांशी और केशव की, और सुनना चाहते हैं भूलन त्यागी को।
1: और साथ ही भैया लिखते हैं कि आपने जो रागनी सुनवाई ये उसकी तारीफ करते हैं कि वो अच्छी रागनी थी।
0: बिल्कुल,
1: और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है ये मिली है रावता खेड़ जिला हिसार हरियाणा से सियाराम भादु, सुशीला और रोबिन की तरफ से।
0: अगली फरमाइश रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की फरमाइश आई है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव हांडीखेड़ा जिला सरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा की।
0: संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की भी फरमाइश हम तक आई है।
1: और यह फरमाइश हमें मिली है जमानिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश गांव नालोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश की फरमाइश हम तक आई है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश हम तक आई है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अब सुनते हैं इन सब फरमाइश करताओं की
1: भूलन त्यागी से ये उपदेश।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना बुलंद त्यागी से। और देखिए भाई, बदलाव प्रकृति का नियम है।
1: बिल्कुल
0: सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये मौसम बदलते रहते हैं। और भाई देखिए, तपती गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो हम सबके मन को खूब भाता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बरसात के मौसम में भाई, यदि सावधानी न बरती जाए तो जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको भी बता देंगे भाई, बरसात के मौसम में पशुओं में कई तरह के रोग व बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस मौसम में आपने जो पशुओं का विशेष ध्यान रखना है, उनके खान पान का, विशेषकर बात करें तो देखिए, उनके बिछावन को गीला ना होने दें,
1: बिल्कुल
0: हमेशा साफ सुथरा बिछावन
1: बारिश के
0: रखें।
1: मौसम में होता यह है कि पानी भर जाता है, और पानी से क्या होता है, कीचड़ हो जाता है, और कीचड़ से लगातार उसमें पानी जमा रहता है, तो कहीं ना कहीं उनके पैरों में जो खुर होते हैं उनमें भी बीमारियां लग जाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: खुरपका मुंहपका की बात करें तो वो बीमारी इस तरह से हो सकती है। और देखिए भाई, दूसरी बात ये कि पशुओं का जो खान पान का अपने विशेष ध्यान रखना है। यदि पशु का कोई भी आहार आप बदलते हैं तो उसे धीरे धीरे बदलें, ये नहीं कि भी एकदम से आपने पशु का आहार बदल दिया, चाहे वो हरे चारे की बात हो, सूखे चारे की बात हो। इसी तरह से देखिए भाई, जो पशुओं को आपने जो जल पिलाना है वो स्वच्छ जल पिलाना है। कई बार भाई सोचते हैं कि भाई चलो तालाब में, पोखर में, जोड़ में पशु को नहलाने जा रहे हैं, पशु वहीं पानी पी लेगा। तो भाई ऐसा ना करें, क्योंकि वो जो तालाब का और पोखर का जो पानी साफ नहीं होता, उससे भाई पशुओं में कई तरह के रोग व बीमारियां होने के चांस रहते हैं।
1: और जो पशुओं के लिए जो हम चारा डालते हैं, वो जगह के जो कोने वगैरह होते हैं, जैसे सीमेंट से बनी हुई वो होते हैं, उनके हौदी टाइप बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, पानी जमा रहता है, कोने में चारा जमा हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसका भी समय समय पर देखभाल करते रहेंगे और उसको साफ करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पशुओं के लिए भी वो लाभकारी सिद्ध होता है।
0: और भाई देखिए, एक बात और यहाँ जो हम अपने कार्यक्रम में हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि भाई देखिए, जो बचाव आपने जरूर करना है, और बचाव के लिए भाई देखिए, समय समय पर आप पशुओं को रोग रोधी टीके अवश्य लगवाएं।

0: और ये टीके देखिए भाई सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलते हैं, और नहीं तो भाई गांव में भी आप बहुत कम कीमत पर ये टीके पशुओं को लगवा सकते
1: कहने का
0: हैं।
1: मतलब यह है कि जागरूक पूरी तरह से रहना है आपको अपने पशुओं के लिए, अपनी कृषि के लिए और स्वयं के लिए भी, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बातें की थी।
0: बिल्कुल। और अब भाई हेमंत भाई, बारी है कल के कार्यक्रमों के बारे में, कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जो जानकारी देंगे वो देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर क्राइम से बचाव, और साथ ही जानकारी देंगे भाई जैव उर्वरकों का प्रयोग और मिट्टी की उर्वरता के बारे में।
1: वही 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में बातचीत रहेगी, कार्बन फार्मिंग और मृदा में कार्बन सिंक बढ़ाना।
0: और हमेशा की तरह भाई देखिए 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का भी आप आनंद ले सकते हैं।
1: और साथ में बात करते हैं कल के मौसम की। अगले 24 घंटों में दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में मौसम के बदले हुए तेवर देखने को मिल सकते हैं। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिल सकती है।
0: तो देखिए भाई मौसम का भी आपने ध्यान रखना है, पशुओं का भी और अपनी फसलों का भी और अपना भी। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिवनंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम,
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। शाम के 7:30 हुए हैं और अब समय है गजल का। लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: Saving करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na.
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
7: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना।
8: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट।
10: नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा

0: एजेंसी एनटीए ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। आयुष मंत्रालय ने बताया कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। इसके अलावा कर्तव्य पद, लोधी गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, सिरी फोर्ट खेल परिसर, यमुना खेल परिसर और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज सहित कई प्रमुख स्थानों पर भी योग सत्र आयोजित हुए। मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण के बाद प्रतिभागियों ने 45 मिनट के सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। आयोजन ने स्वास्थ्य जीवन शैली और योग के प्रति लोगों की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया। योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि लगभग 190 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तब से सभी देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि योग से मानसिक जागरूकता बढ़ती है।
2: योग मैं भी दिन प्रतिदिन करता हूं, इससे बहुत शारीरिक एजिलिटी आती है, मानसिक जागृति आती है और शांत मन से, शांत चित्त से लंबे समय तक काम करने की प्रेरणा मिली। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस योग दिवस पर हम संकल्प लें कि हम कम से कम अपने दैनिक जीवन में योग का उपयोग करते हुए अपने जीवन को और उत्तम बना सकें, अपने शरीर को और अच्छा बना सकें, अपने मन को शांत रख सकें।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पूरी दुनिया कहा कि आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से एकजुट हो रही है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ता है।
4: आज पूरा विश्व योग के माध्यम से जुड़ रहा है, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी योग से बढ़ता है। जब मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है तो सामाजिक और राष्ट्र का स्वास्थ्य भी बढ़ता है और प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है तो पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए 100 दिन योगा का भी आह्वान किया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में करोड़ों लोगों ने योग किया है।
1: इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आसोला भाटी स्थित नीली झील पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वस्थ, सक्रिय और तनाव मुक्त बनाने की दिशा में योग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है जो तन, मन और जीवन में संतुलन प्रदान करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। इसके अलावा योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योग को 365 दिन का कार्यक्रम बनाने पर बल देते हुए कहा कि योग से हमारी जीवन शैली बदलने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होगा।
5: योगा का देखिए फिजिकल फिटनेस एक चीज है, खास तौर पे आज योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम जिसके थ्रू ये अचीव हो सकता है। बैलेंस हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बैलेंस से मेंटल बैलेंस निकलता है, फिजिकल बैलेंस निकलता है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। श्री संधू ने कहा कि लोगों का जबरदस्त उत्साह और सामूहिक भावना दर्शा

0: जाता है कि योग एक ऐसी शक्ति है जो उम्र, पृष्ठभूमि और भूगोल की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ती है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय सहित राजधानी के विभिन्न जिलों में योग सत्र आयोजित किए। पुलिस के अनुसार पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ईशा फाउंडेशन ने देश भर में कई योग कार्यक्रमों का आयोजन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित आदि योगी परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि योग में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित प्रतिभा और क्षमता को जागृत करने की अपार शक्ति है।
1: What we call as yoga.
2: जिसे हम योग कहते हैं वह कोई फिलॉसफी नहीं है, वह कोई विचारधारा नहीं है, ना ही कोई बिलीफ सिस्टम है, ना ही कोई धर्म है, और निश्चित रूप से ये आपके शरीर मोड़ने और घुमाने के बारे में भी नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। जैसे बाहरी खुशहाली के लिए एक विज्ञान और तकनीक है, वैसे ही आंतरिक खुशहाली के लिए भी एक पूरा विज्ञान और तकनीक है। यदि आप एक इंसान हैं तो ये तकनीकें आप पर लागू होती हैं। यदि आप केवल इसका उपयोग करना चाहते हैं या यदि आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो एक पूरा विज्ञान यहाँ मौजूद है जो जीवन भर की खोज का विषय है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे तीन प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कोली समाज के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय कोली समाज को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि कोली समाज ने अपने परिश्रम, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परम्परा से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि समग्र और स्वस्थ जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर दादा ने कहा कि योग से तनाव भी कम होता है और वजन नियंत्रण तथा प्रजनन स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है।
3: बहुत बढ़ रहा है और इंडिया में तो अबाउट 3.6 to 22.6% पाया गया है। बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो हमारी एविडेंस बेस्ड रिसर्च ने क्लियरली दिखाया है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है तो योग एक आर्ट ऑफ लिविंग है, इट्स अ प्रोफाउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसको अगर हम अपने दिनचर्या में अपनाएं तो इस पे बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ अजीत कुमार सिंगला ने की, जिसमें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान रूट सुरक्षा, कांवड़ियों की सुगम आवाजाही, यातायात डायवर्जन, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों और राष्ट्रीय समारोह स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों आयोजनों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस अधिनियम 1985 पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में 71 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शेयर

को अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते थे। मामले की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम के समय हल्के बादलों के साथ धीमी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल दोपहर हल्के बादल छाए रहने की संभावना बताई है और शाम में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न, 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। श्रोताओं, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया नहीं, बल्कि अंतर मन को साधने, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और समूची प्रकृति के साथ एकाकार होने का नाम है। यह भारतीय मनुष्यों का संपूर्ण विश्व को वह अमूल्य उपहार है जो हमें संयम, संतुलन और वैश्विक शांति का मार्ग दिखाता है। जहाँ योग मनुष्य को भीतर से शांत और चैतन्य बनाता है, वहीं कविता हमारी आत्मा को रसमय और संवेदनशील करती है। सच कहा जाए तो योग और कविता दोनों ही चित्त की एकाग्रता और आंतरिक खोज की यात्रा है। इस अवसर पर लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्री सुनील हापुड़िया, श्री मित्रपाल सिसोदिया और सुश्री व्यंजना पांडे। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री मित्रपाल सिसोदिया।
1: नमस्कार, मैं मित्र गाजियाबादी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कवि और योग शिक्षक आदरणीय सुनील हापुड़िया जी और वरिष्ठ कवियत्री जानी पहचानी हमारी व्यंजना पांडे जी नोएडा से। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आदरणीय व्यंजना पांडे जी को उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ कि हमें भेजा गया औरत बनाकर हमारी एक भी छुट्टी नहीं है। आदरणीय व्यंजना पांडे जी,
2: नमस्कार। मैं अपनी एक गजल पढ़ूंगी पहले।
3: स्वागत।
2: कि मुश्किलें सिर पर उठाए रक्स करती है, मुश्किलें सिर पर उठाए रक्स करती है, जिंदगी रस्सी पे चलती एक लड़की है।
3: वाह वाह,
2: बहुत शुक्रिया। जिंदगी रस्सी पे चलती एक लड़की है कि आग पानी आसमां मिट्टी हवा लेकर, आग पानी आसमां मिट्टी हवा लेकर बुद्ध बनाए फिर खुदा ने जान भर दी है।
3: वाह।
2: हम यहाँ आए हैं क्यों मालूम तो कर ले, कि हम यहाँ आए हैं क्यों मालूम तो कर ले, तय करेंगे बाद में क्या राह चुननी है। कि हम यहाँ आए हैं क्यों मालूम तो कर ले, तय करेंगे बाद में क्या राह चुननी है। और खोल कर खिड़की बहुत घबरा रहा था दिल, खोल कर खिड़की बहुत घबरा रहा था दिल, एक चिड़िया में हमारी जान अटकी है।
3: क्या बात है, एक चिड़िया में हमारी जान अटकी है।
2: खोल कर खिड़की बहुत घबरा रहा था दिल, एक चिड़िया में हमारी जान अटकी है। और अगला शेर कि इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इसलिए तो हाथ में अब सिर्फ मिट्टी है।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छा।
3: वाह वाह वाह।
2: कि इश्क कहकर आपने सोचा बदन होगा, इसलिए तो हाथ में अब सिर्फ मिट्टी है। और आखिरी शेर कि मैं खुदी को भूलकर कैसे मिलूं उससे, मैं खुदी को भूलकर कैसे मिलूं उससे, जाल है मकड़ी का उलझी एक तितली है।
1: बहुत खूब, बहुत।
3: क्या बात।
2: कि मैं खुदी को भूलकर कैसे मिलूं उससे, जाल है मकड़ी का।

0: मुझे एक तितली है।
1: क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म है।
1: स्वागत है,
2: स्वागत।
0: कि गुमसुम चांद की बिंदी वाली, गुमसुम चांद की बिंदी वाली, रात न जाने क्यों रूठी है। गुमसुम चांद की बिंदी वाली, रात न जाने क्यों रूठी है। आई है क्यों ओढ़ उदासी, हंसी कहाँ उसकी झूठी है।
1: आहा, क्या बात।
0: अब पूछे उससे कौन भला ये, मैं भी चुप वो मौन है ओढ़े। पूछे उससे कौन भला ये, मैं भी चुप वो मौन है ओढ़े। सन्नाटा भर शोर मचाए, चुप का पहरा कौन है तोड़े। कि सन्नाटा भर शोर मचाए, चुप का पहरा कौन है तोड़े। उठती गिरती सांसों नहीं, उठती गिरती सांसों नहीं, है थोड़ी उम्मीद बढ़ाई। और शोर मचाए हैं वो इतना, कि दोनों को नींद ना आई।
2: बहुत सुंदर।
0: कि उठती गिरती सांसों नहीं, है थोड़ी उम्मीद बढ़ाई। शोर मचाए है वो इतना, कि दोनों को नींद ना आई। शायद कोई एक उठे अब, कि शायद कोई एक उठे अब, या फिर दोनों हाथ बढ़ाए। शायद कोई एक उठे अब, या फिर दोनों हाथ बढ़ाए। ठोकर से बस एक जरा सी, बीच खड़ी दीवार गिराए।
2: बहुत सुंदर।
0: ठोकर से बस एक जरा सी, बीच खड़ी दीवार गिराए। रात भी चुप सी देख रही है, ये रात भी चुप सी देख रही है। फिर कब हम दोनों मुस्काए, और हम दोनों की होड़ हमी से एक दूजे से हार ना जाए। कि हम दोनों की होड़ हमी से एक दूजे से हार ना जाए। बहुत शुक्रिया।
2: बहुत सुंदर।
0: अब मैं आपके सामने एक गीत पढ़ूंगी।
1: स्वागत है।
0: मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। तेरी गोद में सिर रख कर बेफिक्री से सो जाऊं माँ। और जब जब आंखें बंद करूं तो स्वप्न भयानक आते हैं। और डर कर खोलूं आंख तो जीवन जाल बहुत उलझाते हैं। ओ मुझे छुपा ले आंचल में, सुख सपनों में खो जाऊं माँ। मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। हो तू क्या जाने कब से हो गई नींद चढ़ी रातें मेरी। तेरी चौखट पर छूट गई बेफिक्री की बातें मेरी। वो बीती बात जमाने की, दिन चढ़े तलक सो जाऊं माँ। मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ।
2: बहुत अच्छा।
0: खेल खिलौने कट्टी बट्टी बातें सारी हवा हुई। और तू भी मिलते कभी कभी, लगता कि जैसे दवा हुई। हो खेल खिलौने कट्टी बट्टी बातें सारी हवा हुई। तू भी मिलते कभी कभी, जो बीमारी की दवा हुई। कुछ दिन को मेरे पास तू आ, फिर से अच्छी हो जाऊं माँ।
1: वाह वाह।
0: मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। कब से मेरे कान न खींचे, कब से बातें कड़ी न की। हो मुझको डांट न पाए माँ, तू इतनी भी तो बड़ी न की। ओ फिर तेरे आंगन की मैं मट्टी कच्ची हो जाऊं माँ।
1: क्या बात है।
0: मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ।
2: बहुत अच्छा। वाह वाह, बहुत अच्छा।
0: हाथ कांपते हैं अब तेरे, घुटने भी थर्राते हैं। और फिर भी मेरे उलझनों के हल पास तेरे मिल जाते हैं। अरे आज मुझे ये राज बता दे, क्या जिद पर आ जाऊं माँ। हो आज मुझे ये राज बता दे, क्या जिद पर आ जाऊं माँ। हो मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। हो मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ। अरे एक ही बात का डर है मुझको माँ, तू छोड़ नहीं जाना। ओ मेरे अंदर की बच्ची से माँ, मुँह मोड़ नहीं जाना। अब भी तेरी जरूरत मुझको, सच्ची तुझे बताऊं माँ। हो अब भी तेरी जरूरत मुझको, सच्ची तुझे बताऊं माँ। मन करता है फिर से एक छोटी बच्ची हो जाऊं माँ।
2: बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
2: तो जैसा कि आपने सुना, व्यंजना जी ने बहुत सुंदर

0: और गज़ल हमें सुनाई। इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुनील हापुड़िया जी को, जो एक वरिष्ठ कवि होने के साथ साथ योग के शिक्षक भी हैं और बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो उन्हीं की दो लाइनों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा। कि नीड़ मढ़िया दफ्तर घर ना कोठी ना बुतखाने में, नीड़ मढ़िया दफ्तर घर ना कोठी ना बुतखाने में, गीत हमारे रहा करेंगे दिल के राज घराने में। तो आइए सुनते हैं आदरणीय सुनील हापुड़िया जी को।
1: धन्यवाद भाई मित्र जी। आज चूंकि हमारा कार्यक्रम योग दिवस के उपलक्ष्य में है और 90 वर्ष हो रहे हैं आकाशवाणी को भी आभार व्यक्त करते हुए थोड़ा योग पे एक कुछ दोहे में बोलना चाहूंगा।
2: स्वागत।
1: प्राणों को आयाम दें, प्राण का मतलब श्वास से होता है, कि प्राणों को आयाम दें तन मन को श्रम योग, प्राणों को आयाम दें तन मन को श्रम योग, ऋषि मुनि सब कह गए योग भगाए रोग। ऋषि मुनि सब कह गए योग भगाए रोग। और कुछ थोड़ा सा अध्यात्म भी योग से ही है सब कुछ, कि ये दुखिया संसार तो सौ मूलन को मूल, ये दुखिया संसार तो सौ मूलन को मूल, लिप्त भये तो जानिए सबसे भारी भूल।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: कि वृक्ष फलों के रोपिए, सबके लिए है, कि वृक्ष फलों के रोपिए प्रश्न करो सब मौन, वृक्ष फलों के रोपिए प्रश्न करो सब मौन, आप कभी ना सोचिए फल खाएगा कौन।
2: बहुत सुंदर।
1: आप कभी ना सोचिए फल खाएगा कौन, ये अपना ब्रह्मांड तो, ये सारा ब्रह्मांड तो है रत्नाकर संत, ये सारा ब्रह्मांड तो है रत्नाकर संत, कर्म हमारे देख कर लौटा दे अनंत। जैसा करते हैं वैसा ही तो भरेंगे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: कर्म हमारे देख कर लौटा दे अनंत। और सब कुछ प्रभु का है यहाँ, सब कुछ प्रभु का है यहाँ, आन बान अरुशान, सब कुछ प्रभु का है यहाँ, आन बान अरुशान, माटी होनी देह तो कापे करें गुमान।
0: बहुत सुंदर।
1: माटी होनी देह तो कापे करें गुमान। और जीवन का दर्शन यही, गीता में कृष्ण कहते हैं कि जीवन का दर्शन यही, यही काम निष्काम, जीवन का दर्शन यही, यही काम निष्काम, नयन मूंद दर्शन करें निज नयनन अभिराम।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: नयन मूंद दर्शन करें निज नयनन अभिराम। और धर्म अर्थ अरु काम की, धर्म अर्थ अरु काम की कब सीमा है कोई, धर्म अर्थ अरु काम की कब सीमा है कोई, जो जितना भी डूबता उतना जाता खोए।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: जो जितना भी डूबता उतना जाता खोए। और साधना कैसे आगे बढ़ेगी, कि सफल रहेगी साधना, सफल रहेगी साधना साधो अंतर मौन, सफल रहेगी साधना साधो अंतर मौन, आत्म तत्व सद जाए जब बाकी सब है गौन।
0: बहुत सुंदर।
1: बाकी सब है गौन। और एक दो दोहा आप देखें, ये जीवन तो हमारा क्षण भंगुर है, जो करें परमात्मा के लिए अच्छा है। कि क्षण भंगुर जीवन मिला, क्षण भंगुर जीवन मिला उलट पुलट प्रतिमान, क्षण भंगुर जीवन मिला उलट पुलट प्रतिमान, काया कच्ची माटड़ी कापे करें गुमान।
0: बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, क्या कहें।
1: क्षण भंगुर जीवन मिला उलट पुलट प्रतिमान, काया कच्ची माटड़ी कापे करें गुमान। और किन जन्मों का कर्म फल, किन जन्मों का कर्म फल भोग रहे हम आज, किन जन्मों का कर्म फल भोग रहे हम आज, अब ऐसा कुछ कर चलें शुक्ले सकल समाज।
0: बहुत सुंदर।
1: किन जन्मों का कर्म फल भोग रहे हम आज, अब ऐसा कुछ कर चलें सुखले सकल समाज।
0: बहुत सुंदर।
1: और नेह मिले जाना भला, नेह मिले जाना भला मिले जहां जिस ओर, नेह मिले जाना भला मिले जहां जिस ओर, वरना पछतावा रहे हर संजा अरुभोर, वरना पछतावा रहे हर संजा अरुभोर।
0: बहुत सुंदर।
1: और एक दो दोहा देखें कि चलो, हम लोगों को चलते रहना चाहिए, चरैवेति चरैवेति, कि चलो।

0: परिंदो उड़ चलें, चलो परिंदो उड़ चलें, लंबी भरें उड़ान, चलो परिंदो उड़ चलें, लंबी भरें उड़ान, एक दुनिया के पार भी होगा एक मकान।
1: बहुत सुंदर, वाह।
0: चलो परिंदो उड़ चलें, लंबी भरें उड़ान, इस दुनिया के पार भी होगा एक मकान। और जीवन तो घटता जाता है कि पल पल पल पल घट रही, पल पल पल पल घट रही अपनी हर एक सांस, पल पल पल पल घट रही अपनी हर एक सांस, कैसे अब निकले सकी भीतर गहरी फांस।
1: बहुत सुंदर।
0: कैसे अब निकले सकी भीतर गहरी फांस, के अंतर मन की साधना, अंतर मन की साधना साधे बिरला कोय, अंतर मन की साधना साधे बिरला कोय, जो ये साधन साध ले पार सकल भव होए।
1: बहुत अच्छे,
0: पार
1: बहुत अच्छे,
0: सकल
1: बहुत
0: भव होए। और एक दो दोहे और देखें कि ढलते ढलते ढल गई,
1: ढलते ढलते ढल गई,
0: ढलते ढलते ढल गई उम्र सुनहरी धूप, ढलते ढलते ढल गई उम्र सुनहरी धूप, लौट कभी ना पाए है पहले जैसा रूप।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: ढलते ढलते ढल गई उम्र सुनहरी धूप, लौट कभी ना पाए है पहले जैसा रूप। और एक दोहा देखें कि मरना होवे मौत से,
1: मरना होवे मौत से,
0: मरना होवे मौत से या फिर मारे प्रेम, मरना होवे मौत से या फिर मारे प्रेम, मरना होवे मौत से या फिर मारे प्रेम, झूठे बंधन मोह के भूल गए व्रतनेम।
1: बहुत सुंदर,
0: झूठे बंधन मोह के भूल गए व्रतनेम। और सुख दुख पे देखें कि सुख दुख दोनों एक से, ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं, कि सुख दुख दोनों एक से कहीं न अंतर खास, सुख दुख दोनों एक से कहीं न अंतर खास, जिसमें ज्यादा लिप्त हो करता वही उदास।
1: बहुत सुंदर,
0: सुख दुख दोनों एक से कहीं न अंतर खास, और जिसमें ज्यादा लिप्त हो करता वही उदास। और दर्शन पे देखे बोल रखो मन भाव ने, हमको कैसा बोलना है समाज में, कि बोल रखो मन भाव ने सबको सुखी बनाए, बोल रखो मन भाव ने सबको सुखी बनाए, कटु शब्दों की मार से तन मन सब रो जाए।
1: बहुत सुंदर।
0: कटु शब्दों की मार से तन मन सब रो जाए। और एक और दोहा देखें कि करता दर्शन देह का, करता दर्शन देह का रूप नहीं दिख पाए, करता दर्शन देह का रूप नहीं दिख पाए, देखन चाहे रूप तो अंतर मन में जाए।
1: बहुत सुंदर।
0: देखन चाहे रूप तो अंतर मन में जाए।
1: बहुत सुंदर।
0: आजकल की अवस्थाओं पर एक समसामयिक रचना कि इस दुनिया में अब तो मेरा दमसा घुटता है।
1: बहुत सुंदर।
0: इस दुनिया में अब तो मेरा दमसा घुटता है, आशाओं का एक बबूला जिंदा रखता है।
1: बहुत सुंदर।
0: इस दुनिया में अब तो मेरा दमसा घुटता है, आशाओं का एक बबूला जिंदा रखता है, अंकुर कोई उगना चाहे मन के मरुथल में।
1: बहुत सुंदर।
0: अंकुर कोई उगना चाहे मन के मरुथल में, दूषित होती जलवायु से डर सा लगता है।
1: बहुत सुंदर।
0: दूषित होती जलवायु से डर सा लगता है, और प्यार भरी शीतल धरती पर ठहरा करते हम, प्यार भरी शीतल धरती पर ठहरा करते हम, मन मेरा जो एक परिंदा उड़ता रहता है।
1: बहुत सुंदर।
0: मन मेरा जो एक परिंदा उड़ता रहता है, और नील गगन में उड़ता कैसे ये आवारा दिल।
1: बहुत सुंदर।
0: नील गगन में उड़ता कैसे ये आवारा दिल, नील गगन में उड़ता कैसे ये आवारा दिल, शोख चटक चंचल कलियों पर मचला करता है।
1: बहुत सुंदर।
0: नील गगन में उड़ता कैसे ये मेरा आवारा दिल, शोख चटक चंचल कलियों पर, शोख चटक चंचल कलियों पर मचला करता है। और एक प्यारा शेर है कि गैरों की मानिद ना हंसना मेरे गिरने पर, गैरों की मानिद ना हंसना मेरे गिरने पर,

0: हर नन्ना छोटा सा बच्चा गिरता उठता है।
1: बहुत सुंदर।
0: हर नन्ना छोटा सा बच्चा गिरता उठता है और तुम पूछो तो बतलाऊंगा राम कहानी सब।
1: बहुत सुंदर।
0: तुम पूछो तो बतलाऊंगा राम कहानी सब, भीतर मेरे जो बैठा है रोका करता है। तुम पूछो तो बतलाऊंगा राम कहानी सब, भीतर मेरे जो बैठा है रोका करता है। और कितने सारे प्रकृति के कवि की बात कि कितने सारे रंग भरे हैं उसकी रचना में, कितने सारे रंग भरे हैं उसकी रचना में, मेरा कवि जो टुकुर टुकुर बस देखा करता है।
1: बहुत सुंदर।
0: कितने सारे परमात्मा की रचना में कितने सारे रंग हैं कि कितने सारे रंग भरे हैं उसकी रचना में, मेरा कवि जो टुकुर टुकुर बस देखा करता है।
1: बहुत सुंदर।
0: और चैन कहाँ लेती ये मुंबई दौड़ा करती है, कि चैन कहाँ लेती ये मुंबई दौड़ा करती है, कौन सुनेगा तेरी बातें किससे कहता है।
1: बहुत सुंदर।
0: कौन सुनेगा तेरी बातें किससे कहता है, नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन।
1: बहुत सुंदर।
0: कि नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन वन, नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन वन, मेरे मन का उड़न खटोला घूमा करता है।
1: बहुत सुंदर।
0: नदियाँ पर्वत झरने झील समंदर उपवन वन, मेरे मन का उड़न खटोला घूमा करता है, अपना सब कुछ लुट जाने पर शेष बहुत बचता है।
1: बहुत सुंदर।
0: अपना सब कुछ लुट जाने पर शेष बहुत बचता है, मेरे अंदर एक समंदर उमड़ा करता है। अपना सब कुछ लुट जाने पर शेष बहुत बचता है, मेरे अंदर एक समंदर उमड़ा करता है। और सारी दुनिया सो जाती जब अपनी मस्ती में, सारी दुनिया सो जाती जब अपनी मस्ती में, मेरे भीतर छोटा बच्चा कुछ कुछ करता है।
2: क्या बात है।
0: सारी दुनिया सो जाती जब अपनी मस्ती में, मेरे भीतर छोटा बच्चा कुछ कुछ करता है। और बूंद बूंद से बादल और समंदर बनते हैं, बूंद बूंद से बादल और समंदर बनते हैं, और बड़ा बादल आंखों से बरसा करता है।
1: बहुत सुंदर।
0: कि माँ के आंचल में ही मेरी दुनिया बसती सी, कितना किसको समय मिला बस किसका चलता है।
1: बहुत सुंदर।
0: माँ के आंचल में ही मेरी दुनिया बसती थी, कितना किसको समय मिला बस किसका चलता है। मेरा मन है कि कुछ गजल के शेर।
1: स्वागत।
0: थोड़ी हमने गजल कही है थोड़े शेर कहे, थोड़ी हमने गजल कही है थोड़े शेर कहे, इस बेगानी बस्ती में हम बनकर बोझ रहे।
1: बहुत सुंदर।
0: थोड़ा सा बस प्यार मिला है, नफरत खूब मिली, अपनों की ही दी पीड़ा को हम दिन रात सहे।
1: बहुत सुंदर।
0: कैसे हमने दिन काटे हैं, कैसे रात कटी, इन गजलों में हमने अपने ही जज्बात कहे।
1: बहुत सुंदर।
0: और जो भी आया झील समझकर कंकर फेंक गया, सहज नदी का पानी बनकर हम हर बार बहे, और जब जब तुमने पत्थर मारे हम फल फूल दिए।
1: बहुत सुंदर।
0: सड़क किनारे पेड़ों रक्षे हम भी ढीठ रहे, सड़क किनारे पेड़ों जैसे हम भी ढीठ रहे, क्या समझेंगे क्या समझेंगे मोल कभी वे, खारे पानी का जितने रोके हमने आंसू उतने और बहे।
1: बहुत सुंदर।
0: सब हमको पागल ही कहते और दीवाना भी, कुछ तो सूरत ऐसी कुछ ऐसे हालात रहे। और अंतिम है कि पागल ना बतलाना हमको भोले भाले हैं, अपना सब कुछ दान दिया फिर खाली हाथ रहे।
1: बहुत सुंदर।
0: और अब मैं आह्वान करूंगा अब तक संचालन करे भाई मित्र गाजियाबादी जी का, वो आए और अपनी गजलों से हमें कुछ आनंद प्रदान करें।
1: भाई बहुत बहुत आभार। एक मतला एक शेर देखें आप सबकी खिदमत में पेश है कि जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूं मैं, जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूं मैं, आंधियां उड़ा दे मुझे हवा नहीं हूं मैं।
0: क्या बात।
1: जिस्म थक रहा है मगर थका नहीं हूं मैं, आंधियां उड़ा दे मुझे हवा नहीं हूं मैं, और मंजिलें कदम चूम लेंगी एक दिन मेरे, कौन कह रहा है कि बचा नहीं हूं मैं। और देखें एक शेर एक मतलब
0: इरशाद
1: कि जब भी रिश्तों से निभा करता हूं, जब भी रिश्तों से निभा करता हूँ जिंदगी अपनी तबाह करता हूँ।
0: क्या बात है।
1: जब भी रिश्तों से निभा करता हूँ जिंदगी अपनी तबाह करता हूँ, बस समझता हूँ सभी को अपना सा, मैं फकत इतना गुनाह करता हूँ।
2: क्या बात।
0: बढ़िया बढ़िया।
1: बस समझता हूँ सभी को अपना सा, मैं फकत इतना गुनाह करता हूँ। और चार लाइन देखें कि उसके मिलने भर की

0: केवल हम खुशी से मर गए, उसके मिलने भर की केवल हम खुशी से मर गए, गम जरा सा क्या दिखाया हम उसी से मर गए। उसके मिलने भर की केवल हम खुशी से मर गए, गम जरा सा क्या दिखाया हम उसी से मर गए। और मौत से मरते हैं दानिश लोग इस दुनिया में बस, मौत से मरते हैं दानिश लोग इस दुनिया में बस, हम ही पागल थे फकत जो जिंदगी से मर गए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और एक गजल देखें,
1: स्वागत
0: मतलब ऐसे खिदमत है, देखिएगा। जब मिला गम प्यार से हमने उठाकर रख दिया, जब मिला गम प्यार से हमने उठाकर रख दिया, दर्द को दिल से लगाया मुस्कुराकर रख दिया।
1: क्या बात है
0: कि जब मिला गम प्यार से हमने उठाकर रख दिया, दर्द को दिल से लगाया मुस्कुराकर रख दिया। और शेर देखें कि जब कभी भरने लगा था जख्म तेरी याद का, जब कभी भरने लगा था जख्म तेरी याद का, जख्म पर थोड़ा नमक हमने लगा कर रख दिया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और एक और शेर देखें कि बिजलियों के खौफ से जिंदा रहें कैसे भला, बिजलियों के खौफ से जिंदा रहें कैसे भला, हमने अपना आसियां खुद ही जला कर रख दिया।
2: क्या
0: और एक शेर यूं भी कि जब कभी भी सर उठाया नफरतों ने देखिए, जब कभी भी सर उठाया नफरतों ने देखिए, नफरतों में प्यार को हमने मिला कर रख दिया। और एक शेर की हो भी सकती है दोबारा आप को उल्फत लगा, ये भ्रम भी आपने मेरा मिटा कर रख दिया। और रोशनी आँखों से चमकी आपकी पुरनूर थी, रोशनी आँखों से चमकी आपकी पुरनूर थी, आपने दिल का अंधेरा ही मिटा कर रख दिया। और एक छोटी बहर की गजल देखिएगा, चार पांच शेर बस,
1: स्वागत है।
0: कि सिर्फ दिखावा कर जाएंगे, मतलब देखिएगा कि सिर्फ दिखावा कर जाएंगे लोग इसी में मर जाएंगे, सिर्फ दिखावा कर जाएंगे लोग इसी में मर जाएंगे। जुर्म अमीरों के होंगे पर, जुर्म अमीरों के होंगे पर इसके उसके सर जाएंगे, जुर्म अमीरों के होंगे पर इसके उसके सर जाएंगे। और पीछा छोड़ें याद तुम्हारी, पीछा छोड़ें याद तुम्हारी, हम अपने अब घर जाएंगे।
1: क्या बात है,
0: पीछा छोड़ें याद तुम्हारी, हम अपने अब घर जाएंगे। बात नहीं कर सच्चाई की, बात नहीं कर सच्चाई की, लोग सुनेंगे डर जाएंगे।
1: वाह वाह वाह, बढ़िया।
0: बात नहीं कर सच्चाई की, लोग सुनेंगे डर जाएंगे। सागर का अगर गम देखोगे, सागर का अगर गम देखोगे, आंख में आंसू भर जाएंगे। एक मतला और चंद शेर देखिएगा, आपकी खिदमत में पेश है।
2: स्वागत।
0: कि इश्क क्या था, इश्क क्या था, हादसा था हो गया तो हो गया। इश्क क्या था, हादसा था हो गया तो हो गया, उसको होना बेवफा था हो गया तो हो गया।
1: क्या बात है।
0: कि इश्क क्या था, हादसा था हो गया तो हो गया, उसको होना बेवफा था हो गया तो हो गया। और एक शेर देखें कि हम वफा रखकर अभी तक रो रहे हैं बेसबब, हम वफा रखकर अभी तक रो रहे हैं बेसबब, बेवफा से राबता था हो गया तो हो गया।
1: वाह।
0: एक शेर की जी लिए कितने ही लम्हे हमने उसके इश्क में, जी लिए कितने ही लम्हे हमने उसके इश्क में, हिजर केवल बदमजा था हो गया तो हो गया। और एक शेर की मरहला ही हम रहे मंजिल ना उसकी हो सके, मरहला ही हम रहे मंजिल ना उसकी हो सके, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था हो गया तो हो गया। और रूह दे दी हमने इंसान ही समझ कर क्यों उसे, रूह दे दी हमने इंसान ही समझ कर क्यों उसे, क्या पता था वो खुदा था हो गया तो हो गया। और नाम पर उल्फत के उसने कर दिए वादे, मगर जिस्म से बस वास्ता था हो गया तो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
0: इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्री सुनील हापुड़िया, श्री मित्रपाल सिसोदिया और सुश्री व्यंजना पांडे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री मित्रपाल सिसोदिया। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़ और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। और 9:30 पर बिल्कुल सुनना ना भूलें हमारा कार्यक्रम नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे आज मुक्ति धन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने

0: कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 338

रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

तक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: key to country's economic and strategic influence, commissions three indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, seven people killed, over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lifts FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A Series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क के इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए तीन बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरियापलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 सात अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी है, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर तीन मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क के इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख का फैसला कुन उंसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वजीर आजम ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के तीन जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज आईएनएस संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज आईएनएस अग्र शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
1: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनक्किद किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। एनटीए ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इम्तिहानात के तमाम मराकिस पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी निगरानी के लिए एनटीए हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के

कि दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी माहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्ज़रलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क़्यादत अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क़्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुज़ाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बाइस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाज़ों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा चार फरीकी मुश्तरका मुज़ाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। चार फरीकी मुज़ाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने FIH खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारत ए ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगा थास, मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाद लाबेम शहर में मुनदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का 1 तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनगास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इकतसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट

मुक्ति धन। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री बी एस भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक मुक्ति धन।

0: रहमान मियां, रहमान मियां है?
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं, और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ।
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
3: अब तुम वकील करोगे बेटा?
4: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
3: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
4: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
3: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए।
5: अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
5: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
5: फिर इस गाय ही को?
3: बहू
4: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
5: तो फिर करोगे क्या?
4: कुछ तो करना ही होगा।
5: क्या है?

0: अरे हाँ हाँ हम समझ गए, तुम गऊ बेचना ही नहीं चाहते। यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
1: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गाँव गाँव न घूमता।
2: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खड़ा क्या सोचा, ला
1: वो तो नहीं गाय को गऊ कुछ ही दे देते हो भाई,
2: पैसे दे रहे हैं।
0: अरे मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है। तुम चुप रहो, मेरे भगवान का दे रहा
3: है। अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
0: आइए आइए।

0: सरदार साहब सलाम।
1: सलाम
0: हुजूर, ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है। मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
1: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
2: गाय तो तुम्हारी मोहिनी आंख है।
3: हुजूर ये देखिए,
0: गर्दन भारे पुट्ठे
3: और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
2: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
3: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
2: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
3: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
2: दूध देती है?
3: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
2: क्या दाम मांगते हो?
3: 50 रुपए हुजूर।
2: हमें तो 35 का माल जचता है।
3: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर। इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
2: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे। बोलो हाँ या नहीं।
3: क्या कहे हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुँचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
2: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी?
3: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
2: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
3: थी सरकार, बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
2: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
3: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
2: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
3: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
2: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
3: हुजूर एक अर्ज और है।
2: क्या?
3: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
2: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ
3: जी सरकार।
2: बस यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
3: जी सर।
2: जी ये कोठरी इस सामने वाली गौ का घर है। आ जाओ आ जाओ।
3: जी
2: बस यही बांधो खूंटे से है, और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
3: जी बाबा जी। बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
2: ये लो रुपए, गिन लो।
3: जी 10, 10 20, 10 30, 5 35। ठीक है सरकार, ठीक है। अच्छा अब चलो। सलाम हुजूर।
2: अजी सुनती हो, कहाँ हो?
4: आई। हाँ कहो।
2: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
4: क्या?
2: गौ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
4: सच?
2: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
4: वो कैसे?
2: गौ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
4: ओ।
2: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
4: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
2: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
4: गौ गाय घर में बंधी है ना।
2: आओ
4: चलो
2: चलो दिखाते हैं।
4: चलो
2: अरे आओ, आओ।
4: चलो चल कर देखें।
2: बड़ा सजीदा और सुंदर है।
4: अच्छा?
2: हाँ
4: चलो।

0: क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त तो नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे। अब मेरा वक्त

0: करना।
1: अम्मा
0: बेटा,
1: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
2: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: उठो उठो, थोड़ा सा मने मेरी
2: अम्मा।

0: हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
2: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
2: जी,
1: जाते कहां हो?
2: सरकार,
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
2: नहीं सरकार, ये सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
2: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
2: हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
2: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती हुजूर।
1: कहो क्या बात है।
2: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हो?
2: हुजूर, अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
2: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: मैं कितने रुपए की जरूरत है
2: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
2: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
2: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी।
1: यहाँ दस्तखत करो।
2: आपकी बहुत मेहरबानी है।
1: ये लो कलम।
2: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
2: सलाम।
3: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
4: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
3: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
4: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
3: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
4: सुनो।
3: हाँ बोलो।
4: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
3: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
4: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
3: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
4: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
3: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बता।

0: आकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
1: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
0: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
1: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमा कांधी से बची तो खलिहान में आती
0: और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
1: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
0: नहीं तो
1: फैसला।

0: Rahman, le e dudëm të bilevane, laka ka la.
1: Va, va, Rahman, ab këtë riu bëri ghani uti e bhaiya.
0: Bas kisan ki mehnat ka phal të fasali e bhaiya.
1: Ye to sache kaka, mehnat me Rahman ki taraf se kasar nahi hui.
0: Tab dekh hi lo, kaisi jordar rukh hai, ye lo. तुम भी दो चार दम लगा लो भैया
1: लाओ भैया लाओ
0: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है
1: ऊख तो भारी है बहुत गुड़ निकलेगा भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा
0: पर मंडी में नया गुड़ पहुंचते ही भाव गिर जाते हैं ये मुश्किल है
1: अरे कम से कम 700-750 तो कहीं नहीं गए
0: तुम ठीक कहते हो भैया ठीक कहते हो
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान
0: अगहन है अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी
2: चिलन ताजा करने के काम भी किया है
0: तुम ठीक कहते हो काका
2: अरे अरे क्या कर रहा है रहमान आपको मच्छर
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया अरे कम्बक ऊख के बीचों बीच गिरा है अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास
3: अरे खेत में लग गई अरे इसे बुझाओ किसी तरह से अरे उधर तो ऊख तोड़ने दे
1: अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने वाले बाहर होगा आग यही तो बढ़ रही है चलो जल्दी चलो देख जा रहे हो
3: अरे आयुर
1: रहमान भैया रहमान भैया सब्र करो उसकी मर्जी के आगे किसके चली
0: जो होना था सो हो गया किस बुरी तरह ऊंच गिर रही

0: ये तो लाला की चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा, अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। क्या मेरे अल्लाह, कहाँ चुप जाओ, कहाँ चुप जाओ।
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: गिर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा
1: हूँ। चल चल चल, सरकार बुला रहे हैं। चल।

0: चाची मुझे बचा लीजिए हुजूर।
1: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
2: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर भूख लगी हुई थी सरकार। गरीब परवरिश ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
2: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिशी कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर, अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
2: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
2: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहाँ ना दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
2: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
2: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
2: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
2: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
2: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
2: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
2: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
2: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
2: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर।

शक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे राग मारू बिहाग। इसे प्रस्तुत करी है रहना चक्रवर्ती।
1: नमस्कार, मैं रहना चक्रवर्ती। ये शाम का राग है, राग मारू बिहाग, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं।

और अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है राग दरबारी कन्नड़ा शेख फरहान अमीन के जरिए।

अभी आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुना राग दरबारी कन्नड़ा शेख फहीम अमीन के जरिए। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष।

0: शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हैं ईमेल के जरिए। आपको बस करना इतना है कि अपना मोबाइल उठाइए, अपना जीमेल अकाउंट खोलिए और वहाँ पर आप कंपोज कर दीजिए एक मेल, और मेल एड्रेस में आप लिखेंगे ip.radio.delhi@gmail.com। ip.radio.delhi@gmail.com पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं संगीत में सफ़र की इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

जी, खैर मांगते मांगते हम भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। 11:10 का जो कार्यक्रम है, आपकी फरमाइश, यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुँचने लगे हैं, आपकी फरमाइशें भी हम तक पहुँचने लगी हैं। और जिस

स्पीड के साथ आपकी फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी से आपके लिए बहुत सारे गीत जो हैं जो मैंने जमा कर रखे हैं वो आपको सुनवाती चली जाऊं।

जी, इस वक्त तो जिस तरह की गर्मी हम सबने झेली है उसके हिसाब से कारे कारे बादरा जो है वो शोर तो नहीं मचा रहे, लेकिन हाँ एक सुखद एहसास जरूर दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो हवा है उसको ठंडा करने हम आ पहुंचे हैं आपके द्वार।

और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे लिसनर्स हमारी बात सुन रहे होते हैं गीतों के साथ साथ, और उसी के हिसाब से जब वो रिप्लाई करते हैं, मैसेज करते हैं, तो यकीन मानिए दिल बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद कमर का, लेकिन आपने कहाँ से हमें मैसेज किया है ये नहीं लिखा। आप कह रहे हैं कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा बरसात है, जैसा मौसम है वैसा ही अपना हिसाब है। तो मौसम तो देखिए बदलता रहता है, मौसम के हिसाब से अगर मिजाज रखेंगे तो ज़रा मुश्किल होगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है नारायण खर्चे जी का। आप हमें एयरपोर्ट रोड वंदना नगर से मैसेज कर रहे हैं, और आपके साथ हैं ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, पूनम गगनेजा ने हमें मैसेज किया है। आप हमें जलालाबाद वेस्ट से मैसेज कर रही हैं, आपके साथ हैं सुरेश गगनेजा। और सहदेव दामोदर जी ने एक गीत की फरमाइश की है, और फिल्म के साथ संगीतकार, गीतकार और गायक सभी के नाम आपने लिखे हैं। बहुत डिटेल में मैसेज लिखा है, बहुत अच्छा लगा सहदेव जी आपका मैसेज देख के। आप हमें बुलढाणा महाराष्ट्र से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार, साधना और पवन पाटिल भी। इसके साथ मैसेज हमें मिला है सुखविंदर सिंह जौड़ा जी का। आप हमें कृष्ण पार्क दिल्ली से मैसेज करते हैं, और सिटी दीवान आपके साथ हैं। इसके साथ विजय चौहान ने हमें मैसेज किया है पुणे से, और आपके साथ हैं अंकिता कांबले। और बिट्टू गगनीजा ने हमें मैसेज किया है, आपने गीत सुनना चाहा है तो कोशिश रहेगी पूरी की जाए, आपकी फरमाइश भी। रजी शर्मा ने हमें मैसेज किया है, और रश्मि पांड्या हमें मैसेज कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि चाय से स्वागत कर रही हैं। तो इस वक्त चाय पियेंगी तो फिर नींद कैसे आएगी? वैसे और आधा घंटा मत सोइएगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम अभी जारी है, लेकिन चाय मत पीजिए इस वक्त, चाय ज़रा ठीक नहीं। मुकेश भट्टा हमें मैसेज कर रहे हैं मोहल्ला पटियाला से, और आपने कहा कि कोई भी एक गीत, और इतना सारा प्लीज़ लिखा है आपने। सुदर्शन मुखी जी ने हमें मैसेज किया है, आपके साथ हैं अनीता मुखी और सिमरन मुखी। शांति नगर आप सोनीपत से हमें मैसेज कर रहे हैं, और अनिल मोहन जी कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो आप हमें ये एक गीत सुनवा दें। तो अनिल मोहन जी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। अकरम हुसैन प्रिंस ने भी हमें मैसेज किया है सीतामढ़ी बिहार से। आर कुमार का हमारे पास मैसेज पहुंचा है पंजाब खेड़ा से। तो सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

बात तो बड़ी सच्ची और पक्की है कि दिल का हाल जो है वो दिल वाला ही सुनता है, लेकिन कई बार लोग जो हैं वो दिल वाले तो होते हैं लेकिन उसे बड़ी कीमती शय जानकर बहुत हिफाजत से रखते हैं और उसमें किसी और की बात, किसी और का दुख, किसी और का दर्द आने नहीं देते। ज्यादती है ना, ये थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि जिंदगी जो है वो धूप और छांव का खेल है, हंसी और खुशी का खेल है। इसमें मेल हो जाता है कभी गहरी रात का और कभी बहुत खूबसूरत सुबह का। तो इसी धूप छाँव के खेल में ये ज़िंदगी गुजर जाती है। बस हाँ, ये है कि किसी के हिस्से में ज़्यादा अंधेरी रातें हैं और किसी के हिस्से में बहुत हसीन सुबह हैं। तो सभी अपने हैं, और अगर कोई अपनी दिल की बात, अपने दिल का राज या अपनी कोई उदास बात आपको बताना चाहे तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से कहने की कोशिश की होगी। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैसेज आया है भूषण खेरा जी का। आप हमें फजिल का पंजाब से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं विशु खेड़ा। और संजय ढींगिया जी ने हमें बागपत उत्तर प्रदेश से मैसेज किया है। नमन ढींगिया, अपार ढींगिया आपके साथ हैं। राजेश वर्मा ने हमें कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। तो बहुत शुक्रिया इतनी आज़ादी मुझे देने के लिए। आप हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं। सत्येंद्र जी ने हमें मैसेज किया है ग्राम पजौनिया से, और आप भी उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं। मैसेज हमारे पास आया है लिखा हुआ और बहुत कैप्स लेटर्स में और बोल्ड लिख करके लिखा है, इम्पॉर्टेंट मैसेज, प्लीज़ एक प्यार का नगमा है ज़रूर सुनवा दें। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा मैसेज करने के लिए। आप कैथल हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास मैसेज आया है आशीष कुमार का, और नासिर अली ने हमें मैसेज कहा है, किया है कि एनी सॉन्ग। अनिल कुमार गौहानकर ने हमें मैसेज कर दिया है। दिग्दर्शन कौर ने हमें मेरठ कैंट से मैसेज किया है। आपके साथ हैं कविता गौड़ और राधा नामदेव। मैसेज जो आया है वो आया है हमारे पास बसंत कुमार सिन्हा जी का, और आपकी फरमाइश भी मौजूद है जनाब, ज़रूर प्ले की जाएगी। इसके साथ जसबीर सिंह ने हमें मैसेज किया है निमनाबाद ज़िला जिंद से, हरियाणा से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं जतिंदर कौर, और मैसेज हमारे पास मेहर अरोड़ा का आ चुका है श्री गंगानगर से। आकांक्षी पहवा ने हमें मैसेज किया है, और भागुराम यादव जी हमें मैसेज कर चुके हैं। एसएम जावेद ने एक गीत किस

ने की फरमाइश की है, कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। और सुनते हैं एक बहुत ही अच्छा गीत। गीत तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इस गीत की फरमाइश लगातार 2 दिन से आ रही है।

कई गीत बहुत ही असर छोड़ जाते हैं, उनमें से एक ये गीत बहुत गजब का है। और ये जिस पिक्चराइजेशन, जिस तरह से पिक्चराइजेशन की गई है इस गीत की, वो और भी कमाल है। मतलब वाकई इसे बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज आया है सुनील कुमार गुंज जी और सुचिता। नैनीश गुंद, माफ़ कीजिएगा, नैनीश गुंद हैं और आप संगरूर पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं। आपने कहा है कि आपकी गज़ल का ये शेर है, तो बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया कि आपने अपनी गज़ल का शेर हमारे साथ शेयर किया। बड़े ही तेज़ जा रहे हैं बादल, अर्ज़ किया है गुंद साहब ने कि बड़े ही तेज़ जा रहे हैं बादल, कहीं बरस के आ रहे हैं बादल। बड़े ही तेज जा रहे हैं बादल, कहीं बरस के आ रहे हैं बादल। सुनकर पुकार किसी पपीहे की, सुनकर पुकार किसी पपीहे की, कहीं बरसने जा रहे हैं बादल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आपने ये शेर हमें भेजे हैं और बहुत अच्छा है। अगर ये पूरी गजल होगी तो और मज़ेदार होगी। सोनू विश्वकर्मा जी ने हमें मैसेज किया है और आपके साथ हैं मोनू माही और संगीता विश्वकर्मा। नारायण खर्चे जी ने हमें बहुत मैसेज किए हैं और आदत के हिसाब से बहुत सारे मैसेजेस किए हैं आपने हमें। आप हमें इंदौर से मैसेज कर रहे हैं। पूजा रघुवंशी और नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी आपके साथ हैं। बोधराज खोरवाल जी ने भी उत्तम नगर से हमें बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए हैं। और राजकुमार डूडी साहब ने हमें मैसेज भेजा है गांव फणी से, हिसार से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं प्रमोद और पुष्पेंद्र। अब्दुल गफ्फार ने हमें मैसेज भेजा है और आप कह रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल करें। हाजी मजहर का मैसेज आया है, आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। बड़ी मेहरबानी होगी जनाब आपकी, मेहरबानी कि आपने हमें ये आज़ादी दी है। और मैसेज हमारे पास आया है मुकेश भट्टा जी का, आप हमें केंद्र मोहल्ला पटियाला से मैसेज कर रहे हैं। आपने भी आज़ादी दे दी है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवाएं। इसके साथ हमारे पास मैसेज आया पीएस नवहानकर का और ताज मोहम्मद का भी हमारे पास मैसेज आ चुका है। मैसेज हमारे पास आया है राम बालक दास जी का, आप हमें कोलकाता हुगली से मैसेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोलकाता में भारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। भारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया, ये तो मज़ेदार बात है। यदि आप बारिश का कोई गीत सुनवा दें तो भारी बारिश से मौसम सुहाना या डरावना होता है, और कोलकाता की बारिश तो ज़रा डराने वाली होती है, लेकिन आपको सुहानी लग रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म सुजाता से, उम्मीद है आपको पसंद।

और बहुत ही खूबसूरत एक गीत हमारे पास, माफ कीजिएगा, एक मैसेज हमारे पास आया है। गीत गीत गीत, इतने सारे गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचती है कि दिमाग में अब गीत ही गीत अल्फाज आने लगा है। मैसेज हमारे पास रघुवीर नगर से है, लिखने वाले हैं दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू। वो कहते हैं कि समुद्र के खारे जल में तैरते रहना, समुद्र के खारे जल में तैरते रहना, दिशा खोजते रहना, भटक कर इधर उधर चले जाना, फिर भी उस राह पर चलते जाना जिसका कोई अंत नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जो वो राह होती है ना जिसका कोई अंत नहीं होता, तो फिर जो पगडंडी होती है ना उस पर बहुत संभल कर चलना होता है, क्योंकि न जाने कौन से मोड़ पर वो राह मिल जाए जिसकी ख्वाहिश आप दिल में लेके चल रहे हैं। मैसेज हम तक पहुंचा है फारूक अली खान का, और आप कह रहे हैं कि रात की इस तन्हाई में आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। भाई आज संडे है, आज तन्हाई, चलें आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बोधराज कोरवाल जी ने भी हमें मैसेज किया है उत्तम नगर से। इसके साथ मैसेज आया हमारे पास हाजी मजहर का, और आप कह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। नासिर शेख ने हमें मैसेज किया है और कहा है कि कोई भी गीत। और सतीश अनेजा जी, आप तो एकदम नाराज़ क्यों हो गए हैं? देखिए आपका मैसेज शामिल कर लिया है। आप चंडीगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कई दिन से मौसम ठीक नहीं है, लेकिन आज की दोपहर तपती रही, उत्तरी भारत में मौसम अटखेलियाँ खेल रहा है। अच्छा, पूरा मौसम का हाल आपने हमें सुनवाया है, बहुत शुक्रिया। और मैसेज हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त जो है वो ये कह रहा है कि कुछ फरमाइशें पूरी करते जाएं।

और अब कार्यक्रम कुछ ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है कि जहां पर आपकी फरमाइशें अब पूरी करने के लिए बहुत बहुत कम वक्त बचा है और आपसे बात करने के लिए भी वक्त कम बचा है। अगली बार देखिए कब मुलाकात होती है और कब होती है। हमारे पास मैसेज आया है उषा मोहन का, आप हमें दिल्ली से मैसेज कर रही हैं और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने हमें मैसेज किया और जिन्होंने हमें मैसेज नहीं किया लेकिन कार्यक्रम सुना और पूरे दिल से सुना, पसंद भी किया, आप सबका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और रमेश कुमार हमें मैसेज कर रहे हैं पटेल नगर मलोट से और आपके साथ हैं गीता रानी जजौरिया और गगनदीप। सुनते हैं एक और बहुत अच्छा गीत जो कि हमें पहुंचा है आपकी फरमाइश के जरिए।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

अब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं और सभी ज्ञानवर्धक होती हैं। आप हर एक कार्यक्रम से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं, ऐसा मुझे लगता है। और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए, मौसम का मज़ा लीजिए और हंसते गुनगुनाते रहिए। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे। 12 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्र

0: समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम

0: एनर्जी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्र पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
0: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति

ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 12:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत खास है। इस कार्यक्रम में एक आशा है जो हर किसी की उम्मीदों को

हम बात कर रहे हैं संगीत की दुनिया की महानतम पार्श्व गायिका आशा भोंसले की। 80 साल से अधिक के कैरियर में उन्होंने लगभग 20 भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर आशा भोंसले रही शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप और कैबरे तक हर शैली में उन्होंने अपना जादू बिखेरा। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली गोवर गांव में हुआ और उनके माता पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे और माँ का नाम शुद्धमती शेवंती था। भाई बहन की बात करें तो वह मंगेशकर परिवार की सदस्य थी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर और छोटी बहनें उषा व मीना मंगेशकर तथा भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि आशा भोसले एक आशा हैं जो उस उम्मीद को पूरा करती हैं जो संगीत की दुनिया में, फिल्म संगीत की दुनिया में किसी ना किसी सुनने वाले की हमेशा बनी रहती है। आशा अपने आप में एक उम्मीद को पूरा करने वाला संगीत कायम करती हैं अपने सुरों के साथ, उसमें एक जादू बिखेर देती हैं और गीत संगीत गाना अपने आप में अमर वर्सेटाइल हो जाता है, कालजयी बन जाता है। उन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए, 20 भाषाओं में गाए। वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत रही। और आशा जी के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि जो उनकी बहन लता मंगेशकर, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया और उनका साथ बरगद के पेड़ जैसा रहा जिनके नीचे आशा जी का जीवन कैरियर पनपा और मुमकिन हुआ। उनके जी इस फिल्म संगीत के कैरियर में ओपी

नैयर साहब के साथ आरडी बर्मन जी का सहयोग बहुत रहा, जिनकी वजह से उनकी लोकप्रियता और कहें के प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। यदि ऐसा ना हुआ होता तो आशा की बहन उषा मंगेशकर की तरह वे एक हांसे की गायिका बनी रह जाती। ओपी नैयर के खटकदार पंजाबी पश्चिमी संगीत में आशा की खनकदार आवाज़ इतनी सहजता से पूर्णता में ढल जाती थी, शामिल हो जाती थी कि जैसे धुने उनकी आवाज़ के लिए ही बनी हों। यह वह समय था जब गीता दत्त अपने बिखराव में गुम हो रही थी और आशा का जादू लोगों के सर पर छा रहा था।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा अपने दोस्त मोहन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की, जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक सूरज की तरह छाकर अपने उजाले से संगीत की दुनिया को रोशन कर दिया, और उनका उजाला, उनके संगीत का असर आज भी पहले की तरह, पहले जैसा है। लता जी के साथ आशा के युगम में आशा को ज़्यादा वर्सेटाइल मानने वालों की संख्या कभी कम नहीं रही। एक समय उन्हें सिर्फ क्लब गीत, कैबरे आदि के सॉन्ग ही मिलते थे। अपने आवाज़ और स्टाइल के कारण उनमें सरताज गायिका रहीं, लेकिन धीरे धीरे पहचाना गया कि वे सिर्फ शोक गीतों तक ही सीमित नहीं हैं, उनका हुनर कहीं ज़्यादा है, उनकी कहें के हुनर की रेंज कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो पंछी प्यारे सांझ सकारे, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, तोरा मन दर्पण कहलाए, जारी पवनिया पिया के देश जा, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, फिर से आयो बदरा विदेशी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कोई आग लगे लग जाए। जैसे सुरीले गीतों से ये सुरीले सफ़र में इतने सारे स्मृति गीत हैं कि हर जो सूची है, जो तालिका है, वो छोटी पड़ जाएगी। विजेता फिल्म की रचना है धन आनंद आनंद छायो, अपने आप में एक अलग है, अपने आप में एक अलग असर है लता जी के गीत संगीत का, जो उन्होंने अपनी आवाज़ से लोगों तक पहुँचाया।

श्रोताओं, हम बताना चाहते हैं कि आशा भोसले जब 9 वर्ष की थी, बचपन का समय था, तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार को पालने के लिए उन्होंने और लता मंगेशकर ने गायन की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला गाना, उन्होंने अपना पहला फिल्मी गाना 1943 में मराठी फिल्म माझा बल के लिए गाया था, और हिंदी सिनेमा में इनकी शुरुआत 1948 में फिल्म चुनरिया से हुई थी।

श्रोताओं, हम आपको बताएं कि 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी उनकी शादी हुई जो कुछ समय बाद टूट गई। फिर उन्होंने अपने से छोटी उम्र के प्रसिद्ध संगीतकार आर डी बर्मन से दूसरी शादी की। और अगर हम बात करें उनकी उपलब्धियों और सम्मान की, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में के इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिकाओं में से आशा भोसले गायिका हैं। ग्रैमी नामांकन उनका हुआ 1997 में। वह ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी। और पुरस्कारों की बात करें तो भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने अपने शानदार गायन के कैरियर में कई बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया।

श्रोताओं, ये वो गजल है जिसे हर कोई बार बार सुनना चाहता है। आशा जी की आवाज ने इस गीत को या इस गजल को कालजयी बना दिया। इसका अपना एक अलग असर है।

श्रोताओं, आशा जी वो गायिका हैं जो लता जी के बाद, किशोर कुमार के बाद, आर डी बर्मन के बाद, मुकेश मोहम्मद रफ़ी के बाद हमें छोड़कर चली गई। ये अपने आप में एक बहुत कहें कि ग्रुप है, एक समूह है अच्छे गीतकारों का। हम वो पीढ़ी हैं जो उन्हें सुनकर आगे बड़ी हुई है, और जो आज का समय है एआई का, उसमें आज की पीढ़ी को ऐसा होना नसीब नहीं होगा, नकल भले ही सुनने को मिल जाए। आशा जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 1926 को, माफ कीजिएगा, 12 अप्रैल सन 2026 को मुंबई में हुआ। उनकी विरासत है और उनका प्यार है लोगों का, जो आज भी उनके गीत संगीत में समाया हुआ है। सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

आशा जी की आवाज हर किसी को मंत्र मुक्त कर देती है। वो अपने आप उस संगीत में झूमने लगता है, संगीत का आनंद सुनाई देता है उनकी आवाज में।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। यही आपसे कहूँगा कि अपना अपनों का ख्याल रखिए, ज़िंदगी में प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्त मोहन को याद रखिए और सुनते रहिए

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों के उपरांत 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्ट

0: सिनर्जी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत

को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 1:10 हुए हैं। ये वक्त है गीत सुनहरे फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

पवित्र पापी फिल्म से आपने ये गीत सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए फिर सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म अमानुष में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में, दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है, फिल्म आखिर क्यों। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपका दिल गीत संगीत के साथ लग रहा है, हमारी कोशिश रंग ला रही है। अभी जो गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म इजाज़त से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म सिलसिला ये कहाँ आ गए हम, जावेद अख्तर के बोल, म्यूजिक शिव हरि का, गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर।

अमित कुमार की आवाज़ लव स्टोरी फिल्म से अभी आपने गीत सुना तेरी याद आ रही है। अब सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और अमित कुमार साधना सरगम की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाजत अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, भूले नहीं अपने दोस्त मोहन को याद रखिए और सुनते रहिए आकाश।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न

0: 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित थीं। यात्रियों को यात्रा के लिए लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने पर अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow water craft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the PM said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted yesterday amid tight security arrangements. The National Testing Agency said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil

जी हाँ दोस्तों, और अभी जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा। और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप सुनेंगे बिना रुकावट के बहुत ही शानदार खूबसूरत कार्यक्रम के जरिए शानदार बेहतरीन रचना। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है गीत बहार। जी हाँ दोस्तों, गीत बहार के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार खूबसूरत रचना से हम शुरुआत कर रहे हैं। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के आप सुनेंगे शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर बेहतरीन रचना।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुमारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीतों का जो समावेश बना था, वाकई बहुत ही सुंदर, लाजवाब, खूबसूरत रचना। जी हाँ, और इसी के साथ आज का सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय वर्ग कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित

0: से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इथोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रोस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की है। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dhunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the PM said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted yesterday amid tight security arrangements. The National Testing Agency said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Peripalayam yesterday. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit report within 24 hours. This

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10 और 15 सेकंड। यह साथियों, ये कार्यक्रम होता है बहुत ही शानदार, बेहतरीन, सुकून देने वाला खास प्रोग्राम। जी हाँ, गीत गजल। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, लाजवाब गजल। जी हाँ दोस्तों, गजल की जो खासियत जो होती है वाकई दिल के बहुत करीब होती है। हर इंसान जो हर जो गीत प्रेमी होता है उसमें वाकई बहुत ही लाजवाब अपने आप को महसूस करता है कि हाँ, ये शायद मेरे लिए ही ये गजल गाई जा रही है। जी दोस्तों, आज इस खूबसूरत कार्यक्रम गीत गजल कार्यक्रम के जरिए आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट RJ ललित कुमार। एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत गजल आ रही है, कोई उम्मीद बुर। जी हाँ, कोई उम्मीद बुर गालिब पार्ट टू। बहुत ही शानदार, बेहतरीन गजल आ रही है और यह गजल गीतकार हैं गालिब साहब और संगीत से सजाया है सोमेश कुमार ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की, जी हाँ, गीत गजल कार्यक्रम की बहुत ही शानदार, बेहतरीन रचना के साथ आज आगाज कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये लाजवाब रचना।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत, प्रस्तुति बांसुरी स्वर सिक्किल माला चंद्रा शेखर का है।

आपने सुना नाद ब्रह्म कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के

आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026, सुबह के 4:54 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आपको प्रातःकालीन सेवा के प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होती है सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार।

6:10 पर वंदना कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन, जिसमें आज का विषय है तुलसी के राम। 6:45 पर रामचरितमानस से बालकांड भाग 94 का प्रसारण किया जाएगा। 6:55 का समय संस्कृत समाचारों का है।

सुबह 7 बजे हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 का समय संगीतिका कार्यक्रम का है।

0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग 7:30 पर आप सुन सकते हैं। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज में आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। इसके उपरांत 8:30 का समय उर्दू समाचारों का है। श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूरनागिरी संशोधक और अग्रे शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले सहयोगियों, वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधान

का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागीर कालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजा ने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है।

बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांग पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। ये करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। बद्ध पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है।

और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। कार्यक्रम में आप सुनेंगे दिनकर शर्मा का हारमोनियम पर राग नट भैरव, साथ में संगत तबले पर संगत की है उस्ताद अख्तर हुसैन खान ने।